एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 जुलाई सन 2026, प्रातः के 5:56 और 45 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

0: nas. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक के पंथी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवारान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार

0: के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।
2: वंदनवार।

आज का चिंतन। महात्मा गांधी ने कहा है, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। प्रस्तुत है वंदनवार, आइए सुने भक्ति संगीत।

विविध भारती से झरोखा में लीजिए सुनिए हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओ अब से थोड़ी देर में यानी ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 259। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिएगा श्रृंखला घुंघरू की तरह। कलाकार हैं गायक और संगीतकार रविंद्र जैन। आप सुनेंगे आज इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण हम करेंगे संध्या 6:45 पर। 7:00 आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम होगा। 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की 38वीं कड़ी। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है फिल्मकार मनोज कुमार पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

शाम 6:45 पर होगा कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला घुंघरू की तरह आप सुनेंगे। 7 बजे सुनिएगा फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनेंगे अनमोल यादें। फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रेकर की बातचीत का 4th भाग आपको सुनवाएंगे प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 8 बजे होगा कार्यक्रम हवा महल, सुनिएगा हास्य नाटिका बहादुरी, लेखक राधे श्याम अग्रवाल और निर्देशक बिजेंद्र मोहन। 9:00 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आपके लिए।

रात 9:30 पर फिल्मकार मनोज कुमार पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। रात 10 बजे सुनिएगा छाया गीत। और रात 10:30 पर होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। श्रोताओ अभी आप सुन रहे

कबंध नामक गंधर्व को दुर्वासा ऋषि के शाप से मुक्त करके अनुज सहित श्रीराम शबरी के आश्रम में पधारे। स्वयं प्रभु को अपनी कुटी में पाकर शबरी को मतंग ऋषि के वचन का स्मरण हो आया। उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। प्रेम और भक्ति के अतिरेक से उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, वाणी जैसे अवरुद्ध हो गई। दोनों भाइयों के चरण पखार कर शबरी ने उन्हें कंद मूल और फल अर्पित किए। अपने को नीच और मंदबुद्धि जानकर शबरी प्रभु की स्तुति करने में स्वयं को असमर्थ पाती है, किंतु उसके लिए तो मात्र भक्ति का ही संबल पर्याप्त है। जाति पाति, कुल धर्म, धन ऐश्वर्य तथा अन्य गुण होने पर भी भक्ति के बिना मनुष्य वैसा ही होता है जैसे बिना जल वाला बादल। शबरी का असमंजस देख श्री राम उसे नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी प्रभु कथा में प्रेम, तीसरी अभिमान छोड़कर गुरु चरणों की सेवा और चौथी भक्ति है प्रभु का गुणगान। प्रभु में दृढ़ विश्वास और राम नाम का मंत्र जाप पांचवी भक्ति है। छठी है इंद्रियों का निग्रह। सातवीं संपूर्ण जगत को राममय जानना। भक्ति का आठवां रूप है जो मिल जाए उसमें संतोष करना। और नवीं भक्ति है कपट रहित व्यवहार, सरलता, इष्ट में भरोसा, निष्ठा तथा प्रत्येक अवस्था में हर्ष विषाद से ऊपर उठ जाने की क्षमता।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का भाग 259।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: घुंघरू की तरह कार्यक्रम के इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: प्यारे दोस्तों, तो आज हम फिर हाजिर हैं। दादा का एक बार सत्कार करता हूँ। नमस्कार दादा। हमने कई रागों के बारे में बातचीत की, आपने रागों के बारे में बहुत कुछ बताया और ऐसे रागों के बारे में बताया जिसमें आपने फिल्मी गाने निबद्ध किए और वो बहुत मकबूल हुए। आज उसी शास्त्रीयता को बरकरार रखते हुए, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए, हम फिर शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय गीतों के बारे में, शास्त्रीयता के बारे में और फिल्मी गीतों के बारे में आपसे सुनेंगे।
2: एक प्राइमरी राग जिसको हम यमन के नाम से जानते हैं, उसमें बड़ा अच्छा अच्छा काम किया है हमारे सारे कंपोजर्स ने। खास तौर से रोशन साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए और मदन जी ने भी बड़ा अच्छा गाना बनाया, जिया ले गए मेरा सांवरिया, है ना
1: जी। जी,
2: रोशन साहब के तो
1: बहुत गाने हैं, उन्होंने
2: बहुत गाने
1: यमन में बहुत काम किया है।
2: मेरा भी ये गीत लोगों ने बहुत पसंद किया है।

0: दादा, जैसे कि हर संगीतकार के अपने कुछ पसंदीदा राग होते हैं, आपकी शास्त्रीय संगीत की जो चादर है बहुत बड़ी है और उसमें न जाने कितने गीत समा गए बड़ी सुंदरता से, बड़े अच्छे ढंग से, तो आपके भी कुछ राग ऐसे होंगे मखसूस खास राग जो आपको बहुत पसंद होंगे और मौका मिलते ही आपने उन रागों पर या उसी एक राग पर गाने बनाए होंगे, उसके बारे में कोई विवरण दें।
1: यूं तो हर राग बहुत अच्छा सजाया है हमारे बुजुर्गों ने
0: जी,
1: उनकी उन पर बलिहारी है जिन्होंने ये राग कंपोज किए, जिनको जिनको सोचा है।
0: क्या कहने,
1: हम लोग तो उसका इस्तेमाल भर करते हैं, वो भी मैंने आपसे जैसे अर्ज किया
0: जी
1: कि अपनी आत्मा अगर उसमें डाल दें तो कोई बात बन जाती है
0: जी।
1: वैसे राग वो जिसमें अनुराग हो, बस अनुराग सबसे अच्छा राग है।
0: क्या कहने, वाह।
1: तो और हमारे शास्त्रों में कहा है कि रंजको जन चित्ता नाम सराग कथितो बुध, जो चित्त का रंजन करे, उसकी परिभाषा ये है।
0: बहुत सुंदर।
1: ऐसे मुझे माइनर कॉर्ड्स के राग जो है ना जो उसके पसंद है ज्यादा।
0: जैसे
1: बहुत सारे उसमें है, कई राग जो इस तरह के हैं ना जो माइनर नोट्स में है, भैरवी थाट के बहुत सारे राग हैं, भैरव थाट के अपने राग जो है ना
0: जी
1: बड़े अच्छे अच्छे हैं, उधर पूर्वी थाट के राग हैं, वो सब बड़े सुंदर सुंदर राग, उनकी उनमें एक अजीब उसमें एक आकर्षण है और एक ठहराव है
0: जी।
1: लेकिन अब फिल्मों में चूंकि हमें न्याय करना पड़ता है चरित्रों के साथ,
0: हाँ सिचुएशंस की भी अपनी दरकार होती है, लेकिन अब कोई ऐसा गीत सुनाइए जो आपने शास्त्रीय संगीत पर आधारित किया हो और आपको पसंद हो।
1: आशा जी ने मेरे गीत गाया, वो आजकल बहुत लोग उसको सारे तमाम कलाकार गाना चाहते हैं।
0: वाह, जरूर।

0: अच्छा, शास्त्रीय संगीत का जिक्र चला है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे फिल्म उद्योग में बहुत से कलाकार गा रहे हैं या अन्य स्थानों पर भी लोग गा रहे हैं, तो शास्त्रीय संगीत की जानकारी उनके लिए कितनी जरूरी है, इसकी सार्थकता पर थोड़ा सा आप बताएंगे?
1: यूं तो संगीत मनुष्य का स्वभाव है, स्वाभाविक गुण है उसका, लेकिन अगर संगीत का मर्म जानना है, रहस्य जानना है, तो शास्त्रीय संगीत के बिना कोई शॉर्टकट नहीं, दूसरा रास्ता नहीं है उसके लिए, क्योंकि ये गंधर्वों की विद्या है, देवों की विद्या है
0: जी,
1: मनुष्यों को कहाँ उपलब्ध हो सकती है, तभी होगी जब समर्पण भाव से उसको सीखें।
0: सही बात है। आजकल शास्त्रीय संगीत के बारे में लोगों का, गायकों का,

0: कलाकारों को ये कहना है कि कोई जरूरत नहीं है शादी संगीत सीखने की, और जैसा गाना मिला है सिनेमा की सिचुएशन पर गा दिया जाए। तो उन गानों की उत्पत्ति को आप कितना महत्व देते हैं जो बिना शास्त्रीय संगीत की जानकारी के बने बनाए और गाए जाते हैं?
1: मैं भी उसी
0: क्षेत्र में है,
1: उसी मतलब इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ। और लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उम्र जो है ना वो हर एक की अलग अलग है
0: जी,
1: है ना
0: जी।
1: किसी की 100 वर्ष है, किसी की 50 है, किसी की 20 है
0: जी जी,
1: है ना
0: जी जी।
1: तो इसी तरह गानों की भी आयु जो है ना वो इतनी सीमित हो जाती है कि वो आए गए कब, आए कब चले गए
0: पता ही नहीं चलता।
1: हाँ, बाद में ये लगता ही नहीं कि ये गाने भी हैं।
0: सही बात है, बिल्कुल सही बात।
1: गाना नहीं लगता, वो कुछ और ही लगता है।
0: कुछ देर के लिए लगता है, कोई तराना सा उठा फिर कहीं जाके दब गया।
1: हाँ ठीक है, बस मगर ये है कि जब प्रसिद्धि जिसको मिल जाती है, जो चीज पसंद लोगों ने कर ली है, लाखों लोग करोड़ों लोग जिसको गाते हैं
0: जी,
1: उसको खराब कहना भी मुश्किल है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये कि शास्त्रीय संगीत की जानकारी नितांत आवश्यक है।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। चलते चलते आज की इस कड़ी में कोई एक और गीत आपका ही निर्मित किया हुआ किसी शास्त्रीय राग पर।
1: मैं एक ऐसी रचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिस रचना पर फिल्म बनाई गई। श्री राज कपूर जी ने ये गीत सुना और इस पे कहानी सोची, इसके आधार पे कहानी का ताना बना हुआ। ये गीत राग किरवानी में निबद्ध है। मैंने कोशिश की है कि राधा और मीरा दो चरित्र हैं इस गीत में, दोनों के साथ न्याय करूं। साहित्यिक पक्ष भी इसका अच्छा बन पड़ा है।

0: घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा

आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं नमस्कार अलवर।

नमस्कार अलवर श्रोताओं, सुबह जब हमारी नींद खुलती है तो चारों ओर की हरियाली, खुशबू भरी ताजगी जगाती हवा, सूर्य की सकारात्मक रोशनी हमारी सुबह को और भी खूबसूरत बना देती है। पर क्या आपने कभी सोचा है, किसी दिन हमारी नींद खुले और चारों ओर धुआं, रेत भरी तपती हवा हो, नल में पानी नहीं आ रहा हो, पेड़ पौधों की हरियाली ना हो, तो कैसा महसूस करोगे? तो श्रोताओं, अगर हम ऐसी सुबह नहीं चाहते हैं तो हमें हिस्सा बनना होगा मिशन लाइफ का, यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली का। यानी बिजली बचाना, पानी बचाना, पेड़ लगाना, कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, यही तो है मिशन लाइफ। आज हमने अपनी छोटी छोटी आदतें नहीं बदली तो कल एक खूबसूरत सुबह ढूंढते रह जाएंगे हम।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

दोस्तों, हम अपने जीवन को थोड़ा सा बदल कर इस दुनिया को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपनी इच्छाओं और जरूरतों के बीच का फर्क समझें। क्या वाकई आपको नए सामान की जरूरत है? अगर नहीं तो मत खरीदिए। कम चीजें, कम तनाव, कम कचरा। प्लास्टिक की बोतलें, कांच के खाली जार फेंकने के बजाय उनमें पौधे लगाएं या उनमें रसोई के मसाले रखें, यानी कबाड़ से जुगाड़। पुराने अखबार, गत्ते, पुराने लोहे की चीजें कबाड़ी वाले को दें ताकि वे कारखाने में जाकर फिर से नई चीजें बन सकें। किसी भी चीज को बेकार समझने से पहले सोचिए इसका क्या उपयोग हो सकता है।

जैसे पुराने कपड़ों से थैले या पायदान बना लें। प्रकृति से जो लिया है उसे वापस लौटाएं। अपने बालकनी में, आंगन में पौधे लगाएं और इस प्रकृति का साथ निभाएं, क्योंकि प्रकृति का साथ सबसे प्यारा है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

दोस्तों, बिजली और पानी की बचत के साथ साथ अगर आपको आसपास से कुछ सामान लेने जाना है तो गाड़ी स्टार्ट ना करें, पैदल चलिए या साइकिल उठाइए। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और पर्यावरण भी। घर से निकलने वाले कचरे को गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें। गीले कचरे को गमलों में खाद के रूप में इस्तेमाल करें। आजकल हमने एक संस्कृति अपना ली है, उपयोग करो फेंक दो। पेन खराब हुआ फेंक दिया, पुराने कपड़े हुए फेंक दिए, फोन पुराना हुआ फेंक दिया। पर हम जो कुछ भी फेंक रहे हैं वह इसी धरती के किसी कोने में जमा हो रहा है और फिर वही प्रदूषित होकर घूम फिर कर हमारी थाली तक वापस आ रहा है। तो क्यों ना हम पर्यावरण और वातावरण की खूबसूरती को संभाल कर रखें, इस फिजा को और भी खूबसूरत बना दें, क्योंकि फिजा जमा है तो हम जमा हैं।

तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मिशन लाइफ की, यानी पर्यावरण के लिए ऐसी जीवन शैली जो धरती को बचाए, भविष्य को सुरक्षित बनाए और आने वाली पीढ़ियों को मुस्कुराने का अवसर दे। आज आवश्यकता है प्रकृति की ओर वापसी की, जैसे कपड़े मशीन में ना सुखाकर धूप में सुखाएं, ऊर्जा बचाएं, तांबे या मिट्टी के बर्तन में पानी पीना, साइकिल का उपयोग करना पर्यावरण के अनुकूल जीवन की उत्तम मिसालें हैं। मिशन लाइफ कोई नया विचार नहीं है, ये हमारी उस प्राचीन भारतीय जीवन शैली और संस्कृति का आधुनिक रूप है, जहां प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीना सिखाया गया था। मिट्टी के बर्तन में पकाना, पानी का संचयन और संसाधनों की बर्बादी ना करना, ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हुआ करते थे। तो हमें आज भी पर्यावरण प्रेम दर्शाना होगा। ये प्रकृति अपनी खूबसूरती के कारण हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, बुलाती है।

0: पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। पर्यावरण संरक्षण के इस वैश्विक यज्ञ में हमारी हर छोटी बचत, हर एक का सचेत निर्णय, जैसे गाड़ी की जगह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, बहुत मायने रखता है। तो आइए संकल्प लें कि हम प्रकृति के उपभोक्ता मात्र न बनकर उसके संरक्षक बनेंगे, जिसे आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरियाली का आनंद ले सकें। इसी उम्मीद के साथ हम लेंगे इजाजत। नमस्कार।
1: तो हम चलते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर, आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: आपकी कसम, इस फिल्म से सुना आपने ये गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत आरडी बर्मन का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में अभी आपने सुना महबूब की मेहंदी फिल्म से ये गीत। आनंद बख्शी का गीत था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

काला पत्थर। इस फिल्म से सुना आपने ये गीत, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। साहिर का गीत था, संगीत राजेश रोशन का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
7: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

चरस। इस फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी को। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

कभी कभी इस फिल्म में अभी आपने सुना मुकेश को। साहिर का गीत था संगीत खय्याम का, और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416।

0: कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
2: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद ना हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
3: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण

0: आश्रम मार्ग, बारह खंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
4: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं के पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।

और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया, आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आपने सुना फाल्गुनी पाठक को।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए

सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अदनान सामी और साथियों को। इसके साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्द सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
0: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी,
0: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
0: और गाँव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
0: श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की, आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
0: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
0: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुर्ग क्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहाँ की लोक कथाओं में भी मिलती है। भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है। तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
0: श्रोताओ, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
2: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
0: श्रोताओ, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
2: जी।
0: इसकी पंखुड़ियाँ तेज लाल और पीले रंग की होती है, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती है। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
2: जी।
0: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
2: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
0: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है
2: जी।
0: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी
2: जी।
0: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गाँव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
2: कैल पौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेती बाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
0: श्रोताओं, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
2: कैलपोध उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंड बट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
0: श्रोताओ, कैलपोध उत्सव कोडावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
2: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहाँ हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न

0: है कैलपोध उत्सव कहां और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कैलपोध उत्सव कहां और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
0: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
3: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
2: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
3: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
4: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ।
3: और तुम? मैं क्योटो जा रहा हूँ।
2: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
3: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए है? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
4: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। ओह, क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
3: भाई वाह।
4: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
3: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
4: अच्छा,
3: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
4: वाह,
3: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर है। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
4: हाँ, ये तो है।
2: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
3: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
4: क्यों? आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
3: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
4: हैं? वो कैसे?
3: अरे भाई, मैं समझाता। आकार बड़ा होता तो हम किसी

0: पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
1: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
0: वो कैसे?
1: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाए। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
0: भाई वाह!
2: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
0: बड़ा ऊंचा पहाड़ है, पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
1: ये तो है। अरे चढ़ते रहो, चढ़ते रहो।

0: का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाए। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
1: भाई वाह!
2: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
1: बड़ा ऊंचा पहाड़ है। पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
0: ये तो है। चढ़ते रहो, चढ़ते रहो।
3: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। चलो पहुंचे तो सही।
0: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
3: मैं क्योटो देखूंगा
0: और मैं ओसाका।
3: क्यों नहीं, चलो
0: चलो।
2: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कस कर पकड़ रखा था।
1: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
0: चलो
1: संभल कर।
0: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है।
3: बचे।
2: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
1: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
0: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
3: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
0: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
1: हाँ चलो।
2: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
4: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है
1: जी।
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
4: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
4: बाजी आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया में क्या है?
3: नमक, लाहौरी नमक।
4: लाहौरी नमक? आप इसका क्या करेंगे?
3: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है? नमक ही तो ले जा रही हूँ। क्यों भाई, नमक नहीं ले जा सकते क्या?
4: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये।
3: है?
4: और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
3: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
4: मेरी माँ? बाजी हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ है जो हमारी है?
3: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
4: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी।
3: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहाँ आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।

0: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। आप कानून तो जानती नहीं।
1: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
0: ओ बाजी आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
1: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
0: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है?
1: देख राहिल, कस्टम वालों को जानू या ना जानू, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूँ। इस बुढ़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ कि इनकी टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ यही ठीक रहेगा।
0: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगी आप?
1: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
0: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
1: नमक का मोल पूछने।
2: आइए आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। ए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ ठीक है।
1: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
2: जी, फरमाइए।
1: अब आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
1: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
2: जी? जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
1: अब जी ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
2: नमक? देखिए मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। और हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
1: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब, लीजिए जनाब,
1: अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं।
1: ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: अभी इधर आइए, आइए सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए,
0: जी।
3: हमको पूरा बात समझ में आ गया।

0: चाय खाबो? माफ कीजिए, चाय पिएंगे क्या आप?
1: नहीं।
0: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
1: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
0: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है। किसी से कहना मत।

0: वतन तो कस्टम वालों का होता है, इंसानों का वतन यहाँ यहाँ दिल में है, दिल में।
1: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
0: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
1: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए इसी मॉनसून सत्र में विधेयक लाया जाएगा। विधेयक के मसौदे पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में अब 1,00,000 रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी की शिकायत पर E0 FIR दर्ज होगी। और राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर तेज तो कहीं कहीं भारी बरसात हुई। आज

0: अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद विद्यार्थियों के हित में पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित कराना आवश्यक था।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभागों ने निरंतर कार्य किया और कल देर रात इसका मसौदा प्रस्तुत किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस मसौदे पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। इस मसौदे में फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था और कड़ी सजा का प्रावधान शामिल है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के साथियों के सुझाव को शामिल करने के बाद मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सरकार का हर संभव प्रयास रहेगा कि इससे संबंधित विधेयक को पारित किया जाए।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक से चिकित्सकों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करने और जल्द स्वस्थ होने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में उनसे जल्द अपना पुराना वजन प्राप्त करने की भी कामना की। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी के स्थान पर नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय के सचिव पद पर नियुक्ति दी गई है। श्री गंगवार राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं और राजस्थान में शिक्षा सचिव रह चुके हैं। टी के अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा ने नई परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने को कहा है। कल जयपुर में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की बैठक में उन्होंने ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर, पुष्कर सरोवर, पुंछरिका लौठा, खाटू श्यामजी मंदिर, बेणेश्वर धाम और रामदेवरा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए सड़क, पेयजल, बिजली, विश्राम स्थल और अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया गया। इस दौरान गुरु पूर्णिमा और रामदेवरा मेले की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। साथ ही प्रदेश के पैनोरमाओं के संरक्षण, रखरखाव और देवस्थानों से जुड़ी बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में अब 1 लाख रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी की शिकायत पर E0 FIR दर्ज होगी। राज्य पुलिस की ये नई व्यवस्था

0: कल से लागू हो गई है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। E0 FIR के तहत शिकायत मिलते ही संबंधित मामले में बिना देरी के FIR दर्ज कर प्रारंभिक कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। पहले ये व्यवस्था 5 लाख रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी के मामलों में लागू थी। राज्य पुलिस के अनुसार 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के मामलों की जांच जिला स्तर पर जबकि इससे अधिक राशि के मामलों की जांच राज्य स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस थाना जयपुर करेगा। राज्य सरकार की ई मित्र व्हाट्सएप सेवा के तहत अब 21 और नई सेवाएं जोड़ी गई हैं। इसके माध्यम से बिजली और नगरीय सेवाओं का लाभ भी लिया जा सकेगा। इसके तहत बिजली बिल डाउनलोड करने, शिकायत दर्ज कराने और उसकी स्थिति जानने जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा फायर NOC, ट्रेड लाइसेंस, नामांतरण, UD टैक्स और स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस सहित कई नगरीय सेवाएं भी व्हाट्सएप पर मिलेंगी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने बताया कि सेवा शुरू होने के बाद अब तक 1,40,000 से अधिक लोग इसका उपयोग कर चुके हैं। इन सेवाओं को जल्दी ही ई मित्र मोबाइल ऐप और ई मित्र कियोस्क से भी जोड़ा जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आकांक्षी ब्लॉक और जिला कार्यक्रमों में कमजोर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में विशेष प्रयास कर राज्य की समग्र रैंकिंग में सुधार लाने पर जोर दिया है। मुख्य सचिव ने कल जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों के साथ बैठक कर विभिन्न विकास सूचकांकों पर प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि, आधारभूत सुविधाओं और वित्तीय समावेशन से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। श्रीनिवास ने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर तेज तो कहीं कहीं भारी बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 22 शहरों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बीकानेर, उदयपुर और सलुम्बर समेत कई जिलों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। सलुम्बर के झालरा में 62 मिलीमीटर पानी बरसा। कलजमेर, अलवर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, नागौर, प्रतापगढ़, सिरोही, सीकर, राजसमंद, झुंझुनू, जालौर, हनुमानगढ़ और डूंगरपुर सहित अन्य शहरों में बरसात हुई। कोटपुतली बहरोड में लगातार बारिश से मौसम सुहावना हो गया। वहीं कई स्थानों पर जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ। उधर भीलवाड़ा जिले के रायपुर क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों और कुछ मवेशियों की मौत हो गई। बरसात के कारण कई स्थानों पर नदी नालों में पानी की आवक जारी है। पाली जिले के जवाई बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है और जलस्तर बढ़कर 31 फीट पहुंच गया है। वहीं डूंगरपुर में सोम और माही नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से बेणेश्वर धाम टापू बन गया है। इस तक पहुंचने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 3-4 दिन मॉनसून सक्रिय रहेगा। आज अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए इसी मॉनसून सत्र में विधेयक लाया जाएगा। विधेयक के मसौदे पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में अब 1 लाख रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी की शिकायत पर E0 FIR दर्ज होगी। और राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर तेज तो कहीं कहीं भारी बरसात हुई। आज अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: और उनके करियर में कह सकते हैं कि फिर एक नया मोड़ आया। सुचित्रा सेन की अगर बात करें तो उनकी जोड़ी उत्तम कुमार के साथ बेहद सफल और लोकप्रिय जोड़ी बांग्ला सिनेमा में मानी जाती है। सत्यजीत रे की फिल्म चिड़ियाखाना में उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी उत्तम कुमार को मिला। वो एक सफल निर्माता, निर्देशक और पार्श्व गायक भी थे। 50 से 70 यानी कि 2 दशकों से ज्यादा

सफल अभिनेता के तौर पर स्थापित रहे। उनकी हिंदी फिल्म अमानुष खूब पसंद की गई। कुछ एक और हिंदी फिल्मों में भी उत्तम कुमार नजर आए थे और भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा 24 जुलाई 1980 को इस दुनिया फानी से वो विदा हुए। उनकी कुछ एक अगर फिल्मों की बात करें तो सागरिका, एक थी रात, हारानो सूर, पाथे, हेलो देर, इंद्राणी, माया मृग, सप्त दी, बिपाशा, भ्रांति बिलाश, दयानिया, कोकोने मेघ, ये सारी उनकी कुछ अलग अलग फिल्में थीं।

तुम्हारी सुलु, इस फिल्म का गीत है गुरु रंधावा की आवाज। गीत और संगीत भी गुरु रंधावा के।

तुम्हारी सुलु इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम। इसी गीत के साथ ही श्रोताओं संपन्न होता है दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बाती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और लेखक मनोज कुमार की।

मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। ये जगह अब पाकिस्तान में है। उनका वास्तविक नाम है हरि कृष्ण गोस्वामी। जब वो 10 बरस के थे तो देश का

बंटवारा हो गया और पूरा परिवार दिल्ली में आ गया और रिफ्यूजीज यानी शरणार्थियों के एक कैंप में पुराने राजेंद्र नगर दिल्ली में रहने लगा। मनोज कुमार ने अपनी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही पूरी की। बचपन से ही दिलीप कुमार उनके पसंदीदा अभिनेता थे। वो दिलीप कुमार की कॉपी किया करते थे अपने कॉलेज के दिनों में। शुरुआती दिनों में मनोज कुमार ने कुछ छोटे मोटे काम किए, यहां तक कि उन्होंने सिलाई मशीन के सेल्समैन के तौर पर भी कुछ दिन काम किया। बाद में अभिनेता बनने का सपना लेकर मनोज कुमार मुंबई आ गए और यहां उन्होंने कुछ छोटी फिल्मों से की अपनी शुरुआत, जैसे सन 1957 में आई थी फिल्म फैशन।

तकरीबन 5 बरस बाद विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता के जरिए मनोज कुमार को मिली अपनी पहली बड़ी कामयाबी। इस फिल्म में उनकी नायिका थी माला सिन्हा।

0: सन 1965 में ही विचार आया शहीद भगत सिंह पर फिल्म बनाने का। फिल्म शहीद का निर्माण बहुत सारे संघर्षों से घिर गया था, लेकिन मनोज कुमार ने ठान लिया था कि ये फिल्म तो बनकर रहेगी और शहीद भगत सिंह के जीवन पर सबसे प्रामाणिक फिल्म यही है जिसमें मनोज कुमार शामिल थे। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा भी नजर आए। फिल्म के गीतकार और संगीतकार थे प्रेम धवन।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे।

मनोज कुमार के करियर के दो अलग अलग पहलू हैं। एक वो पहलू है जहां वो रूमानी नायक के तौर पर कई फिल्मों में नजर आए, और दूसरा पहलू है भारत कुमार वाला पहलू, जहां उन्होंने देशभक्ति और सरोकार वाला सिनेमा बनाया। तो चलिए पहले बतौर चॉकलेटी हीरो मनोज कुमार की फिल्मों की कुछ झलक यानी कुछ गाने सुन लिए जाएं। फिल्म पत्थर के सनम।

जब फिल्म शहीद को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिखाया गया तब ये फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने मनोज कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, क्या मेरी नारी जय जवान जय किसान पर फिल्म नहीं बन सकती? मनोज कुमार ने दिल्ली से लौटते हुए कुछ रजिस्टर खरीदे और कुछ नए पेन। दिल्ली से मुंबई तक के सफर में फिल्म उपकार की कहानी तैयार हो चुकी थी और इस तरह सन 1967 में आई रुपहले पर्दे की एक नायाब बेमिसाल फिल्म उपकार।

उपकार के इस गाने की एक दिलचस्प कहानी है। गुलशन बावरा रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे। रेल गोदाम में पंजाब से आती थीं गेहूं की बोरियां। जब गेहूं की इतनी सारी बोरियां उतरा करती तो गुलशन बावरा के कवि मन में एक पंक्ति कौन थी, मेरे देश की धरती सोना उगले। बरसों बरस ये पंक्ति उनकी डायरी में बनी रही। बाद में मनोज कुमार ने इसे फिल्म उपकार में शामिल किया। सन 1970 मनोज कुमार अपनी दूसरी फिल्म लेकर आए, पूरब और पश्चिम। ये फिल्म परंपरा और पश्चिमी संस्कृति के टकराव की कहानी थी। इस फिल्म की चारों तरफ बड़ी तारीफ हुई और ये गाना जैसे भारत के गौरव का गान बना।

0: सुनाता हूँ।
1: सन 1972 में मनोज कुमार नजर आए फिल्म बेईमान में। इसी साल मनोज कुमार ने अपने प्रोडक्शन से अगली फिल्म प्रस्तुत की जिसका नाम था शोर।

फिल्म शूर के गाने बेहद मकबूल हुए। सन 1974 मनोज कुमार ने एक ऐसी फिल्म बनाई आजादी के बाद बनते हुए भारत के सपनों से थोड़े से मोहभंग की कहानी थी। एक ऐसी फिल्म जिसने बताया कि हम सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देश में हैं कुछ समस्याएं जिन्हें निपटाना जरूरी है। यह फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के साथ नजर आईं जीनत अमान।

के बाद मनोज कुमार नजर आए फिल्म 10 नंबरी में। मनोज कुमार दिलीप कुमार के हमेशा से जबरदस्त फैन रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका उन्हें मिला सन 1981 में अपनी फिल्म क्रांति के जरिए।

0: देंगे।
1: क्रांति के बाद मनोज कुमार की फिल्में ज्यादा नहीं चली। धीरे धीरे मनोज कुमार नेपथ्य में चले जाते रहे, लेकिन मनोज कुमार के चाहने वाले कायम रहे। आज भी उनके मैनरिज्म को, उनकी अदाओं को, रुपहले पर्दे पर उनकी मौजूदगी को लोग बहुत याद करते हैं। आइए सन 1970 में आई फिल्म पहचान का ये गाना सुने, जिसे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार नीरज ने लिखा। बस ये

0: सन 1989 में मनोज कुमार ने बनाई फिल्म क्लर्क और सन 1995 में मैदाने जंग। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
3: राजस्थान से
4: बताइए जी, क्या करते हैं हमीद भाई?
3: सर मैं बैंगल्स का काम करता हूँ सर, चूड़ी पे प्रिंट का काम है मेरा सर।
4: तो ये खानदानी

0: काम है
1: सर? ये खानदानी काम है सर, खानदानी काम सर हमारा कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिंग का है।
0: ये तो मुझे पता है कि जो चीपा समुदाय के लोग होते हैं ये ब्लॉक प्रिंटिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं हिंदुस्तान में, है ना?
1: जी सर।
0: कितने सालों से ये काम चला आ रहा है और देश के किन किन राज्यों में आप लोग मौजूद हैं?
1: कई पीढ़ियों से हमारा ये काम चला आ रहा है सर, ये हमारा खानदानी काम है ब्लॉक प्रिंटिंग का।
0: जी,
1: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कई राज्यों में ये चीपा समाज निवास करता है सर, ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य करता है।
0: आपने क्यों छोड़ दिया ये काम?
1: सर मैंने सर काम छोड़ा नहीं सर, मेरा शुरू से रुझान दूसरे काम में था और मैं चूड़ी के काम में मेरा रुझान लग गया और मैं चूड़ी पे प्रिंटिंग का काम करता हूँ सर। जो राजस्थानी चूड़े बनते हैं हमारे, बड़ी से छोटी, छोटी छोटी चूड़े बनते हैं, उन पे प्रिंटिंग का काम होता है सर।
0: ये लाख की चूड़ियाँ हैं या कांच की हैं?
1: ये सर कांच की चूड़ी भी होती है, प्लास्टिक की चूड़ी भी होती है सर।
0: अच्छा अच्छा, राजस्थान में तो लाख का काम बहुत ज्यादा होता है।
1: राजस्थान में सर लाख का काम जयपुर में ज्यादा होता है सर।
0: अच्छा अच्छा,
1: और हमारे राजस्थान की परंपरागत चूड़ी है ढालू मोती जिनको बोलते हैं।
0: जी जी,
1: जिनकी महिलाएं पहनती हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं सर पहने हुए मोती।
0: बहुत सारे चटक रंग होते हैं, है ना?
1: और राजस्थान तो सर चटक रंगों के लिए प्रसिद्ध है सर।
0: बिल्कुल, मुझे बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं आपसे बात करते हुए। मुझे ये बताइए कि जब ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता था तो चूड़ियों पर पेंट करने का काम आपने खुद सीखा, इजाद किया, क्या मामला है?
1: सर चूड़ी पर पेंटिंग काम करने का काम मैंने खुद ने सीखा है सर। पहले मैं कहीं जाता था, वहाँ चूड़ी काटने का काम होता था, वहाँ पर उसने हमें बताया इस पे कुछ काम करो, तो मैंने अपने मर्जी से काम करके बताया जो आज तक चल रहा है अल्लाह के करम से।
0: क्या बात है, तो ये बहुत ही अनूठा काम है और कलाकार को अपनी कला से बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। दुनिया के किन किन देशों तक आपका काम पहुँच चुका है?
1: हिंदुस्तान में सर माल जाता है सर हमारा। अच्छा। मैं लेबर हूँ, मजदूरी करता हूँ, प्रिंटिंग का काम करता हूँ सर, और हमारे काम को गति देता है विविध भारती।
0: किस तरह से, ये भी बताइए
1: सर। विविध भारती में इतने मजेदार कार्यक्रम आते हैं, इतने मधुर गीत बजते हैं, इतनी अच्छी जानकारियाँ मिलती है, पूरे देश से हमें मिलने का मौका मिलता है सर एक ही प्लेटफॉर्म पर, जो ये काम सुचारू रूप से विविध भारती करती है।
0: क्या बात है, अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर मुझे फिल्म राजकुमार का गाना सुनना है, तुमने पुकारा और हम चले आए।
0: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: मैं बड़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से एम ताहिर बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ जी ताहिर जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर दुआएं हैं, नजर इनायत है, सब कुछ मस्त है, अल्लाह का करम है सर।
0: क्या बात है, आपके इलाके के बारे में बताइए।
1: सर इलाके के बारे में, ये एक सर पहाड़ी इलाका है सर ये हमारा बड़ापुर, और चारों तरफ से यहाँ पे नदियाँ हैं, उसके ऊपर एक टापू पे बसा हुआ जैसा है।
0: क्या बात है, तो चारों तरफ कौन कौन सी नदियाँ हैं?
1: ये सर यहाँ पे खो है, वो नट्टा नदी कहलाती है, गुला नदी कहलाती है, और यहाँ से कुछ ही दूर, यहाँ से 15-20 किलोमीटर पे पर्वतीय ये हिस्सा है।
0: क्या बात है, आप क्या काम करते हैं?
1: मैं सर एक शॉपकीपर हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन।
0: ओके, और रेडियो से विविध भारती से जो नाता है आपका, उसके बारे में बताइए।
1: वो सर आप लोगों की पेशकश से काफी पुराना नाता है, जो बात रेडियो में है वो जितने भी प्रोग्राम और है, यानी कि मनोरंजन का साधन है, वो रेडियो के मुकाबले नहीं है सर।
0: क्या बात है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा,
1: खास करके आपकी पेशकश।
0: जी शुक्रिया,
1: मैं आपसे पहली बार बात हुई लेकिन कार्यक्रम आपके मिस नहीं करता हूँ, आपकी जो पेश करने का अंदाज ही आकाशवाणी नजीबाबाद है सर हमारे पास में, यहाँ पे 20-30 किलोमीटर दूर में।
0: जी जी
1: जी हाँ, उसके पास से ही हूँ मैं, 20-30 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, हमारे नगर पंचायत से।
0: अच्छा, इन दिनों के कौन से प्रोग्राम है जो आपको याद रह गए हैं?
1: विविध भारती के सारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जितने भी होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, और हेलो फरमाइश तो है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं।
0: आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर फिल्म का नाम है तवायफ, और गीत के बोल है सर तेरे प्यार की तमन्ना, और आवाज है महेंद्र कपूर जी की।
0: ये बीआर चोपड़ा की फिल्म थी, और अच्छे गाने की याद दिलाई है, बहुत कम बजता है ये गाना। पूरी हो रही है आपकी फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: सर जी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा, सबसे ज्यादा मजा तो इस बात से आया कि आप छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं।
1: जी और सर, ये मीठी मीठी आवाज, ऐसा लग रहा है कि हमारे बड़े आदरणीय यूनुस खान जी बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही पहचाना।
1: और सर मैं आपसे बहुत बेताब था सर बातें करने के लिए। सर मेरी आपसे हेलो फरमाइश के माध्यम से सर 2 से 3 साल बाद बात हो रही सर आपसे मेरी।
0: बहुत ही बढ़िया। छिंदवाड़ा शहर से एक अलग तरह का लगाव रहा है, कभी हम वहाँ रहे हैं और आकाशवाणी से जुड़े भी रहे हैं वहाँ पर।
1: बिल्कुल सर जी, और आप हमारे आकाशवाणी छिंदवाड़ा पे आए थे सर जी, उसके बाद दूसरे दिन आकाशवाणी का मेरे को जानकारी हुई सर, बहुत दुख हुआ मेरे को, ये लगा कि एक दिन पहले जान लेता मेरे को आकाशवाणी।
0: जी मुलाकात होती। बिल्कुल बिल्कुल, क्या हालचाल है छिंदवाड़ा की, बारिश कैसी है?
1: हमारे यहाँ पे तो बारिश सर अभी 2 दिन से हो रही है सर जी, और अभी पानी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है सर अभी तो।
0: अच्छा बढ़िया है। और अब ये बताइए कि विविध भारती छिंदवाड़ा में तो FM पर सुनाई देती है ना?
1: जी बिल्कुल सर, हम ऐप के माध्यम से विविध भारती सुनते हैं सर जी, न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से सर।
0: अच्छा, और सबसे ज्यादा पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है आपका?
1: सर जी मैं तो हेलो फरमाइश बहुत ज्यादा सुनता हूँ, और इसके बाद में हेलो सहेली भी सुनता हूँ सर जी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुतिकरण होते हैं सर मुंबई आकाशवाणी के, और हमारे जो भी अनाउंसर है सर जी बहुत ही अच्छी वार्तालाप के साथ, ये आज के फनकार सब बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी।
0: आज किस गाने की फरमाइश आप करने वाले हैं?
1: जी सर आज मुझे सुनना है फिल्म का नाम है सर प्रेम रोग, और गीत के बोल रहेंगे सर जी भवरे ने खिलाया फूल फूल के ले गया राजकुमार।
0: क्या बात है, बढ़िया गाने की फरमाइश आपने की है। ये फिल्म देखी है आपने?
1: जी जी सर, प्रेम रोग फिल्म सर बहुत ही अच्छी है सर जी, और इसके गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी।
0: बढ़िया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, राज कपूर की ये फिल्म। शुक्रिया, आपको सुनवाते हैं प्रेम रोग फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो यूनुस जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं?
1: सर मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, पर मैं आपका प्रोग्राम हमेशा सुनती रहती हूँ। सर पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जय जगन्नाथ, क्योंकि मैं पूरी ओडिशा भुवनेश्वर से बोल रही हूँ, इसलिए जय जगन्नाथ आपको।
0: जय जगन्नाथ।
1: और हमारा अभी रथ यात्रा गया है
0: जी।
1: तो मैं प्रियदर्शनी मिश्रा बोल रही हूँ, अभी मैं शायरी बोलती हूँ। मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं, प्यास से आंखों में भी कुछ ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं गम में आंसू निकले, जरूरी नहीं गम में आंसू निकले, मुस्कुराते आंखों में भी सैलाब होते हैं।
0: क्या बात है, बेहतरीन। अब मुझे ये बताइए कि आपको विविध भारती से इतना लगाव रखती हैं? हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपने तय कर लिया था कि आज मुझसे बात करनी है।
1: सर आप जैसे स्टार कहाँ मिलेंगे, विविध भारती में मिलेंगे, इसलिए इतना लगाव है
0: जी। कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं प्रियदर्शनी?
1: मुझे अच्छा लगता है सबसे ज्यादा आपका प्रोग्राम, जब आप आते हैं, मैं सच में बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, आप मेरे जज्बात को समझ सकते हैं
0: जी।
1: फिर मुझे हेलो सखी सहेली और गीतों से भरी कहानी, ये बहुत अच्छा लगता है। और आज के फनकार बहुत सारे हैं सर, जैसे मैंने विविध भारती, जैसे मेरे बचपन से विविध भारती सुनते आई हूँ।
0: अच्छा।
1: आज पूरा ओडिशा में हलचल मच जाएगा, मेरा लग गया फोन करके।
0: बिल्कुल,
1: पूरी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है।
0: तो आप किस शहर में, आपने कहा आप जगन्नाथपुरी में?
1: भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से हैं।
0: तो
1: विविध भारती ऐसा क्या होता है ना, सभी कोई मिल जाते हैं, विविध भारती जैसा कोई स्टेशन नहीं मिलेगा हमें, जैसे लगता है हम ही बैठते हैं, हम ही बात करते हैं, हम ही सब कुछ है, क्योंकि आप एहसास नहीं करने देते हम पराए हैं।
0: बिल्कुल सही आपने बात बोली है।
1: और मेरा गाना है आंदोलन मूवी का, आएगी हर पल याद तुम्हें।
0: अब पूरी कर रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं जी?
1: मैं गिरीश कुमार तिवारी बोल रहा हूँ, भोपाल न्यूज से बात कर रहे।
0: अच्छा अच्छा, बताइए जी, भोपाल के क्या हालचाल है?
1: भोपाल में अच्छा है, इस वक्त हल्की हल्की बारिश है और मौसम भी बड़ा सुहाना है इस वक्त, और हरियाली छाई हुई है चारों तरफ और बड़ा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ भोपाल तालाब है जो आसपास बिल्कुल हरियाली छाई हुई है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब धीरे धीरे बरसात होती रहती है, रिमझिम वगैरह। बहुत अच्छा शहर है, हरियाली पहाड़ियों के उसमें।
0: जी, जब बहुत तेज बारिश होती है तो भदभदा के गेट खुल जाते हैं।
1: जी हाँ, और जब ज्यादा बारिश होती है तो जो नदी है उसका पानी आ जाता है, तो उसमें पूरे के पूरे गेट खुलते हैं, तब एक अलग ही बड़ा दृश्य रहता है वहाँ का।
0: और सब लोग वहाँ पिकनिक के लिए जाते हैं?
1: सब पिकनिक के लिए जाते हैं वहाँ पर।
0: तो इस बार अभी ऐसा मौका आया नहीं है?
1: नहीं, अभी गेट नहीं खुले, बारिश भी नहीं हुई है, हल्की रिमझिम रिमझिम टाइप की होती रहती है।
0: और बताइए अपने बारे में और भोपाल शहर के बारे में।
1: भोपाल शहर तो वैसे भी आप, बिरला मंदिर है, भोपाल तालाब है, सैर सपाटा है, बंदियार है, कई जगह है, और भोपाल के पास सांची है, और यहाँ भीमबेटका भी है अपने अब्दुल्लागंज के आगे
0: जी,
1: जहाँ पांडव वगैरह ने निवास किया था
0: जी,
1: और कई जगह है वहाँ।
0: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है। अच्छा, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: मैं उपकार फिल्म का मेरे देश की धरती सोना उगले उगले ही है मोती।
0: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार गाना गुलशन बावरा का लिखा
1: है। और मेरे को देशभक्ति फिल्में बहुत पसंद है।
0: अरे वाह,
1: फिल्में भी मैं देखता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनवाते हैं आपको उपकार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी सर नमस्ते, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। यूनुस सर बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी।
1: अरे ये आवाज तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, आई एम ग्रेटफुल आपसे बात हो रही सर।
0: जी मुझे भी अच्छा लग रहा है।
1: फोन कनेक्ट हुआ है तो सर विद भारती के बारे में अब कितना कुछ बताऊँ उतना कम है, क्योंकि मेरे जीवन की जब शुरुआत हुई थी इंदौर आए थे हम, और जब गांव में रहते थे तब पिताजी सुनते थे ट्रांजिस्टर पे, तो विद भारती बीच बीच में कनेक्ट होता था, फिर मिडवे पे सुनते थे वो
0: जी।
1: उस समय से वो जो यादें हैं जिन्हें बयां करना इतना आसान नहीं होता है, वहां से एक जीवन के सपने बुनते गए। वो जो पुराने गाने आते थे, सुबह के प्रोग्राम आते थे, सखी सहेली, हेलो फरमाइश, सारी यादों ने एक मिलजुल के मेरे अंदर एक फिल्मी पना लेके आया था। मैं खुद FTII से एज ए स्क्रीन प्ले राइटर में पास आउट किया हूँ सर वहाँ पे।
0: क्या बात है।
1: जी जी जी, वो मेरा एक दौर था जब इस दुनिया मेरा कनेक्ट हुआ था, लेकिन फिर एक घटना होती है, मेरे फादर को कैंसर होता है
0: जी,
1: उसके बाद मेरी लाइफ में वापस एक यूटर्न आता है
0: जी।
1: और विद भारती ने वैसा ही साथ निभाया, बल्कि और अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते गए आपके द्वारा, एक से एक ज्ञानवर्धक प्रोग्राम मिले हैं। और शुरू से क्योंकि मैं भी अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ, छोटा मोटा एज ए स्पीकर का रोल है मेरा, मैं भी ठीक ठाक करता हूँ, अपना रोल पे करता हूँ, तो वो आपका जो अदायगी, आपका जो अंदाज है, वो कहीं ना कहीं जहन में रहता है कि यूनुस सर कैसे बात करते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे प्रोग्राम को पेश करते हैं। मतलब आप जब बात करते लगता है कि मैं रेडियो नहीं टीवी देख रहा हूँ, ऐसा फील होता है सर।
0: बहुत शुक्रिया। और आज की इस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं।
1: मेरा

0: अभी क्योंकि जिस मौसम में है और जो पूरे भारतवर्ष में एक अलग ही बरसात का माहौल बना है, तो एक रफी साहब का अनजाना मूवी का बड़ा ही प्यारा गाना है। आप बोले तो मैं गा के गुनगुनाऊं या ऐसे बता दूं?
1: नहीं नहीं बिल्कुल गाइए।
0: रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय मीठी मीठी यादों में।

0: जी कैसे हैं आप?
1: बस सब बढ़िया है, अस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं और मस्त रहते हैं।
0: बहुत बढ़िया,
1: पहली बार फोन लगा सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। निरंतर आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं, दिन भर हमारा रेडियो चालू रहता है शॉप पे, हमारे टेलरिंग का काम है तो काम के साथ हम लोगों का मनोरंजन बहुत बढ़िया आप लोग करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विविध भारती को।
0: बहुत शुक्रिया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: सर मुझे धर्मात्मा फिल्म का गाना सुनना था। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, ये वाला गाना सुनना था सर।
0: जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस गाने की आपने फरमाइश की। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: मेरा कॉल लगा।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: तो बड़ा अचंभा लगा भाई, 20 साल से भी श्रोता कॉल लगा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कई ऐसे श्रोता होते हैं जो बहुत ज्यादा कोशिशें करते हैं, क्योंकि देश भर के श्रोता जब कॉल लगा रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनका फोन लग पाए।
0: बिल्कुल, और ये रेडियो के प्रति श्रोताओं का जुनून होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और वाकई मैं भी विविध भारती का पुराना लिसनर हूँ और काफी समय से सुनता आ रहा हूँ। कोरोना काल में कुछ कार्यक्रम बंद हुए, लेकिन अब वो फिर से चालू हुए हैं, इसके लिए देश की सुरीली धड़कन को तहे दिल से धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
0: किशोर दा की आवाज में मंजिल फिल्म से एक गीत है, रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जा।

0: हेलो फरमाइश।
1: सर जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ ग्रीन सिटी क्लीन सिटी से।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया
1: जी। सर बस बहुत अच्छा हूँ, और विविध भारती का जो हेलो फरमाइश है बड़ा ही लोकप्रिय और चर्चित प्रोग्राम है। एक बार जब मैंने इस प्रोग्राम में सुना, एक श्रोता का कॉल लगा और उन्होंने बताया कि 20 साल

0: लंबे से सुनता आ रहा हूँ। कोरोना काल में कुछ कार्यक्रम बंद हुए लेकिन अब वो फिर से चालू हुए हैं, इसके लिए देश की सुरीली धड़कन को तहे दिल से धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
0: किशोर दा की आवाज में मंजिल फिल्म से गीत है, रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग।

0: हेलो फरमाइश जी, बोलिए, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, बोल रहे हैं बेंगलुरु से।
0: आपका नाम क्या है?
1: सीतारमन।
0: सीतारमन जी, कब से आप विविध भारती सुन रहे हैं?
1: हम तो 1957 से, हम पैदा हुए 1940 में
0: जी,
1: अभी हमारा 86 ईयर्स हो रहा है।
0: और पूरी जिंदगी विविध भारती के साथ बिताई है आपने?
1: हाँ, विविध भारती का पंचरंगी कार्यक्रम ऐसा था पहले।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: उसके बाद में चेंज हो गया विविध भारती।
0: बिल्कुल, देश की सुरीली धड़कन हम बोलने लगे उसके बाद।
1: मिस्टर यूनिफॉर्म बोल रहे क्या?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: मेरी प्रेजेंट सरप्राइज है। और कैसे है?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। आप बताइए, विविध भारती से जो आपका लगाव रहा है उसके बारे में बताइए।
1: बहुत अच्छा लगाव है। हम तो पहले तो यही तो था, विविध भारती और रेडियो सिलोन। तो रेडियो सिलोन तो बाद में बंद हो गया, लेकिन विविध भारती जो है बहुत अच्छे से तरह चल रहा है।
0: आपको हिंदी सिखाने में विविध भारती ने क्या भूमिका निभाई है?
1: बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम तो ऐसा तो लग रहा है कि हमको जितना प्रोग्राम बज रहा है ना, वो कम है, और ज्यादा होना चाहिए।
0: अच्छा, क्या बात है। अच्छा, आज आप किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: हम तो गजल का।
0: कौन सा?
1: मोहम्मद रफी का है, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। यही वाला गाना।
0: क्या बात है, आप तो गाते भी बहुत अच्छा है, जरा सुनाइए कुछ।
1: पहले हम गाते थे, लेकिन बीच में क्या हो, गला खराब हो गया हमारा, बोल से यहाँ पर गले में कैंसर हो गया था।
0: ओ,
1: बाद में से

0: संख्या ठीक हो गया, लेकिन हमारा जो रेडिएशन चलते हमारे गला का बॉक्स जो है खराब हो गया।
1: जी हम समझ सकते हैं और हमको बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात हुई।
0: नूर की आलत किसे पेश करूं, मुरादों की हसीनत किसे पेश करूं।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं कुशलेश वर्मा जयपुर राजस्थान से।
0: अच्छा अच्छा बोलिए, कैसे हैं जी?
1: मैं बढ़िया सर, बहुत टाइम से सोच रहा था आपसे बात करने की, लेकिन कई बार कॉल नहीं लगता है, मैंने कॉल करना ही छोड़ दिया था, लेकिन आज कॉल लगा, बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी। आखिरकार मेहनत रंग लाई आपकी
1: जी।
0: जयपुर की क्या हाल है, बारिश हो रही है?
1: बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, रोज अलर्ट आता है कि भारी वर्षा की संभावना है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है बिल्कुल, क्योंकि बारिश जो है शायद सावन का इंतजार कर रही है, इस बार सावन लेट है तो बारिश भी सावन के साथ ही आने वाली है
0: जी। जबकि पिछले बरस तो क्या बारिश हुई थी जयपुर में,
1: पिछले बरस तो सारे रिकॉर्ड टूट गए थे बारिश के,
0: और इस बरस जो है वो बारिश लंबा इंतजार करवा रही है आपको?
1: बेहद लंबा इंतजार करा रही है, लोग तरस गए हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब गर्मी से ज्यादा ये वाला मौसम जो है वो परेशान कर रहा है
0: जी। बिल्कुल, आप क्या करते हैं जयपुर में?
1: मैं चाय का बिजनेस है छोटा सा, उसे रन कर रहा हूँ। उससे पहले मैं जॉब करता था, एम एन

0: कंपनी में।
1: अच्छा अच्छा, तो कारोबार अच्छा चल रहा है आपका?
0: हाँ अभी मतलब नया स्टार्टअप है तो थोड़ा टाइम लग रहा है सेट होने में, धीरे जम जाएगा।
1: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: मैं वारिस फिल्म का गाना सुनना चाहूंगा, लता मंगेशकर जी की आवाज में, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम।
1: क्या बात है जी, ये उत्तम सिंह जी का संगीत और बहुत ही शानदार फिल्म। अच्छा लगा आपसे बात करके, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स सोमवार को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 11 बजे। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0222867 0288 यानी 0222867 0288 और 0224002466 यानी 0224002462। आपको बता दें कि सोमवार को दिन में 11 बजे फोन कॉल्स रिकॉर्ड होते हैं और जिन श्रोताओं के कॉल्स एक बार शामिल हो जाते हैं उनसे हम ये अनुरोध करते हैं कि कृपया 2 महीने तक हमें कॉल न करें ताकि नए श्रोताओं को मौका दिया जा सके। चलने से पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। तो अब अगली बार होगी मुलाकात, तब तक नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्ताने।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आजा तेरी याद आई
4: कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
0: मुकेश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
0: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
0: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
1: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती।
5: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर से विविध भारती के कार्यक्रम।
6: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
7: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
6: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
7: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
6: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
7: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
6: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आंखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आंखें।
0: आंखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं।

0: उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
1: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
4: विविध भारती से रंग तरंग कार्यक्रम चल रहा है और अब गुलजार के बोल आशा भोसले की आवाज एल्बम का नाम दिल पड़ोसी है।

संभाले जलते तवे पर, जलते तवे पर झुलस गया पानी।

0: निधा फाजली की रचना थी, चंदन दास की आवाज थी।
1: देर तक बैठे हुए दोनों ने बारिश देखी। वो दिखाती थी मुझे बिजली के तारों पर लटकती हुई बूंदें, जो ताकुब में थी एक दूसरे के और एक दूसरे को छूते ही तारों से टपक जाती थी। मुझको ये फिक्र कि बिजली का करंट छू गया नंगी किसी तार से तो आग के लग जाने का बायस होगा। उसने कागज की कई कश्तियां पानी में उतारी और ये कह के बहा दी कि समंदर में मिलेंगे। मुझको ये फिक्र कि इस बार भी सैलाब का पानी कूद के उतरेगा कोहसार से, जब तोड़ के ले जाएगा ये कच्चे किनारे। ओक में भर के वो बरसात का पानी अध भरी झीलों को तरसाती रही। वो बहुत छोटी थी, कमसन थी, वो मासूम बहुत थी। आबिशारों के तरन्नुम पे कदम रखती थी और गूंजती थी, और मैं उम्र के इफकार में गुम तजुर्बे हमराह लिए साथ ही साथ में बहता हुआ चलता हुआ।

0: अदनान समी बारिश की बूंदों का गाना गा रहे थे। विविध भारती से आप सुन रही हैं रंग तरंग, एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आजा तेरी याद आई।
0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे

0: दिखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
1: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
2: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
3: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
4: सुनिए।
3: छाया कंगुली की सोंधी आवाज जमीन

11:47 हो चुके हैं, विविध भारती से गजलें बज रही हैं और साथ में कुछ मॉडर्न गाने भी। केके की आवाज गूंज रही।

सुरेश वाडकर की आवाज में ये सनी फिल्म की रचना थी और रंग तरंग प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश थी। रंग तरंग कार्यक्रम तो यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन विविध भारती पर कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। सुनते रहिए विविध भारती।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
4: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
3: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रश्नपत्र लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
5: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
3: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री वांगचुक को रचनात्मक संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को लेकर

0: दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
1: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है।
0: श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही जारी है। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 75,672 जबकि निफ्टी 196 अंक गिरकर 23,673 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में यादों

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

सुनीता फिल्म का गीत राजा मेहंदी अली खान के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। शोर फिल्म का गाना संतोष आनंद के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। विविध भारती पर यादों की महफिल, आज मनोज कुमार की याद।

पहचान फिल्म का ये गीत आपने सुना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम सन्यासी। विश्वेश्वर शर्मा है गीतकार।

0: ध्यान छोड़कर पाप नहीं अपना है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज दोनों सदनों में शुरुआत में करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक और इस मामले पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है और अगले चार दिन तक कई क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लिए रेड अलर्ट और कई जिलों के लिए ऑरेंज तथा येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच अलवर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और सीकर सहित अनेक जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। उधर उदयपुर के लसाड़िया क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 11 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश से डूंगरपुर में सोम और माही नदियां उफान पर हैं तथा कई स्थानों पर जलभराव और पुलियाओं के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित हुआ है। भरतपुर की संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने मॉनसून के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के अधिकारियों को नगरीय क्षेत्रों में सिविल लाइन, नालों और ड्रेनों की नियमित सफाई करने तथा जलभराव नहीं होने देने के निर्देश दिए। उन्होंने बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था मजबूत करने, रपटों पर चेतावनी बोर्ड लगाने और खराब स्ट्रीट लाइटों को तुरंत ठीक कराने को कहा। संभागीय आयुक्त ने अस्पतालों आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, जल भराव रोकने और आपदा की स्थिति में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में चल रहे अंगदान जागरूकता अभियान को लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। आमजन की बढ़ती भागीदारी से राजस्थान ने अंगदान संकल्प अभियान में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। प्रदेश में 1,08,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया है। अंगदान जागरूकता अभियान 3 अगस्त तक चलेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेशवासियों से ज्यादा संख्या में अंगदान का संकल्प लेने का आह्वान किया गया है। एक व्यक्ति के अंगदान से कई गंभीर रोगियों को नया जीवन मिल सकता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह परीक्षण एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य के विरुद्ध किया गया था जो उच्च गति और उच्च ऊंचाई वाले हवाई खतरे का अनुकरण कर रहा था और जिसे मिसाइल प्रणाली ने सफलतापूर्वक रोक दिया। मंत्रालय ने कहा कि कुशा मिसाइल प्रणाली लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, मानव रहित हवाई वाहनों और बड़े दुश्मन विमानों सहित विभिन्न तरह के हवाई खतरों को एक विस्तृत दूरी और ऊंचाई के दायरे में निष्क्रिय करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री

राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए डीआरडीओ और सभी संबंधित पक्षों को बधाई दी। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसायटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। सुझाव भेजने का आज अंतिम दिन है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

सिलसिला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है कि इस गाने को इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने भी गाया है। आराम से हम अमिताभ बच्चन वाला वर्जन सुनवा सकते थे, लेकिन हमने चुना लता मंगेशकर वाला संस्करण। एक क्यूट सी बातचीत वाला टेक्स्ट हमने आपको आज के इस कार्यक्रम के लिए दिया है, जिसमें से आपको शब्द चुनने हैं और ये अंदाजा लगाना है कि भाई आज के इस कार्यक्रम में किन किन शब्दों के साथ गाने लिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस टेक्स्ट में शामिल हर शब्द के साथ गाने लिए जाएं, और दिलचस्प ये है कि कुछ गुगली भी हो सकती है, यानी जो गाना आप चुने हो सकता है कि वो शामिल ही ना हो।

तो मजा आएगा इस अंदाजे के खेल में भी। लेकिन बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बात कही है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो लाल रंग पसंद है, ये रंग माता रानी चुनरी के रूप में चढ़ाया जाता है और ट्रेन को आपात स्थिति में रोकना हो तो लाल कपड़ा लहरा कर रुका जाता है। जब इन्होंने रंग की बात कर ही दी है तो हम भी क्यों ना करें। चलिए आप सभी बताइए कि अगर कोई एक रंग चुनने को कहा जाए और फेवरेट रंग बताने को कहा जाए तो आप कौन से रंग को अपना फेवरेट रंग कहेंगे। यहां की जो बातचीत थी उसमें लड़का कहता है कि उसे नीला रंग पसंद है और लड़की कहती है कि उसे लाल रंग पसंद है। लड़का लड़की की बातचीत तो हो गई, लेकिन आप क्या कहेंगे, कौन सा रंग पसंद है आपको। और इसके अलावा एक श्रोता का कमेंट है, अनुमान अनुरूप अकल्पनीय आरंभ सुरीला सफर के पहले शुरुआती गाने में बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता लिखते हैं कि नीले से याद आया राजेश खन्ना फिल्म सफर में कहते हैं, जानती हो नीला प्रेम की परिभाषा है, क्या प्रेम रोक लेने में नहीं समझ लेने में होता है, ये तुम तब समझोगी जब मैं एक दिन तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। ये बहुत ही प्यारी बात लिखी एक श्रोता ने। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखती हैं कि यश चोपड़ा ने रात के बैकड्रॉप में दोनों किरदारों के बीच की केमिस्ट्री को बड़ी खूबसूरती से फिल्माया था। और इसके अलावा रेखा और अमिताभ हमारी फेवरेट हैं, ये बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता है, बल्कि कई श्रोता हैं, मुझे एक के बाद एक कमेंट्स नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं घोड़ा चतुर वाला गाना जरूर बजाइएगा, देखते हैं कार्यक्रम के सफर में क्या हो पाता है। और एक श्रोता है जिन्होंने बिल्कुल पूरी फहरिस्त लिखी है कि इन शब्दों से ये गाने बजाए जाएंगे। 11 गानों और शब्दों की फहरिस्त है, आपकी मेहनत को सलाम। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे तो हरा रंग पसंद है, सप्तरंगी, इंद्रधनुष, तितलियां, पता नहीं इन्होंने बहुत सारी अलग अलग शब्दों के साथ अपनी बात कही है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो आज के इस कार्यक्रम में कमेंट कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं, ईजादे इबारत कर गए जो आज पुनः पधारे हैं सुरीला सफर में, नई ऊर्जा फूंकने स्वयं पधारे हैं, शुक्रिया आपका। मेरे स्कूल के दिनों में सीनियर लड़के लड़कियां सन्यासी फिल्म के गाने पर डांस किया करते थे, पिछले कार्यक्रम में जो गाना बजा उसकी बात हमारे एक श्रोता ने की है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता अपनी बातें कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे कुछ दिलचस्प सवाल भी पूछूंगा और इन दिलचस्प सवालों के जवाब जब आप देंगे तो हम आपको थोड़ा ज्यादा पहचान पाएंगे, आपस में बात होगी, बात से बात चलेगी और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हमने आपसे पूछा है कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, आप में से सभी श्रोता अपनी अपनी बात कहें और सिर्फ रंग का नाम नहीं लिखें बल्कि अपनी बात भी कहें कि ये रंग क्यों पसंद है। तब तक इन साहब की बात सुनते हैं जो किसी एक रंग की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर बताइएगा कि ये गाना किस फिल्म का है और किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

भाई ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि प्रेमनगर फिल्म का ये गीत राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। एक श्रोता लिखते हैं कि आसमानी रंग मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसी से समंदर में पानी का रंग बनता है और दूर पर्वत भी इसी रंग में दिखाई पड़ते हैं। एक और श्रोता है जो लिखती है कि हरे रंग की जहां बात है तो बचपन हरियाली भरे गांव में गुजरा, दूसरे नगर चलकर स्कूल जाते वक्त हरे भरे खेतों के बीच गुजरते रास्तों से जाना होता था, छुट्टी के दिन खेत में जाना होता था। प्रकृति के बीच जो पले बढ़े हैं उन्हें हरा रंग बहुत पसंद आता है। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग पसंद है, सुबह उठकर सबसे पहले मैं अपने बगीचे के हरे पौधों को देखती हूँ, आंखें खुश हो जाती हैं। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग पसंद है, उनका कहना है कि हरे रंग की अपनी एक कहानी होती है, हर रंग की अपनी एक कहानी होती है, कोई खुशी का एहसास बन जाता है, कोई यादों का और कोई किसी अपने की मुस्कान का। शायद इसीलिए रंग कभी सिर्फ रंग नहीं होते, रंग तो सभी प्यारे होते हैं, बस देखना यह है कि हमारी आंखें किस रंग को अपना मानती हैं। बहुत ही प्यारी बात। एक श्रोता फिरोजी रंग को पसंद करती हैं, कहती हैं कि ये ईश्वर का रंग है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ ये कि आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता है जिन्हें ब्लैक एंड व्हाइट पसंद है और उनका कहना है कि ब्लैक एंड व्हाइट रंग जल्दी मिल जाते हैं इसलिए इन्हें पसंद है। एक और श्रोता है काला रंग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जिन्हें हरा रंग पसंद है। एक और श्रोता है जिन्हें लाल रंग पसंद है। एक श्रोता है जिन्हें आसमानी रंग पसंद है। कितने श्रोताओं ने अपनी बातें लिख दी हैं और इन बातों में उनके जीवन की कुछ कुछ कहानियां भी छिपी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ईश्वर द्वारा नवाज आपके मीठे स्वर और आपकी आवाज में शब्दों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया था, आपका शुक्रिया। जरा नवाजी हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि मुझे लेवेंडर कलर बहुत पसंद है, प्रकृति भी ये रंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाती है। मुझे लेवेंडर के फूल, ऑर्किड, जामुन और बैंगनी, ये सारी छटाएं पसंद हैं इस रंग की। और एक श्रोता है जिन्हें काला रंग पसंद है, इसके साथ कुछ भी मैच कर लो मैच हो जाता है। पीले रंग को पसंद करने वाले भी बहुत सारे श्रोता हैं और अब हम समंदर की तरफ जाने वाले हैं। रंगों की इस महफिल से आगे बढ़कर समंदर की तरफ चलते हैं और इस सवाल के साथ चलते हैं कि जब आपके शहर में बारिश होती है और बहुत अच्छी बारिश, पिकनिक का मौसम हो जाता है, तो अपने शहर के

आसपास कौन सी ऐसी जगह आप जाते हैं जहां बहुत सारा पानी है? जैसे भोपाल के लोग बदबदा डैम की तरफ चले जाते हैं, जबलपुर के लोग सीधे जाते हैं भेड़ाघाट की तरफ, और इलाहाबाद और बनारस के लोग घाटों की तरफ जाते हैं। आप बारिश के दिनों में पिकनिक बनाने कहां चलते हैं? इस प्यारी बात के साथ समंदर की ओर रुख किया जाए। अनंत लहरें किनारों से टकराती चली जाती हैं, लेकिन थकती नहीं, सदियों से टकरा रही हैं, चलती चली जा रही हैं, हमें प्रेरणा देते हुए कि जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। कहां कहां का समंदर आपने देखा और समंदर के किनारे खड़े होकर बैठकर आपके दिल में किस तरह के ख्याल, किस तरह के एहसास आए, ये भी बताइएगा।

क्या प्यारा गाना, और बहुत सारी श्रोताओं को इस गाने में बड़ा अच्छा लगा। एक श्रोता लिखती हैं कि लता जी कितना सुंदर गाती हैं और बोलती भी कितना मधुर हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि ये बारूद फिल्म का गाना है। एक और श्रोता की बात कि मैं समंदर के किनारे जाती हूँ, जब बारिश होती है तब उसकी लहरें भी काफी ऊंची होती हैं, लहरों

बूंदें जब चेहरे से टकराती हैं तो मन रोमांचित हो जाता है, बहुत खुशनुमा माहौल होता है। एक और श्रोता कहती है कि पुरी में समंदर के सामने बैठी रही, लहरों को आते जाते देखती रही। एक और श्रोता का कहना है कि नीले समुद्र की अथाह गहराई को देखकर लगता है मानो धरती ने अपने सारे सपने नीले आकाश की गोद में सजा दिए हैं। कितनी सुंदर बात लिखी है। एक और श्रोता है

सांझ से थोड़ी लालिमा वाला रंग एक भरा पूरा इंद्रधनुष टहूकता रहता है। मुझे ये सारे रंग बहुत पसंद हैं। बस इसी बात की डोर पकड़ कर चलते हैं वादियों की तरफ। ये गाना सुनने के लिए आपको बताना है कि मुकेश के साथ इस गाने में जो गायिका है उनका नाम क्या है और ये गाना किस फिल्म का है, और साथ में ये कि आपको किस इलाके की वादियां बहुत पसंद हैं, आपके दिल के करीब हैं।

ये गाना कहता है, वादियों में खो जाएं हम तुम। ये एक बहुत ही प्यारी बात है। और एक श्रोता ने बड़ी गहरी बात लिखी है, कहते हैं कि इंसानों में सबसे बड़ा रंग प्यार और मोहब्बत का रंग होना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज महान नायक उत्तम कुमार ने इस संसार को अलविदा कह दिया था, उनकी याद में एक गीत जरूर सुनवाइएगा। तो भाई, इस कार्यक्रम के बाद जब सदाबहार नगमे कार्यक्रम 2:30 से मैं आपको सुनवाऊंगा, तो उत्तम कुमार जी के गाने जरूर होंगे। और ये यकीन

रखिए कि विविध भारती किसी भी कलाकार की अवहेलना नहीं कर सकता, हम किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मनोज कुमार जी के गाने सुनवाए तो उत्तम कुमार जी के गाने भी आज बाकायदा सुनवाए जाएंगे। कुछ और श्रोताओं की बातें, मेघालय के चेरापूंजी की बातें उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई। इसके अलावा कई श्रोताओं ने लिखा है कि ये आरती मुखर्जी की आवाज है, और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने इस फिल्म के दूसरे गानों का भी जिक्र किया है। आरंभ नाम की ये फिल्म जिसमें सभी सुख दूर से गुजरे जैसे गाने हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि मैं राजस्थान में हूं, 8 दिनों से बादल मंडरा रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। एक श्रोता है जिन्हें अमरकंटक की वादियां बहुत पसंद हैं और उनका कहना है कि जब हम वहां गए तो वापस आने का मन नहीं कर रहा था। किसी को जम्मू कश्मीर के पुंछ की हरी भरी वादियां बहुत ज्यादा पसंद हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग पसंद की जगह लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर के सामने तापी नदी पूरे उफान के साथ बह रही है। और इसके अलावा कुछ श्रोता हैं जिन्हें सिक्किम, मेघालय, दार्जिलिंग और मसूरी की वादियां बहुत ज्यादा पसंद हैं। एक और श्रोता बहुत गहरी बात लिख रही है कि जिंदगी में सब रंग मिल जाएं तो जीवन खुशनुमा हो उठता है, मगर सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा हम चाहते हैं, ये बचकानी से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गाना जो कम सुनाई देता है, लेकिन ये गाना एक बहुत ही प्यारे एहसास को बयां करता है। फिल्म का नाम बताइए।

क्या सुंदर गाना। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि भाई ये सन्नाटा फिल्म का गाना है, हेमंत दा और गुलजार साहब ये दोनों। और एक श्रोता लिखते हैं कि पूरी तरह से अनसुना गाना है। और विविध भारती की खासियत ये है कि वो हमें खो गए गुमनाम मधुर गीतों से रूबरू करवाती है। उसके अलावा एक श्रोता ये है कि विविध भारती पर सन्नाटा कभी होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए। और उसके अलावा

एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमारे शहर अजमेर में कोई सागर नहीं, लेकिन आना सागर झील है और किनारे पर ऐतिहासिक बारादरी, जहां हम बरसात में पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेनाल का झरना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और हम वहां जाते हैं। और इसके अलावा कुछ और श्रोताओं ने अपनी बात लिखी है। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो मुंबई का सफर करने वाले थे, लेकिन आज गाड़ियां नहीं चल रही हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि हमारे शहर सूरत में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। आप सभी अपने मौसम का मजा लीजिए, साथ में विविध भारती से जो गाने बज रहे हैं और जो बातें हो रही हैं, इन बातों का आनंद लीजिए। अब समंदर और वादियों और इन तमाम बातों से होते हुए हम एक भोर की बात तक पहुंच गए हैं। ये गाना आपके लिए, और जैसे इसी भारत में लड़की लड़के से पूछती है तुम्हें भोर पसंद है या शाम, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको भोर पसंद है दोपहर या शाम। और साथ में ये भी बताइए किस फिल्म का है ये गाना।

कुछ श्रोताओं ने जवाब लिखे हैं, आंचल फिल्म का ये गाना राखी राजेश खन्ना के लिए ये गाना गाती हैं। और इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना हमने पहले कभी नहीं सुना, विविध भारती ध्यान से सुनिए, ये गाना विविध भारती पर कभी कभी बजता है। मजरू सुल्तानपुरी की बोले, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे भोर बहुत पसंद है क्योंकि सवेरे जब उठो तो उठते ही नई ताजगी नई उम्मीद के साथ जैसे खिड़की खोलते हैं एहसास संध्या में नहीं होता। एक और श्रोता लिखते हैं कि बरसात में जब पानी ज्यादा गिरने लग जाए तो दीवारों में सीलन जमने लगती है, दीवारों के रंग निकल कर कैसे तो दिखने लगते हैं, रंग का मिजाज अलहदा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम तो मैदानों में रहते हैं जहाँ खेती बाड़ी होती है, यहाँ नदियां तो हैं, पहाड़ और वादियां दूर दूर तक नहीं हैं। उत्तर नेपाल के पहाड़ 150-200 किलोमीटर दूर हैं, दक्षिण विंध्य की पहाड़ियां भी बहुत दूर हैं। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि भोर की बेला इतनी सुहानी होती है कि मध्यम उजाले और नीरव शांति में मेडिटेशन करने का प्राणायाम करने का मजा अलग होता है और गौर से सूर्योदय देखने का मजा भी अलग होता है। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमें भोर बहुत ज्यादा पसंद है, पर कुछ श्रोता तो ऐसे भी होने चाहिए ना जिन्हें शाम पसंद है। क्या आप बता सकते हैं कि अब जो गाना आ रहा है उसे किसने लिखा है और ये किस फिल्म का गाना है? और हाँ, आपको अगर शाम पसंद है तो वो शाम कहाँ बिताना पसंद है ये बताइएगा।

0: सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की आवाजें, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये अहमद वसी का लिखा गीत है। बहुत सारे श्रोता ये भी जानते हैं कि अहमद वसी किसी वक्त में विविध भारती के उद्घोषक हुआ करते थे। अहमद वसी की याद इस गाने के जरिए। एक श्रोता है जो लिखती हैं कि शाम दिन का वो खूबसूरत पल है जब आसमान धीरे धीरे अपने रंग समेटता है और मन अपनी भागदौड़ लगता है। पूरी प्रकृति कह रही है कि अब कुछ पल सुकून से अपने साथ बैठो। एक श्रोता का कहना है कि संध्या का समय अच्छा लगता है, क्षितिज पर पिघलता सूरज और खामोश होती हवाएं दिल में एक अजीब सा सुकून भर देती हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि उन्हें शाम पसंद हैं, और एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि भोर और शाम का असली आनंद खुले आसमान के नीचे मिलता है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मुझे शाम इसलिए पसंद है क्योंकि बच्चे और पति वापस आने वाले होते हैं, तो खाना क्या बनाऊं और जल्दी जल्दी खाना बनाकर सबके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता जो कहती हैं कि वो सुबह ज्यादा एक्टिव रहती हैं, हल्की सुबह का धुंधलका उन्हें बहुत पसंद है और जैसे जैसे शाम होने लगती है उनका दिल बेचैन होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं
1: आसमां के नीचे।
0: आसमां के नीचे।

0: भाई आसमां के नीचे ये प्यार का जहां बसाने के लिए चल पड़े हैं। एक श्रोता कहते हैं कि अगर किसी ने कहा कि अभी कहीं चलते हैं घूमने के लिए, तो भैया हम अपने गांव जाना पसंद करेंगे। एक श्रोता है जो कन्याकुमारी जाना पसंद करेंगे। एक और श्रोता है जो सागर के किनारे किसी सनसेट पॉइंट जाना पसंद करेंगे। एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि भोपाल में 10 से 15 किलोमीटर पर बहुत सारे डैम हैं, वहां जाना चाहिए। कंचनजंगा पर्वत किसी को जाना है। और कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें आमेर नाहरगढ़ के किले में जाना पसंद है, तो किसी को लास वेगास जाना पसंद है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर मौका मिले तो इसी वक्त पचमढ़ी चला जाऊं। ओहो क्या बात है। और एक श्रोता है जिनको कहना है कि मौका मिले तो अभी मैं विविध भारती के कार्यालय आ जाऊं। क्या बात है, प्यारी बात। और इन सबसे होते हुए अब हम उदासी की राह पर चल पड़े हैं और चुप की राह पर चलते हुए ये गाना आपको बताना है कि किस फिल्म का गाना है और किसने लिखा है।
1: बस रे

0: एक श्रोता लिखते हैं कि भाई कैसे 50 मिनट बीत गए हैं, पता ही नहीं चला, और तकरीबन आखिरी गाने की तरफ आ गए हैं। एक श्रोता है जिन्हें घोड़ा चतुर वाले गाने का इंतजार है, लेकिन आज शायद वो गाना आ नहीं पाएगा। भाई सब गाने कैसे बजाएं, क्योंकि कार्यक्रम का समय भी तो सीमित है, और आखिरी में अगर ये बात हो तो ज्यादा अच्छा रहता है।
1: बात नजरों की
0: इस बात के साथ कि आज इस वक्त इस पल कौन है जो आपसे रूठा हुआ है और आपको मनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

भाई बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कार्यक्रम का ये जो सफर है अब अपने आखिरी मकाम पर पहुंच गया है, तो बड़ा मुश्किल है कि कौन से कमेंट्स शामिल करें और कौन से छोड़ें, पर ये वादा करते हुए जा रहे हैं कि आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं और यहाँ से निकलने के बाद भी पढ़ेंगे, तो ये समझिएगा कि सभी कमेंट्स पर हमारी नज़र ज़रूर पड़ती है और कई लोगों को आज का ये कार्यक्रम पसंद आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी में सुर घोलते रहिए विविध भारती।

ये संग रहिए, जैसे कि मैं बोलता हूं हमेशा आपसे कि दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, बने रहिए विविध भारती के संग। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। प्रतीक्षा समाचारों की।

0: Supreme Court directs Centre and NTA to file detailed affidavits on progress made in implementing reforms after NETUG paper leak. India calls out United Nations for ignoring repression in Pakistan-occupied Kashmir, accuses Islamabad for systematically crushing rights of the people. IMD forecasts very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today, and India's Anahat Singh enters semi-finals of World Junior Squash Championships. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
3: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्र स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा

0: कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
1: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल ऐसा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को तरफ समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
3: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
0: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है जो गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले

0: के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी मां मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
3: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाओथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और

0: सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रही हैं, सदाबहार नगमे।

0: अमानुष फिल्म का गीत आपने सुना, इंदीवर के बोल थे, श्यामल मित्रा का संगीत था और ये गाना हमने उत्तम कुमार की याद में आपको सुनवाया। आज उत्तम कुमार की पुण्यतिथि है। छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये गाना सुनिए, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजी। उत्तम कुमार इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे।
1: प्यार बन गई

छोटी सी मुलाकात फिल्म का ये गाना हसरत जयपुरी ने लिखा था, संगीत शंकर जयकिशन का था। इंदीवर के बोल श्यामल मित्रा का संगीत फिल्म

0: दिया है।
1: डॉक्टर विद्या फिल्म का गीत था मुकेश की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था सचिन देव बर्मन का। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म शहीद से है, गीत संगीत प्रेम धवन का।

0: पंचायत फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं खत्म होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, खुशियां ना कुछ कुछ पानी जैसी होती हैं, हर वक्त पर जरूरी सी। मतलब खुश तो हर इंसान रहना चाहता है, पर जरा बेखबर सा हो जाता है। हम देखेंगे तो पाएंगे कि खुशियां हर वक्त हमारे आसपास ही मौजूद रहती हैं। हम हर छोटी छोटी बात को खुश होने का कारण अगर बना लेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कभी जरा नजर घुमाइए बच्चों की तोतली बोली में, कभी अपना नाम सुनना, तो कभी घर के गमले में मन पसंद का फूल खिलना, कभी किसी काम पर तारीफ मिलना, तो कभी कुर्ती का मैचिंग दुपट्टा मिल जाना। ये वो नन्नी नन्नी सी खुशियां हैं जिन्हें हम कभी तवज्जो ही नहीं देते। पर अगर सच कहें तो कई बार ये छोटी छोटी सी खुशियां तकलीफ के वक्त में दवा सा असर करती हैं। तो इंतजार किस बात का है, इन नन्नी खुशियों पर नजर रखिए, हमें फोन मिलाइए और आज की बातें इन्हीं नन्नी खुशियों के इर्द गिर्द समेटिए और अपनी खुशियां हमारे साथ साझा कीजिए। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार। तो देखते हैं हमारे साथ पहले कॉल पर कौन सी सखी जुड़ चुकी हैं। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हम जानना चाहेंगे हमसे कौन सी सहेली इस समय बात कर रही हैं।
1: मैं सृष्टि उपाध्याय इंदौर से।
0: आपका नाम है सृष्टि उपाध्याय जिन्होंने इंदौर से कॉल किया है।
1: जी
0: सृष्टि, अपने बारे में सबसे पहले बताएं क्या करती हैं।
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ, थोड़ा बहुत समीक्षा मीक्षा लिख लेती हूँ।
0: तो सिर्फ समीक्षा लिखती हैं कि और भी किसी तरह का लेखन कार्य करती हैं?
1: लेख भी लिख देते हैं, अगर कभी किसी की मांग हो तो, कोई अगर हमें समझ में आ रहा तो लेख लिख देते हैं।
0: और ये जो आप लेख लिखती हैं या समीक्षा लिखती हैं, ये किसी पत्रिका में प्रकाशित होते हैं?
1: हाँ होते हैं ना, होते हैं ना चंचल जी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत ही एक रचनात्मक कार्य है लेखन का,

0: और
1: जी
0: ये आपके अंदर बहुत सारे विकास लेकर आता है।
1: जी बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल।
0: आपको लेखन की प्रेरणा कैसे मिली?
1: लेखन की प्रेरणा मिली कुछ बातें कुछ गीत से। जब
0: अच्छा
1: वो बिल्कुल शुरू हुआ था तो थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया तो हमारे सहेलियों ने, हस्बैंड ने बोला कि तुम लिख सकती हो, थोड़ा शुरू करो। तो फिर हम लाइब्रेरी जाते थे तो संपादक जी ने हमको बोला एक समीक्षा आई है, आप लिखेंगी क्या? तो हमने शुरू में बड़े हिचक के साथ बोला सर हम कर तो देंगे लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो आप बेहिचक बता दीजिएगा।
0: ये बड़ी अच्छी बात,
1: हिचक खुलती गई थी।
0: सृष्टि बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आपको ये प्रेरणा जो मिली रेडियो सुनकर मिली। तो
1: जी रेडियो तो हमारा बिल्कुल मतलब 2-3 साल से मम्मी मेरे रख देती थी बगल में, तब से सुन रहे हैं, बहुत शौक है हमें रेडियो का। उसकी आवाज सुन के हमारा रोना चुप हो जाते थे बंद, मतलब रोते रोते हम चुप हो जाते थे। तो रेडियो का बहुत शौक है हमको, हमारा रेडियो सुबह 7 बजे शुरू होता है और 11 बजे ही बंद होता है।
0: तो यानी कि बचपन से ही जो रेडियो का शौक है ये अब जाकर आपके इस लेखन कार्य के लिए बड़ा काम आया।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और कोई शौक आपके?
1: बस घर के काम करते हैं, कुछ एक आध डिश बनानी हो तो वो बना लेते हैं। मेन तो हम पढ़ते हैं बहुत ज्यादा और अपने घर के काम करने के बाद थोड़ा बहुत लिखते रहते।
0: ये बिल्कुल सही बात है।
1: किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, रेडियो सुनने का बहुत शौक है।
0: अगर लिखना है तो उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है।
1: जी जी जी जी जी।
0: और जब तक अच्छा साहित्य नहीं पढ़ेंगे, अच्छे साहित्यकारों की रचनाएं हम नहीं पढ़ेंगे तो
1: लिख नहीं सकते आप।
0: बिल्कुल सही बात है। और उनका लेखन जो है वो हमें अपनी लेखनी बनाने में बहुत मददगार साबित होता है।
1: जी जी जी।
0: सृष्टि जी आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा है। जो गीत आज सुनना चाहती हैं वो बताएं।
1: दुल्हन एक रात की, सपनों में अगर वो आए तो मैं सो जाऊं।
0: जी आपको सुनवाते हैं दुल्हन एक रात की फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेल, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, बताइए कौन बात कर रही हैं हमसे?
1: दीदी, जिला सागर मध्य प्रदेश ग्राम कनेरा निखर से भारती कुर्मी बात कर रही हूँ दीदी।
0: भारती कुर्मी, क्या करती हैं आप?
1: दीदी जी पढ़ाई करते हैं।
0: कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं अभी?
1: दीदी कक्षा आठवीं में।
0: कक्षा आठ में, यानी कि अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है आपकी, छोटी है। और रेडियो सुनती हैं आप रेगुलर?
1: जी दीदी सुनते हैं। दीदी हम चित्रकूट में पढ़ते हैं। दीदी हम दिव्यांग हैं, तो दीदी वहीं पे आपका कार्यक्रम सुनते हैं जब हमें टाइम मिलता है। दीदी दीदी हम आंखों से देख नहीं सकती दीदी।
0: अच्छा, लेकिन जो देख नहीं सकते उनकी एक शक्ति बहुत अच्छी ईश्वर बनाकर भेजता है, तो कई लोगों की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, कईयों की सूंघने की शक्ति, कई लोग बहुत अच्छा गाते हैं। आप में क्या गुण है?
1: दीदी हम संगीत सीखते हैं दीदी, गाना गाते हैं दीदी, वही सीख रहे हैं संगीत।
0: अभी संगीत कितने सालों से आप सीख रही हैं?
1: दीदी हम तो मतलब जो पहली में यहाँ पे सागर में पंडापुरा में लिया था दीदी एडमिशन।
0: जी
1: पांचवी तक हमने यहीं सागर में पढ़ाई की है, फिर पांचवी के बाद गए हैं दीदी चित्रकूट, वो है हमारे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी।
0: तो उनसे आप संगीत सीख रही हैं अभी?
1: जी दीदी।
0: तो ये गुरु शिष्य परंपरा से आपने सीखना शुरू किया है या आप संगीत विशारद कर रही हैं?
1: दीदी हमें तो बचपन से शौक था, तो दीदी वो यहाँ उन्हीं को हम गुरु मानते हैं और उन्होंने दीदी हमें ये शिक्षा दी है और वही सिखाते हैं दीदी।
0: यहाँ आपको गुरुकुल में रहते हुए ही पढ़ाई करनी होती है?
1: दीदी वहीं पे रहते हैं दीदी, हॉस्टल है वहीं पे चित्रकूट में।
0: फिर घर कितने कितने अंतराल पर जाती हैं आप?
1: दीदी जैसे रक्षाबंधन है, दीपावली है, मकर संक्रांति है,
0: मतलब जब कोई त्योहार होता है तो उस वक्त आप घर जाती हैं यहाँ से छुट्टी लेकर।
1: जी दीदी।
0: अच्छा, तो आप बता रही हैं भारती कि आपने संगीत की शिक्षा यहाँ ली है, तो हमें कुछ गाकर सुनाएंगी?
1: जी दीदी।

0: तुम्हें कहा हो माँ के बिना फूला है जहाँ, कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ आखिर, माँ होती है माँ।
1: बहुत सुंदर गाती हैं भारती आप, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। और संगीत एक ऐसा माध्यम है जो खुद को खुशी देने के साथ साथ औरों में भी खुशियां बांटता है।
0: जी दीदी,
1: और आप इतनी सुंदर विधा से जुड़ी हुई हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं भारती, ये बताइए हमें।
0: मूवी का नाम है रंग
1: जी,
0: और गाने की बोल है तुमने देखी मेरी आंखें,
1: तुम्हें देखे मेरी आंखें
0: जी,
1: इसमें क्या मेरी खता है
0: जी।
1: बहुत खूबसूरत गीत चुना है भारती आपने, और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सखियों के फोन कॉल का सिलसिला। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ कॉल पर जुड़ी है, नाम बताइए अपना।
1: जी, मेरा नाम मनीषा शर्मा है।
0: मनीषा जी, आपने कॉल कहाँ से किया है हमें?
1: मैं गुलाबी नगरी से बात कर रही हूँ, जयपुर से।
0: जयपुर, गुलाबी नगरी, इसे गुलाबी नगरी क्यों कहती हैं, बताइए।
1: जी, ऐसा है कि ये जो नगरी है, यहाँ पर जो पुराने घर और जो बाजार मिलता है वो सारा पिंक कलर से पेंटेड है, तो इसलिए इस नगरी को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है।
0: वहाँ सारे बाजार लगभग एक जैसे ही लगते हैं, अगर वहाँ खो जाए तो रास्तों की पहचान का कोई तरीका होता है क्या, बताइए।
1: देखिए, ये जो नगरी है ये बहुत खूबसूरत है।
0: बिल्कुल।
1: और जिस तरीके से ये गुलाबी है, यहाँ के लोग भी बिल्कुल गुलाबी यानी कि पिंक कलर, जो कि आंखों को बहुत ज्यादा सुकून देता है, एक कामनेस है इस कलर में ना, तो लोग भी गुलाबी रंग की तरह बेहद खूबसूरत और बेहद काम है। तो अगर आप खो जाते हैं तो लोगों की मदद से आपको रास्ते पता पड़ जाएंगे। इसके अलावा हर रास्ते के बाहर उसका नाम जो है वो संगमरमर के पत्थर पर खुदाई करके लिखा गया है।
0: और मनीषा जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: देखिए, मैं एज अ प्रोफेसर कार्यरत हूँ और मैं बच्चों को जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ, बैचलर्स और मास्टर्स।
0: क्या बात है।
1: इसके अलावा मुझे किस्सा गोही करने का बहुत शौक है, शायरी करने का शौक है, कविताएं लिखने का शौक है।
0: अभी कोई लिखी हुई आपकी पंक्तियां अगर आपको याद है, या कोई शेरो शायरी जो आपने लिखी है, आपकी स्वरचित कोई रचना हम सुनना चाहेंगे।
1: जी, मैं सुनाना चाहूंगी। कभी तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल, ये दिल का मुसाफिर चली जा रहा है, है तूफान में कश्ती मगर दूर साहिल, कि दिल का मुसाफिर चले जा रहा है।
0: बहुत बहुत सुंदर। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं फिल्म मैंने प्यार किया से आया मौसम दोस्ती का गाना सुनना चाहती हूँ।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए, हमारे साथ कौन सी सहेली जुड़ी है इस समय लाइन पर?
1: मैं अलका श्रीवास्तव।
0: अलका श्रीवास्तव जी, आप कौन से शहर में रहती हैं?
1: ग्वालियर के पास एमपी शिवपुरी।
0: शिवपुरी में रहती हैं?
1: जी हाँ जी हाँ।
0: अलका जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ। वैसे पहले मैं टीचिंग जॉब में थी, अब रिटायरमेंट हो गई हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर होने के बाद जो आपका खाली समय है वो कैसे गुजरता है?
1: बस घर के कामों में निकाल देती है, सारा काम होता रहता है।
0: अच्छा, जिन दिनों आप काम किया करती थी, जब आप जॉब पे थी और टीचर का काम करती थी, तो एक शिक्षिका होते हुए क्या आपको समय मिल पाता था रेडियो सुनने के लिए?
1: हाँ बिल्कुल, 4 बजे मैं घर आती थी तो आके घर में बैग रख के सबसे पहले मेरा रेडियो ऑन होता था। हालांकि ये रेडियो से जुड़ा हुआ था, मेरा जन्म के बाद से जो आंखें खोली समझ आ रही हुई तब से जुड़ी हुई, मेरे घर में रेडियो चलता ही रहता था, बचपन से ही सुना है रेडियो।
0: और आप जैसे श्रोता ही हैं जो इसको और लोकप्रिय बनाते हैं। और आज बताइए अलका जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं लाल दुपट्टा मलमल का उसका सुनना चाहती हूँ, क्या करती थी साजना।
0: जी, आपको सुनवाएंगे हम क्या करते थे साजना, तुम हमसे दूर रह के।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैडम,
0: हमारे साथ कौन सी सखी इस समय बात कर रही है? नाम बताइए अपना।
1: मैं शारदा भोयर बात कर रही हूँ। मुझे मैम शेषनाग फिल्म का गाना सुनना है।
0: शारदा जी, आपकी पसंद का गीत तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आप पहले ये तो बताइए कि आप कौन से शहर से बात कर रही हैं हमसे?
1: हम जिला यवतमाल से ही बात कर रहे हैं
0: हाँ, अपने बारे में बताएंगे हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैम। हम तो बस घर का काम करते हैं, हम
0: अच्छा,
1: ब्लाइंड है।
0: अपने आप को खुश
1: गाना
0: रखने के
1: सुनना
0: लिए आप क्या
1: आपका,
0: करती हैं शारदा जी?
1: हमें आप खुश रखने के लिए बस मनोरंजन, गाना सुनना, घर के काम करना
0: अच्छा,
1: यही करती है।
0: घर के काम करने में कभी कोई दिक्कत आती है आपको या आराम से आसानी से हो पाता है आपसे?
1: आराम से हो पाता है मैडम।
0: आप किसी की मदद लेती हैं या खुद से कर लेती हैं सब?
1: नहीं मैम, घर में किसी की मदद नहीं लेती, अनोखी जगह में जाएगी तो मदद लेनी पड़ती है।
0: अच्छा, किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं शारदा जी?
1: क्लासिकल गीत, मीडियम गानों का संगीत सुनना पसंद करती है मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं बताइए, आपकी फरमाइश पूरी करने की हम जरूर कोशिश करेंगे।
1: शेषनाग फिल्म का फेर मिलन के गीत, रे मितवा, प्यार भरे गीतों का मौसम, लेकर आई प्रीत।
0: आपको सुनवाते हैं शेषनाग फिल्म का आपकी पसंद का गाना।

0: सखियों अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ गए हैं अपनी सखियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ बताइए, आप कौन सी सखी हैं, किन से हम बात कर रहे हैं?
1: मैं युति कनागर बात कर रही हूँ, जयपुर से।
0: जयपुर से आप बात करिए, अपना नाम फिर से बताएं हमें।
1: युथिका नागर।
0: युथिका नागर, बहुत यूनिक नाम है और ये नाम आज मैं पहली बार सुन रही हूँ, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आपके नाम का मतलब क्या होता है।
1: मेरे नाम का मतलब होता है जूही।
0: जूही।
1: जूही एक, हाँ जूही जो पौधा होता है ना जूही।
0: हाँ जी, जूही का फूल बहुत सुंदर होता है।
1: तो वो मेरे नाम का अर्थ है।
0: आपके परिवार में ऐसे कौन से सदस्य थे जिनको संस्कृत की भी जानकारी थी और इतना सुंदर नाम चुन के उन्होंने आपका रखा?
1: देखिए, मेरे परिवार में जो मम्मी, मेरी मम्मी की तरफ की जो लोग रहे वो बहुत ही अच्छे से एजुकेशन लिए थे, उस जमाने में MBA करे हुए लोग थे।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने ही मेरे नाम का ऐसा उच्चारण रखवाया कि ऐसा हो कि बहुत यूनिक रहे। कहते हैं ना, नाम से ही आदमी की पहचान होती है। तो मेरा नाम यूनिक रखा और मेरे में कला ही जो कहें, बातें करना, सब चीजें कुछ ऐसी आए जिससे कि मैं यूनिक लगूं।
0: आपका शहर बहुत सुंदर है जिसे गुलाबी नगर कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसको गुलाबी नगर क्यों कहते हैं? और जहाँ तक मैंने जयपुर के बारे में सुना है, इसे किलों की नगरी भी कहते हैं।
1: हाँ, किलों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने मॉन्यूमेंट्स बने हैं, तो यहाँ पे जो राजघराने के लोग थे जो आज भी उसी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ में अगर आप देखते हैं तो उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है जिससे कि टूरिस्ट बहुत आते हैं जयपुर में। बहुत टूरिस्ट आते हैं, आप कभी भी जाए तो हवा महल देखो, यहाँ का नाहरगढ़ देखो, यहाँ का जंतर मंतर, यहाँ का सिटी पैलेस, यहाँ के मतलब बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको देखने के लिए लोग आते हैं।
0: युतिका जी, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं एक बैंक के साथ काम करती हूँ।
0: अच्छा, किस तरह का काम होता है आपका बैंक से जो आप जुड़ी हैं?
1: फ्रीलांसिंग लोगों के साथ भी काम करती हूँ।
0: काम करते हुए आप समय निकाल पाती हैं रेडियो सुनने के लिए?
1: बिल्कुल, रेडियो के बिना जीवन कहाँ है।
0: रेडियो सुनने का शौक सिर्फ आपको ही है या आपके परिवार में और भी कोई है, और आपको ये शौक कैसे लगा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे।
1: मेरी मदर का नाम है उषा नागर। ठीक है, वो बहुत अच्छी अदाकारा रही। उनके यहाँ से ही मान लीजिए कि मुझे जो है इसमें शौक आया कि मैं म्यूजिक सुनूं, म्यूजिक गाऊं, मैं खुद गाने लगी, मैं खुद गुनगुनाने लगी। और यूँ कहीं किसी को संगीत के लिए चुनना नहीं पड़ा, रेडियो पे गाने सुनकर ही मेरी आवाज जो है, लोग मुझे कहते थे कि आप गाना कैसे गा लेते हो, वही सीखा है। मैं क्या कहूँ, क्योंकि रेडियो पे सुनते हैं इतना तो गाना तो आएगा।
0: अब हमें भी बड़ी उत्सुकता हो रही है और हम भी चाहते हैं कि आवाज आपकी थोड़ी सी हम सुन लें, और कौन सा गीत गुनगुनाकर हमें बताएंगे आप?
1: जिसकी फरमाइश के लिए मैंने आपको कॉल लगाया है।
0: तो बताइए आपकी पसंद कौन से गीत की है, वही गीत हमें गुनगुनाकर बताइए।
1: महल फिल्म का गाना है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी हमसे जुड़ी है कॉल के माध्यम से?
1: मैम, मेरा नाम मनीषा प्रजापति है।
0: मनीषा जी, आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: जालंधर सिटी।
0: मनीषा जी, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कि आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: तो पूरा दिन आपका किस तरह गुजरता है?
1: घर के काम करते, थोड़ा टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत सिलाई कर लेती हूँ।
0: ऐसे कौन से काम हैं जो आपको बहुत खुशी देते हैं, जिन्हें आप बहुत करना पसंद करती हैं?
1: सर मैम, खाना बनाना।
0: खाना बनाना ऐसा चीज है जो आपको खुशी देता है?
1: हाँ जी मैम।
0: और आपके पतिदेव को या आपके बच्चों को आपके हाथ का खाना जरूर पसंद आता होगा, तो कौन सी ऐसी चीज है आपकी बनाई हुई जिसकी फरमाइश आपसे सबसे ज्यादा की जाती है?
1: मैडम खीर।
0: तो खीर बड़ी अच्छी बना लेती हैं आप।
1: हाँ जी मैम।
0: अच्छा, आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मन फिल्म का मैम।
0: मन फिल्म का कौन सा गीत आपको सुनवाए हम?
1: मेरा मन क्या तुम चाहे, मेरा मन। यही मैम।
0: बहुत सुंदर तरीके से आपने गुनगुनाकर बताई है अपनी पसंद। आपको सुनवाते हैं मन फिल्म का आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, बताइए कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: मैम, मैं सानिया गल से बोल रही हूँ, जिला सहारनपुर के पास से।
0: सानिया जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैम, घर में काम करते हैं, घर का ही।
0: घर के कौन से काम आपको करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: मैम, सबसे ज्यादा तो मैं खाना बनाना अच्छा लगता है।
0: तो हम कई बार खुशियाँ ढूंढते हैं तो अपनी पसंद की चीजों में हमें खुशियाँ मिल जाती हैं, तो आपको अपने रसोई घर में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है?
1: मैम, मुझे सबसे ज्यादा मीठा बनाने का शौक है।
0: तो कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद की जाती है आपके परिवार में?
1: मैम, टुकड़े बनाते हैं हम सूजी के।
0: टुकड़े? किस चीज के टुकड़े बनाती हैं?
1: सूजी के बनाते हैं, सूजी अच्छा। को भूनकर
0: सूजी के टुकड़े बनाती हैं?
1: जी जी मैम। और मैम, आटे की भी बना लेते हैं हम मिठाई।
0: आटे की मिठाइयाँ भी बना लेती हैं?
1: जी, आटे की भी बना लेती हूँ।
0: तो ये घर की जो बड़ी मिठाइयाँ होती हैं, इनमें कई बार हमें पूरी शुद्धता और पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाते हैं। तो आटा, सूजी, ये वो चीजें हैं जिनका कोई नुकसान भी नहीं होता, जबकि बाजार में जो मावे की मिठाइयाँ मिलती हैं उनमें कोई भी मिलावट होने की संभावना बनी रहती है।
1: जी मैम।
0: तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार को अपने हाथों से बनाकर उनका मुंह मीठा करवाती हैं।
1: जी मैम, मुझे खुशी मिलती है।
0: अच्छा, और आपको किस तरह का संगीत सुनने में खुशी मिलती है? तो आप जो आज गीत सुनना चाहते हैं वही आपको सुनवाया जाएगा।
1: जी मैम, मेरे फिल्म का नाम रहेगा जीने नहीं दूंगा, बोले तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले याद आया करो।
0: सानिया जी, आपको सुनवाते हैं जीने नहीं दूंगा फिल्म का, आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हम जानना चाहेंगे कि इस समय हमारे साथ कौन सी सहेली बात कर रही है।
1: मैं जयश्री गुड़े बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से। अमरावती
0: जयश्री जी, महाराष्ट्र में कौन से शहर में आप रहती हैं बताइए। अमरावती से आप बात कर रही हैं। आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके शौक क्या हैं, आप क्या करती हैं, और खुश रहने के लिए सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है जो आपको खुशी देता है।
1: मुझे शौक है पढ़ने का, किताब पढ़ने का,
0: किस तरह की किताबें पढ़ती हैं?
1: और खुशी के लिए मैं रेडियो सुनती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो यानी कि शौक है आपको किताबें पढ़ने का और अपने आप को खुश रखने के लिए आप रेडियो सुनती हैं। आप किस तरह की किताबें पढ़ती हैं?
1: मैं किताबें हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी पढ़ती, वो स्टोरी और कोई कथा वेथा होती
0: तो जो कहानियां आती हैं वो
1: है।
0: आपको प्रेरित करती हैं।
1: हाँ
0: और रेडियो पर किस तरह के कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: मैडम सखी सहेली,
0: सखी सहेली आपका पसंदीदा कार्यक्रम है
1: हाँ सबसे ज्यादा,
0: सबसे ज्यादा। और उसके
1: हाँ
0: बाद में और कौन से कार्यक्रम हैं जो सखी सहेली के अलावा सुनना पसंद करती हैं आप?
1: वैसे तो सभी कार्यक्रम सुनती हूँ और सभी अच्छे लगते हैं। जैसे वो कहानी आती है सोमवार के दिन, वो कहानी और ये मुलाकात, उजाले उनकी यादों की, सितारे,
0: अच्छा,
1: सभी कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: हम दोनों ही है,
0: आप और आपके पति देव।
1: हाँ हम दोनों
0: तो आज आप,
1: ब्लाइंड है मैडम।
0: अच्छा, आप दोनों ब्लाइंड हैं।
1: हाँ
0: आपके पति क्या करते हैं?
1: वो कुर्सी बनाते हैं, वो केनिंग की कुर्सी होती है ना।
0: ट्रेनिंग की कुर्सियां बनाते हैं वो।
1: हाँ और वो खत्म होगी तो फिर वो ट्रेन में बिजनेस करते हैं, जैसे कि ऑरेंज रूली, शेंगदाना, मूंगफली वो बेचते।
0: अच्छा, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जयश्री जी?
1: मैं गाना सुनना चाहती हूँ मदर इंडिया का, वो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,
0: जीवन है अगर जहर
1: जिंदगी
0: तो पीना ही पड़ेगा।
1: पीना ही पड़ेगा।
0: आपकी पसंद बहुत खूबसूरत है। मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं।

0: सहेली
1: नमस्कार, मेरा नाम चंचल शर्मा है, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ।
0: तो आपने बताया आप चंचल शर्मा हैं और इस समय आपकी बात हो रही है चंचल वर्मा से, तो दो चंचल सखियां बात कर रही हैं इस समय
1: जी।
0: चंचल जी अपने बारे में बताइए।
1: वैसे तो मैं परिष्कार कॉलेज में लेक्चरर हूँ
0: जी,
1: और वैसे रंगमंच भी करती हूँ, राइटर हूँ और रेडियो सुनने का शौक है।
0: मतलब आप तो मल्टीटास्किंग महिला हैं, बहुत सारे काम करती हैं आप, रंगमंच से भी जुड़ी हैं आप, पत्रकारिता भी करती हैं आप, अलग अलग माध्यमों से जुड़ी हुई हैं
1: जी, जी।
0: इन सब में आपका एक पसंदीदा काम कौन सा है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है?
1: मैम मुझे अपनी कविताएं लिखते वक्त रेडियो सुनना बहुत पसंद है।
0: तो अपनी कोई रचना हमें सुनाइए, कुछ पंक्तियां अगर आपको याद हो।
1: जी मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी। ता उम्र है मुझे सीखना, मेरा सीखना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो। मुझे बनना नहीं सागर ठहरा, ठहराओ मौत की निशानी है, मुझे बहती सी एक नदी रखना, जिसका बहना कभी खत्म ना हो, और मुझको तो सब है आ गया, ऐसा मुझे भरम ना हो।
0: बहुत प्रेरणादायक पंक्तियां हैं आपकी और निरंतरता की बात इसमें कही गई है कि कहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है और यही जीवन की सच्चाई है
1: जी।
0: क्योंकि जो थम गया, अगर पानी भी रुक जाता है तो वहां काई जम जाती है
1: जी। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस जीवन में सतत एक विद्यार्थी है जब तक कि उसकी सांस चल रही है।
0: बिल्कुल, और सीखते रहना चाहिए। जिस दिन हमें लगता है कि हमें सब आ गया ना, जीवन कहीं रुक सा जाता है और ये अहंकार कहीं ना कहीं हमें पतन की ओर ले जाता है।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है मैम कि हम सब में ये जज्बा होना चाहिए कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई हमें कुछ सिखा के जाता है, कोई सीख दे के जाता है, तो हमें दिल से उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और आज आपकी बातें हमें बहुत सीख दे रही हैं, मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं हमें ये बताइए, क्योंकि आप तो खुद ही इतनी कविताएं लिखती हैं तो मुझे लगता है आपकी पसंद भी बड़ी अच्छी होगी।
1: मैं किनारा फिल्म का एक गीत है, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है घर याद रहे।
0: आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत है और ये हम सभी को याद रहेगी। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का किनारा फिल्म का।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद, और वे सखियाँ जिनका कॉल अभी तक नहीं लगा है वे निराश ना हो, आप जरूर कोशिश करती रहिए, क्या पता अगली बार आपकी ही बारी हो और आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की उनसे हमारा अनुरोध है कि अगले 2 महीने तक आप कॉल ना करें ताकि अन्य सखियों को भी कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। पुरुष श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार के दिन हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल ना करें, इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं और कॉल कनेक्ट करने में सखियों को परेशानी हो सकती है। सखियों अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए 400-24662। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662। एक अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया। एक और आ गया। जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए रिद्धि चौरडिया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। सपनों की नगरी मुंबई, यहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए भागते हैं, तो कुछ खुद को भूलकर कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उठाए उन्हें निभाने के लिए अपनी जिंदगी भी भूल कर जीते हैं। सुधा भी उनमें से ही एक है। भाई के जन्म के समय माँ दुनिया छोड़ गई और तभी से सुधा के नन्हे कंधों पर छोटे भाई बहन और घर की जिम्मेदारी लद गई। कंधे बड़े होते गए और उसके साथ ही जिम्मेदारी का बोझ भी बढ़ चला। सुबह जल्दी उठकर पिता की सेहत, उनकी खत्म होती दवाइयों की चिंता करते हुए बाहर से पानी भरना, रसोई में खाने की तैयारी, भाई बहन को जगाकर स्कूल के लिए तैयार करना और इसी बीच खुद भी ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलना उसका रोज का काम था। भागते दौड़ते ही कुछ खा लिया तो भला, नहीं तो ना सही। इन कामों के बीच समय को पकड़कर रखना उसका सबसे मुश्किल काम होता, क्योंकि कुछ भी करती लेकिन समय उसकी पकड़ में ही ना आता और वो रोज ऑफिस में लेट होकर डांट खाती। सुधा भी क्या करती, समय पर निकलने की कोशिश धरी ही रह जाती। वो बस खुद से यही कहती कि एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन एक रोज जब वो मुंबई की भारी बारिश में भीगते हुए किसी तरह ऑफिस पहुंची तो मैनेजर ने उसके हाथों से फाइल लेकर सीधे शब्दों में उसे कहा, मैं सुधा, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, हमें आपके जैसे लोग नहीं चाहिए। सुधा कुछ पल के लिए खड़ी रह गई, आंखों से आंसू बहने ही वाले थे कि वो चुपचाप ऑफिस से निकल गई। आसमान में बादल गरज रहे थे और उसके मन में भी लाखों सवालों की गरज जारी थी कि अब सब कैसे होगा। तेज बरसती बारिश उसकी आंसुओं को भी बहाती ले जा रही थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि कम से कम आज इस बारिश के कारण उसे आंसू छुपाने की जरूरत तो नहीं पड़ी।

ये गीत सुधा को पसंद था क्योंकि नायक मरने को जीने से बेहतर बताता है। लेकिन ये बात कहते हुए वो बहुत सकारात्मक ही नजर आता है क्योंकि वो भी जीवन ही चुनता है। सच भी है, जीना कोई आसान काम थोड़ी है। अगले कुछ दिनों तक सुधा नौकरी की तलाश में यहाँ से वहाँ ठोकरे खाती रही। अब नौकरी जल्द पाना जरूरी था क्योंकि पापा की पेंशन तो उनके इलाज के लिए ही कम पड़ती थी। उस पर भाई बहन के फीस और घर के बाकी खर्चे भी सिर बाए खड़े रहते। नौकरी ढूंढने की इस कवायद में एक शाम सुधा बहुत थक गई तो मरीन ड्राइव पर जाकर बैठ गई। सामने उफनता समुद्र था और डूबता हुआ सूरज। हवा में हल्की नमी थी और उसके मन में ढेरों सवाल। थोड़ी देर चुप बैठकर वो सामने ताकती रही, फिर धीमे से उसने कहा, भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? उस रोज खुद को संभाल कर जब वो घर पहुंची तब भी उसकी मायूसी परिवार से छुपी नहीं थी। उसे छोटे भाई सौरभ ने हाथ में चाय पकड़ाकर कहा, दीदी आप चिंता मत करो, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। छोटी बहन सरला ने गले लगाकर कहा, दीदी आप सबसे स्ट्रांग हो। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हिम्मत मत हारना। परिवार का ये साथ भी क्या कम था। अगली सुबह एक उम्मीद लिए आई। फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सुधा ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक शांत आवाज आई, मिस सुधा जी, मैं चंदन बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, आप आज आकर ऑफिस में मिलिए, मैं आपके नंबर पर एड्रेस भेज रहा हूँ। सुधा को जैसे यकीन नहीं हुआ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो आप सुन रही है ना, आज आप कितने बजे आएंगी? जी हाँ मैं 2 बजे आकर मिलती हूँ, थैंक यू। सुधा ने फोन रख दिया। कुछ सेकंड वो बस खड़ी रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौट आई जो काफी दिनों से गायब थी। वो दौड़ती हुई अंदर गई, पापा मुझे नौकरी मिल गई। छोटे भाई बहन उछल पड़े, पिता की आंखें भर आई और घर में बहुत दिनों बाद सुकून महसूस हुआ। उस दिन सुधा को लगा कि शायद जिंदगी ने उसे फिर से एक मौका दिया है।

सुधा को नौकरी मिल गई और एक बार फिर वही सब जद्दोजहद शुरू हो गई। वो एक बड़ी कॉरपोरेट फर्म थी जहाँ हर चीज समय और अनुशासन पर चलती थी। वहाँ देर से आना सिर्फ गलती नहीं माना जाता था बल्कि लापरवाही समझा जाता था। पहले हफ्ते ही सुधा को ये समझ आ गया था, पर वो भी क्या करती, जैसे पूरी कायनात उसे लेट करवाने पर तुली रहती। कभी जल्दी निकल जाए तो भाई बहन के स्कूल से कोई कॉल आ जाता, या कभी पिता की तबीयत का कुछ ऐसा हाल होता कि उसे देर हो ही जाती। सुधा का बॉस रमेश का स्वभाव बाकी मैनेजर्स जैसा सख्त तो नहीं था, लेकिन वह अनुशासन को लेकर बहुत स्पष्ट था। बहुत कम बोलता था, लेकिन जो कहता था वो सीधा और साफ होता था। एक दिन मीटिंग के दौरान जब सुधा थोड़ी देर से पहुंची तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। वो हल्का सा झेपते हुए अपनी सीट पर बैठ गई। मीटिंग खत्म होने के बाद रमेश ने उसे अपने केबिन में बुलाया। सुधा थोड़ी घबराई हुई अंदर गई। रमेश अपनी फाइलों से नजर उठाकर उसे देखने लगा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने शांत आवाज में कहा, आप देर से क्यों आते हैं मैं सुधा? सुधा ने सिर झुका लिया। सर, घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, कभी कभी समय पर निकल नहीं पाती। रमेश ने कोई प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दी, बस उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कंपनी के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं? ये सुनकर सुधा के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं कोशिश कर रही हूं सर। रमेश ने फाइल बंद करते हुए कहा, कोशिश काफी नहीं होती मिस सुधा, नतीजे चाहिए होते हैं। सुधा कुछ नहीं बोल सकी, वो चुपचाप सिर झुकाए बाहर निकल गई। उसने अपनी कोशिशें बढ़ा दी ताकि वो समय पर पहुंचा करे। उसने घर के काम को रात में ही पूरा करने की ठान ली। ऐसा करते करते एक दिन सुधा के उठने का समय हो गया और वो सोने की बजाय काम में ही लग गई। वो ऑफिस भी समय से पहुंच गई। आराम न करने के कारण उसकी हालत जरा खराब होने लगी, पर वो ऑफिस का काम पूरा करती रही। जब ऑफिस की छुट्टी हुई और सुधा बाहर निकली तो उसे अचानक चक्कर आ गया और वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। ऑफिस से बाहर निकलते हुए रमेश की नजर उस पर पड़ी तो सुधा का हाल जानने उसकी ओर बढ़ गया। सुधा को ध्यान से देखते हुए रमेश ने पूछा, मिस सुधा, आप ठीक हैं? सुधा आवाज सुनकर अचानक उठने की कोशिश करते हुए बोली, जी सर, लेकिन चक्कर के कारण वो ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और लड़खड़ा गई। रमेश ने उसे संभालते हुए कहा, अरे संभालिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं सर, मैं बस थोड़ी देर बैठ के चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आप चलिए। रमेश ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और दोनों ने सुधा को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया।

0: वह ये मदद लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी कि वो कुछ सोचने या कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ ही देर में रमेश और सुधा डॉक्टर के सामने थे। सुधा की नब्ज देखते हुए डॉक्टर ने पूछा, ठीक से सोती हैं?
1: जी।
0: कितने घंटे?
1: 3-4।
0: बस? और बीती रात?
1: नहीं सो पाई।
0: क्यों, कुछ परेशानी है? सुधा कुछ भी नहीं बोली, लेकिन रमेश समझ गया कि ऑफिस समय से पहुंचने के कारण ही ये नींद नहीं ली गई है। डॉक्टर ने ज्यादा सलाह और कम दवाइयों के साथ उन्हें रवाना किया। रमेश ने बाहर आते ही सुधा से कहा,
2: मिस सुधा, आपको कल आने की जरूरत नहीं है।
0: नहीं सर, मैं समय से आया करूंगी, आप काम से मत निकालिए। सुधा बेचैन सी उठी।
2: मिस सुधा, आपको सेहत ठीक करने के लिए कल की छुट्टी दी जा रही है, आगे आपको आना है और पूरी कोशिश करना है कि समय पर आना है, लेकिन ऐसे भी नहीं आना है कि अगले दिन छुट्टी ही देनी पड़े। रमेश ने मुस्कुराकर कहा,
0: ड्राइवर आपको घर छोड़ देंगे।
1: नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू, आपने इतना किया ये भी बहुत है।
0: कहकर सुधा जाने को हुई कि रमेश ने पास से गुजरते एक ऑटो को रोककर सुधा को उसमें बैठने के लिए कहा। सुधा बैठने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि ऑटो में घर जाना मतलब फिजूल खर्च। तभी रमेश ने उसके हाथ में 500 का नोट देते हुए कहा,
2: घर तक जाइएगा, ये राइड कंपनी की तरफ से है। हाँ, और जो बच जाए कल वापस कर दीजिएगा।
0: जी सर, सुधा ने इतना ही कहा और ऑटो आगे बढ़ गया। सुधा को अपनी तबीयत अभी से ठीक लगने लगी, क्योंकि उसके मन में एक अच्छा सा एहसास था। दिन रात सभी का ख्याल रखने वाली सुधा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई कभी उसका भी ख्याल रखेगा।

दिन बाद जब सुधा ऑफिस पहुंची, तो उसने रमेश का रास्ता देखना शुरू कर दिया। आज वो समय से जरा ही देर से आई थी। हालांकि अब तो ऑफिस के लोग सुधा को मिस लेट लतीफ बुलाने लगे थे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुधा कब आती है। उस दिन रमेश ऑफिस ही नहीं आया और सुधा अपने काम में व्यस्त हो गई। एक दिन ना आने के कारण थोड़ा काम भी बच गया था। वो देर तक रुककर काम करती रही। आधा ऑफिस खाली हो चुका था। देखते ही देखते पूरा ऑफिस खाली हो गया। सुधा को लगा था कि उसका काम आज पूरा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही सुधा ने अपना काम 8 बजे पूरा किया कि वो खुशी से चिल्ला उठी और हाथ हवा में उठा के झूमती हुई खुद को शाबाशी देती हुई जोर से बोल उठी, यस शाबाश सुधा, हो गया ना काम। अरे भाई सुधा, तू चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सारे लोग जा चुके थे, इसलिए सुधा को लगा कि वो ऑफिस के अंदर अकेली ही है। चौकीदार भैया बाहर ही होते हैं, इसलिए वो यूं बेफिक्र खुशी से झूम रही थी कि अचानक उसे केबिन के दरवाजे पर खड़ा रमेश नजर आया, जो उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। सुधा को ऐसे झूमते देखकर वो भी हैरान था और उसके इस बचपने पर रमेश को हंसी भी आ रही थी। सुधा ने जैसे ही रमेश को देखा वो झेप गई। हड़बड़ी में अपनी चेयर में बैठने की कोशिश में वो गिरते गिरते बची। रमेश ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अरे अरे मिस सुधा, ये भी क्या आपके विक्ट्री डांस का हिस्सा है? सॉरी सर, मुझे लगा कि ऑफिस में कोई नहीं है। आई एम सॉरी सर। सुधा शर्म से आंखें ही नहीं उठा पा रही थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, आज तक तो काम को लेकर ऐसी खुशी किसी भी एम्प्लॉय की नहीं देखी। कीप इट अप, अपने काम को लेकर खुश होने में क्या बुराई है? आप जितना खुश रहेंगे कंपनी भी उतनी आगे बढ़ेगी मिस सुधा। थैंक यू सर। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, रमेश ने गंभीर होकर कहा। जी सर। सुधा ने चौंक कर अपनी आंखें उसकी ओर लगा दी। काम के चक्कर में अपनी नींद कम मत कीजिएगा, क्योंकि आप बाहर सिर पकड़कर बैठने से ज्यादा विक्टर डांस करती हुई अच्छी लगती हैं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा तो सुधा ने झेपते हुए शर्मा कर नजरें झुका ली। अब आपको घर जाना है या नहीं? जी सर, बस अभी जा रही हूँ, कहकर सुधा ने सामान उठाया और जल्दी से बाहर निकल गई। रमेश मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अपना काम पूरा करके थोड़ी ही देर में रमेश भी बाहर निकला। देखा तो तेज बारिश हो रही थी और सुधा ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई थी। आप अब तक नहीं गई? सर मैं छाता भूल गई, थोड़ी बारिश कम हो जाए तो निकलूंगी, सुधा ने बारिश की ओर देखते हुए कहा। मिस सुधा ये लीजिए, कहते हुए रमेश ने अपना छाता आगे किया। पर सर आप भी तो। मैं तो गाड़ी से जाने वाला हूँ, अगर आप कहें तो आपको हम कहीं ड्रॉप भी कर सकते हैं। नहीं सर, इतना ही बहुत है, मैं कल वापस ला दूंगी। और हाँ, आपके उस दिन के 235 रुपए बचे थे तो वो, कहते हुए सुधा ने बैग में हाथ डाला कि रमेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं वो आप आज जाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ऑफिस में आपने ओवरटाइम किया है तो इतना तो बनता है। सुधा और कुछ कहती इसके पहले ही रमेश गाड़ी की ओर बढ़ गया। सुधा भी छाता खोलकर बारिश का सामना करते घर की ओर निकल चली। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी और सुधा घर के कामों में लगी थी। उसकी नजर बार बार छाते की ओर जाती और वो पिछले दिन की बातें याद करके मुस्कुरा उठती।

सुधा अपनी सोच में गुम थी कि सरला घर से निकलते हुए बोली, दीदी रश्मि के घर से नोट्स लेकर आती हूँ, इसे ले जाऊं, कितना प्यारा है। कहते हुए उसने वही छाता उठा लिया। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये किसी और का है, तू मेरा छाता ले जा। वो टूटा छाता, उसे ले जाने से अच्छा तो मैं भीगती हुई चली जाऊंगी, सरला ने नाराज होते हुए कहा। अरे आज बनवा दूंगी, तू बुरा मत मान। ये ले जाने दो ना, सरला ने जिद की। बिल्कुल भी नहीं, कहकर सुधा ने सरला के हाथ से छाता छीन लिया और ऊपर रख दिया। सरला लूटकर अंदर चली गई और सुधा ने मन ही मन सोच लिया कि अब की तनख्वाह मिलने पर सरला के लिए एक छाता भी ला देगी। पिता दोनों बहनों की बहस देख रहे थे। उन्होंने सुधा को निराश देखकर उदास स्वर में कहा, मैं तेरा घर बसाने की अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं कर पाया, उसकी जगह इस घर को चलाने की जिम्मेदारी भी तुझ पे ही डाल दी, माफ करना मेरी बच्ची। अरे पापा आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुधा पिता को समझाकर वापस घर के कामों में लग गई। उसका ध्यान अब छाते से हट चुका था। मन एक बार फिर सवालों की गलियों में भटकने लगा। किसी भी तरह सरला और सौरभ को काबिल बनाना है, जिससे वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर लायक बने। सुधा तो ज्यादा पढ़ नहीं पाई, इसलिए उसके सामने छोटी छोटी नौकरी करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। रोज की तरह अगली सुबह जल्दी उठी और पानी भरने के बाद पिता को दवाई देने उनके पास पहुंची तो पिता का माथा तपता हुआ पाया। वो कराह रहे थे। सुधा घबरा गई, जल्दी से उनका टेम्परेचर और बीपी चेक किया और डॉक्टर अंकल को कॉल किया। उन्होंने कुछ फर्स्ट एड उपचार बताने के बाद 9 बजे क्लिनिक आने के लिए कहा। सरला पिता के पास बैठकर माथे पर गीली पट्टी रखने लगी और जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ खाने के लिए भी बना दिया। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में सभी को उसी दिन बुलाया गया था। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची। गीतों भरी कहानी ये श्रृंखला जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे हैं रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। सुधा पापा के डॉक्टर के पास पहुंची, वहां उन्हें दिखाकर दवा लेकर उन्हें घर छोड़ने आई। फिर सरला को पापा के पास बिठाकर जल्दी ऑफिस भागी। पड़ोस की संजना दीदी को हिदायत दी कि वो भी बीच बीच में देखते रहें और कोई भी बात हो तो तुरंत कॉल कर दें। ऑफिस पहुंची तो वो आज 2 घंटे लेट हो चुकी थी। रमन ने उसे देखते ही कहा, सुधा आज तो रिकॉर्ड ही बना दिया, बॉस में मिलने के लिए कहा है। अपना सामान डेस्क पर रखकर सुधा सीधे रमेश के केबिन में पहुंची। रमेश काम में व्यस्त था, उसने सुधा को बैठने का इशारा किया। इस चुप्पी ने तो सुधा की जान ही निकाल दी थी। रमेश ने अपना वो काम पूरा किया और पूछा, आज इतनी देर क्यों? सर पापा की तबीयत, कहते हुए सुधा का गला रूंध गया और वो आगे कुछ ना बोल सकी। तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आप जानती हैं कि आप इन्फॉर्म करके घर पर रह सकती थी, पर आपने 2 घंटे बाद ऑफिस आना चुना, लेकिन एक छोटा सा फोन कॉल करना ठीक नहीं समझा? क्यों? सर मैंने सोचा कि संभाल लूंगी, सुधा ने रूंधे स्वर में ही कहा। क्या संभाल लेंगे आप? ना आप फोन उठा रही हैं, ना आप कुछ बता रही हैं। आप अक्सर देर से आती हैं, हमें आदत है, लेकिन इतनी देर? भगवान ना करे, लेकिन अगर आपको रास्ते में कुछ हो जाता, मान लीजिए उस दिन की तरह चक्कर आ जाता, तो पता कैसे चलता? हम तो यही सोचेंगे कि आप देर से आती हैं और घर के लोग सोचेंगे कि आप ऑफिस में हैं। जानती हैं पिछले 1 घंटे से मैं कितनी टेंशन में हूं, आप फोन भी नहीं उठाती हैं। सब कुछ अकेले संभालने की जरूरत नहीं होती है मिस सुधा, हम सब हैं। सुधा कुछ नहीं बोली, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिर वो बस इतना ही बोल पाई, सॉरी सर। डॉक्टर ने क्या बताया है? रमेश ने पूछा तो सुधा ने सारी बात उसे बता दी। रमेश ने उसके सामने एक फाइल रखी और कहा, आप इस प्रोजेक्ट में मेरी टीम में हैं, मीटिंग दोपहर में है, तब तक पढ़ लीजिए, कोई भी सवाल हो तो मीटिंग में पूछिए। सुधा ने फाइल उठाकर हां में सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए पलटी कि रमेश ने पूछा, आप सैंडविच खाती हैं? जी, सुधा ने सवालिया लहजे में पूछा। ठीक है, चाय या कॉफी? सर मिस सुधा, मेरी टीम का फिट होना भी मेरे काम का हिस्सा है, कुछ सीखिए राघव से, ऑफिस फंड से ही रोज नाश्ता करता है। सुधा ने जब आश्चर्य से रमेश की ओर देखा तो रमेश ने मुस्कुराकर हां में सिर हिलाया और उसकी मुस्कान से सुधा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। बाहर निकलकर भी सुधा के चेहरे पर वो मुस्कान कायम रही।

सुधा की तरह ही समय भी पंख लगाकर ही उड़ रहा था। अब सुधा घर के साथ साथ ऑफिस के काम को भी सहजता से संभालने में जुटी रहती थी। ऑफिस उसे अब अच्छा लगने लगा था। उसकी नजरें ऑफिस में रमेश को ही ढूंढा करती, लेकिन वो सामने आता तो सुधा घबरा जाती। सुधा रमेश के प्रोजेक्ट में जी जान से जुटी थी। रमेश सुधा को हिदायत दिया करता कि वो काम में मदद ले लिया करे, लेकिन सुधा की तो आदत थी कि वो सब कुछ अकेले ही संभालना चाहती। रमेश ने सुधा को प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी।

रमेश और सुधा इस प्रोजेक्ट के कारण काफी समय साथ ही बिताते। एक रोज घर से टिफिन लाते हुए सुधा रमेश के लिए भी खाना ले आई। जब लंच टाइम में रमेश के सामने उसने उसका टिफिन रखा तो रमेश आश्चर्य से उसे देखने लगा। सुधा ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराकर चल दी। रमेश ने टिफिन वापस देते हुए उसे यही कहा कि बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया, थैंक यू। प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही रमेश और सुधा एक रोज मीटिंग में गए तो लौटते वक्त वहाँ पास ही सागर के किनारे टहलने लगे। रमेश से बातों बातों में सुधा ने पूछा, सर आपको घर का खाना इतना पसंद है तो आप लाते क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। सुधा ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। उसने बैग से निकाल कर अपना टिफिन रमेश के हाथ में दे दिया। आज देने से क्या होगा, रोज लाओ तो बात है, कहते हुए रमेश समुद्र के किनारे ही बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगा।

सुधा उसे आश्चर्य से देखती हुई बोली, सर आपको ऐसे खाते हुए देखने के लिए तो मैं रोज ला दूंगी। ये कहकर सुधा हंस पड़ी, तुम्हें ऐसे हंसता देखने के लिए मैं रोज ऐसा कर सकता हूँ। रमेश ने सुधा की ओर देखते हुए संजीदा होकर कहा। सुधा ने नजरें झुका ली। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था, जिसे दोनों समझते थे और इशारों में कह भी दिया करते थे, लेकिन बात खुलकर कोई भी नहीं कर रहा था। पर अब रमेश ने सोच लिया कि वो सुधा को अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल करना चाहता है और उसने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। उसने ठान लिया कि अगले ही दिन वो सुधा से अपने दिल की बात कह देगा।

हफ्ते भर बाद चंदन ने बताया कि सुधा ने ऑफिस में काम छोड़ने की अर्जी दे दी है। रमेश को तो कुछ समझ ही नहीं आया। चंदन ने साथ आया एक खत भी रमेश को दिया। जब रमेश ने खत खोला तो उसमें लिखा था, सर इंसान चाहता क्या है और होता क्या है, आपसे एक छोटा सा वादा किया था कि आपके लिए रोज टिफिन लेकर आऊंगी, लेकिन ये भी नहीं कर पाऊंगी। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से बाहर जा रही हूँ। पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि ना कुछ कह पाई ना समझ ही पाई। पर अच्छी बात यह है कि जिनसे शादी हो रही है वो पापा के साथ साथ सरला और सौरभ को भी साथ रखने के लिए तैयार है। कम से कम इन दोनों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। कुछ बन जाएंगे तो अपने मन की कर पाएंगे, वरना परिस्थिति कहां किसी की सुनती है। माफ कीजिएगा, मिलने नहीं आ पाई। बस यही तमन्ना है कि आपके घर में कोई आ जाए जो आपको रोज टिफिन बनाकर दे। आप ये कोशिश कीजिएगा, सुधा। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। काश उसने सुधा से अपने दिल की बात पहले ही कह दी होती। काश वो उसके पिता से ही बात कर लेता, वो भी तो उसके परिवार को अपनाना चाहता था। पर अब इतनी देर हो चुकी थी। रमेश के मुंह से केवल इतना ही निकला, सुधा तुमने कम से कम मुझे इतना अपना तो समझा कि मेरी खुशियों को भी अपनी खुशी मानकर अपने साथ ही निछावर कर दिया।

अगले दिन जल्दी ऑफिस आकर रमेश सुधा का इंतजार करने लगा। न सुधा आई न उसका फोन लगा। चंदन ने बताया कि सुधा ने छुट्टी ली है। रमेश बेचैन सा रहता, लेकिन उसे लगा कि सुधा के साथ इतना कुछ लगा रहता है कि क्या किया जा सकता है।

एक बार फिर भागते शहर मुंबई में जीवन की जद्दोजहद के बीच एक और प्रेम कहानी अधूरी रह गई। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे रिद्धि चौरड़िया की लिखी कहानी जिंदगी की यही रीत है। वाचन नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को सरिता चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। और हमारी बहनों कैसी हो? आशा करते हैं हमारी बहनों का जीवन खुशियों से भरा हो। बहनों, आजकल ज्यादातर माता पिता की शिकायत रहती है कि उनका बच्चा सब्जियां खाने में नखरे करता है। कई बच्चे हरी सब्जियों को देखते ही मुंह बनाने लगते हैं। ऐसे में उनको जरूरी पोषण नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ प्रभावित होती है। बच्चों को बढ़ती उम्र के साथ विटामिन और फाइबर से भरपूर सब्जियों की जरूरत होती है। आइए बहनों, बात करते हैं बच्चों में सब्जियां खाने की आदत डालें। अगर बच्चा सब्जियां खाने में नखरे करता है तो कुछ क्रिएटिव और स्मार्ट तरीकों की मदद ली जा सकती है। बच्चों को अगर वही सब्जियां नए और अनोखे ढंग से दी जाएं तो उनकी खाने में दिलचस्पी बढ़ सकती है। बहनों, हम उनके फेवरेट कार्टून करैक्टर की शेप बनाकर डेकोरेट कर सकते हैं। ब्रोकली, शिमला मिर्च, कॉर्न, पनीर आदि से इन रंग बिरंगियों सब्जियों से स्माइली की शेप दे सकते हैं, जिससे देखकर बच्चे खुश होंगे। बच्चे अगर सीधे तौर पर सब्जियां खाने में नखरे दिखाते हैं तो उनकी पसंदीदा डिश में उन्हें शामिल कर लें। पास्ता, नूडल्स, पराठा, सैंडविच, पिज्जा आदि में सब्जियों को छोटा छोटा काटकर बनाएं, जिससे वे बड़े शौक से खाएंगी। सब्जियों को पीसकर या कसकर रोटी, पराठा या पूरी बना सकती हैं। हरी सब्जियों को पीसकर उसे आटे में गूंथ लें, उसकी आप रोटी, पराठे, पूरी कुछ भी बना सकती हैं। बच्चे हरी रंग की पूरी, पराठा या रोटी देखकर बहुत खुश होंगे। बहनों, चुकंदर, खीरा, गाजर को आप कद्दूकस कर ले, इनको आप दही में डालकर बच्चों को खिला सकती हैं। दही में हल्की सी काली मिर्च और हल्का सा नमक डाल लें। चुकंदर से दही का रंग लाल हो जाएगा। जब बच्चा इस रंगीन दही को देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा और इसे वह आराम से खा लेगा। मैंने बहुत से बच्चों को सूजी के चीले बहुत पसंद होते हैं। ऐसे ही आप चीले के घोल में टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, हरा धनिया बारीक काटकर घोल में मिक्स करके इसके चीले बनाकर बच्चों को सॉस के साथ दे सकती हैं। उन्हें खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। मैंने यह चीला स्वादिष्ट के साथ साथ पौष्टिक भी होगा। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, नूडल्स खाने के बेहद शौकीन होते हैं। ऐसे में आप नूडल्स में लाल, पीली, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, प्याज, हरा धनिया सबको बारीक चॉप कर लें और इन सबको नूडल्स में डालकर पका लें। ये रंग बिरंगी नूडल्स देखकर बच्चे का मन खुश हो जाएगा और वह नूडल्स के साथ ये सारी सब्जियां भी खा लेगा। बहनों, बच्चों को नाश्ते में आप सब्जियों का सूप और स्मूदी बनाकर दे सकती हैं। सूप बनाना बहुत ही आसान होता है। इसमें आप बारीक कटी हुई गाजर, मटर, आलू, बीन्स और ब्रोकली आदि लेकर पानी में उबाल लें। जब सब्जियां उबल जाएं तब मिक्सी में पीस लें और फिर इसकी गाढ़ी प्यूरी बना लें। फिर एक पैन में थोड़ा सा मक्खन गर्म करें, फिर प्यूरी डालें। स्वाद अनुसार काली मिर्च और नमक डालकर 1 से 2 मिनट तक उबालें और बच्चों को हल्का गर्म परोसें। उन्हें बहुत पसंद आएगा। मैंने बच्चों को स्मूदी भी बहुत पसंद होती है। स्मूदी भी झटपट बन जाती है। इसमें आप बच्चे की पसंद के केला या आम ले सकती हैं, आधा कप दूध या दही और 1 चम्मच ओट्स या पीनट बटर डालकर मिक्सी में पीस लें। फ्रिज में ठंडा करके बच्चों को खिलाएं, इन्हें बहुत ही पसंद आएगा। बच्चों को शाम के समय हेल्दी स्नैक्स दे सकती हैं, जैसे वेज रोल, वेज टिक्की, स्प्राउट्स आदि। इनमें गाजर, मूली, टमाटर जैसे सब्जियों को बारीक काट कर डालें। रोजाना कुछ नया तरीका उनके बोरिंग खाने को नया और स्वादिष्ट बना सकता है। मैंने बच्चे अपने माता पिता को फॉलो करते हैं। यदि माता पिता तरह तरह की सब्जियां खाते हैं तो उन्हें देखकर बच्चे भी खाते हैं। मैंने जब सब्जियां खरीदने जाएं तो कभी कभी बच्चों को भी साथ ले जाएं।

उनसे पूछें, बेटा कौन कौन सी सब्जियां खरीदे, उनकी रुचिकर सब्जियां खरीदे, तो वह आराम से खा लेंगे। बहनों, जब बच्चा आराम से सब्जियां खाने लग जाए तो उसकी आप तारीफ जरूर करें, इससे बच्चे को खुशी मिलेगी। और आप यह भी करें, जब आप सब्जी खाएं तो सब्जी की तारीफ करें, कितनी अच्छी सब्जी बनी है, क्या स्वाद है, बेटा तुम भी खाकर देखो। वह देखेगा कि मम्मी को सब्जी अच्छी लग रही है तो वह भी खाने की कोशिश करेगा। बहनों, बच्चों को सब्जी धोने, चुनने या मिक्स करने में जैसे छोटे कामों में शामिल करें, इससे सब्जियां खाने में उनकी रुचि बढ़ेगी। बहनों, मैं तो ऐसा मानती हूँ, बच्चे अपने माता पिता की नकल करते हैं। जब आप खुद प्लेट में हरी सब्जियां और सलाद खुशी से खाएंगे तो बच्चे भी उसे एक सामान्य और अच्छी आदत के रूप में अपनाएंगे। बहनों, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आइए आपका करवाते हैं मनोरंजन और सुनते हैं ये मधुर गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख? क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अभी हमारी बहनों ने सुना ये गीत, आशा करते हैं पसंद आया होगा। बहनों अब हम बात करेंगे E20 पेट्रोल क्या है। बहनों E20 पेट्रोल एक ऐसा पेट्रोल है जिसमें 20% एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसका मतलब है कि E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। एथेनॉल एक ऐसा फ्यूल है जो कि गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से बनता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी पाई जाती है जो इसे पूरी तरह जलने में मदद करता है। बहनों जैसे जैसे हमारा देश साफ सुथरे और कम प्रदूषण वाले फ्यूल की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम एक ऐसे फ्यूल का उपयोग करें जो कि देश में प्रदूषण को कम करने और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्रदान करें। बहनों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत अपने कच्चे तेल का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है, जिससे दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव और सप्लाई में रुकावट आने पर इसका देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ता है। E20 पेट्रोल का उपयोग करने से हमारे देश के किसानों को भी फायदा पहुंचता है, क्योंकि E20 पेट्रोल में मिलाया जाने वाला एथेनॉल गन्ना और मक्का जैसे उत्पादों से बनता है, जिससे हमारे किसानों को आर्थिक मदद मिलती है। बहनों E20 पेट्रोल में ऑक्सीजन की मात्रा पाए जाने के कारण यह सामान्य पेट्रोल की तुलना में भी पूरी तरह जल जाता है। इस कारण E20 पेट्रोल हमारी प्रकृति के लिए भी लाभदायक है। बहनों इसलिए हमारी सरकार E20 पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है। आइए बहनों ले चलते हैं आपको गीत संगीत।

अभी हमारी बहनों ने सुना ये गीत। इस गीत के बाद अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए बहनों, अब बात करते हैं, लंबे समय तक ना बैठें, लेते रहें वॉक ब्रेक। बहनों, लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव, थकान, नसों में दर्द, मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोगों का खतरा बढ़ता है। इसे टालने के लिए हर 30 से 60 मिनट में अपनी सीट से उठना चाहिए। 5 मिनट का वॉक ब्रेक, थोड़ा स्ट्रेच करें या छोटा सा ब्रेक आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल और थकान को दूर करने में बेहद असरदार है। बहनों, लगातार एक ही अवस्था में रहने से पैरों में खून का संचार धीमा हो जाता है और चलने फिरने से रक्त प्रवाह सुचारू होता है, मोटापा पर नियंत्रण होता है, हर घंटे थोड़ा चलने से कैलोरी बर्न होती है और शरीर एक्टिव रहता है, मानसिक तनाव कम होता है। बहनों, काम के बीच 5 मिनट का ब्रेक मूड को बेहतर बनाता है और कार्य क्षमता बढ़ाता है। ब्रेक लेने का सबसे आसान तरीका है कि आप अलार्म या रिमाइंडर लगा लें। ऑफिस में दिन बिताने वाले लोगों के लिए सेहत ठीक रखने का यह सबसे अच्छा और आसान तरीका है। इससे काम भी प्रभावित नहीं होता है और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। जब भी फोन कॉल करें, उस समय आप टहलते हुए बात करें, अपनी टेबल पर पानी की बोतल ना रखें, पानी पीने के लिए बार बार उठकर वाटर कूलर या डिस्पेंसर तक जाएं, सहकर्मियों से जब बातचीत करें उन्हें ईमेल या मैसेज करने की बजाय उठकर सहकर्मी की डेस्क तक जाएं, काम करते समय कमर सीधी रखें, अपने कंप्यूटर मॉनिटर को बिल्कुल आंखों के स्तर पर रखें ताकि गर्दन झुकानी ना पड़े, आपके दोनों पैर फर्श पर सीधे और सपाट होने चाहिए। लंच के बाद अपनी सीट पर बैठे रहने की बजाय 10-15 मिनट के लिए वॉक जरूर करें। लिफ्ट का उपयोग करने के बजाय कम से कम एक या दो मंजिल के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। बहनों, इससे सेहत तो अच्छी रहेगी, साथ में हम अपने कामकाज को बेहतर बना सकते हैं। ब्रेक लेने से फोकस, मेमोरी और सोचने की क्षमता में सुधार होता है। इससे लोग फ्रेश और रिलैक्स महसूस करते हैं। बहनों, छोटे छोटे मूवमेंट से सेहत बेहतर होती है। कई बार अपनी जगह से ज्यादा दूर नहीं जा सकते तो छोटे छोटे व्यायाम सीट पर ही करें, जैसे अपनी गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं और ऊपर नीचे करें। अपनी जगह पर खड़े होकर पंजों के बल ऊपर उठें और फिर एड़ियों पर आएं। बहनों, मन को प्रसन्न और शरीर को फिट रखने के लिए लंबे समय तक ना बैठें, लेते रहें वॉक ब्रेक। हर इंसान ने सुकून के लिए अपने दिल को सुना, किसी ने इबादत चुनी और हमने संगीत को चुना। आइए अंत में सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, खुद में मस्त रहिए, जिंदगी में मगन रहें। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, फिर आएंगे आपका मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत लेकर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ सरिता चौधरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 MHz पर। इस समय 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

सूरज हर शाम ढलता है मगर हर सुबह फिर निकलता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, बस उम्मीद का दिया जलाए रखिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और मैं हूँ आपकी युवाणी दोस्त भारती। कहते हैं शब्दों का असर कुछ पल का होता है लेकिन व्यवहार की गूंज बहुत दूर तक जाती है। आज की बात भी कुछ ऐसी ही है, हमारा व्यवहार अक्सर दूसरों के व्यवहार का ही जवाब होता है।

जरा सोचिए, जब कोई हमें मुस्कुरा कर मिलता है तो बिना कोशिश के भी हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगर कोई रूखेपन से बात करता है तो हमारा लहजा भी बदलने लगता है। यही इंसानी स्वभाव है, हम अक्सर वही लौटाते हैं जो हमें मिलता है। दोस्तों, रिश्तों में दूरियां हमेशा बड़ी वजहों से नहीं आती, कई बार सिर्फ एक अनदेखी, एक कड़वा लहजा और रूखी सी प्रतिक्रिया हमारे रिश्तों की गर्माहट को कम कर देती है और फिर सामने वाला भी उसी अंदाज में जवाब देने लगता है। लेकिन ज़रा ठहर कर सोचिए, अगर कोई सिर्फ जवाब ही देता रहे तो पहल कौन करेगा? असल ताकत बदले में वैसा ही व्यवहार करने में नहीं है, बल्कि हालात से ऊपर उठकर अच्छा व्यवहार बनाए रखने में है। क्योंकि दोस्तों, अच्छा व्यवहार कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है उसका असर तुरंत ना दिखे, लेकिन वो किसी के दिल में सम्मान ज़रूर छोड़ जाता है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी संघर्ष से ज़रूर गुजर रहा होता है। कई बार सामने वाले का जो रूखा व्यवहार है वो उसकी आदत नहीं बल्कि उसकी मजबूरी हो सकती है या उसकी कोई परेशानी भी हो सकती है। ऐसे में अगर हम थोड़ा धैर्य से, आराम से और समझदारी दिखाकर सिचुएशन हैंडल करते हैं तो शायद एक रिश्ता टूटने से बच जाए। दोस्तों, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा व्यवहार एक आईने की तरह होता है। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही अक्सर हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए हमें हमेशा ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हमारी बातों में अपनापन हो, हमारे लहजे में मिठास हो, सम्मान हो, हमारे व्यवहार में इंसानियत दिखनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए दो लाइनें और कहना चाहती हूँ। लफ्ज़ों से पहले व्यवहार बोल जाता है और दिल का हर एहसास खोल जाता है। नफ़रत का जवाब नफ़रत से देना आसान है, मगर प्यार से दिया जवाब ही इंसान को इंसान बनाता है।

दोस्तों, आज विविधा के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले कला संस्कृति की, जिसमें बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जिसका इंतजार लाखों श्रद्धालु पूरे साल करते हैं। वो है भगवान जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा। रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि आस्था, प्रेम और समानता का हमें एक सुंदर संदेश देती है। जब भी जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई देती है तो मन में अपने आप भक्ति भाव बढ़ जाता है। भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माने जाते हैं। उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और हर साल आषाढ़ महीने में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीन अलग अलग भव्य रथों में बैठकर मंदिर से निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, और इस यात्रा को ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं, और जो लोग मंदिर के अंदर जाकर दर्शन नहीं कर पाते हैं उन्हें भी भगवान खुले मन से दर्शन देते हैं। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से रथ खींचते हैं। इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है दोस्तों कि हमें समानता का संदेश देती है, प्रेम बांटती है, हमें सेवा करना सिखाती है। ये रथ यात्रा हमें ये भी सिखाती है कि भगवान के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब रथ खींचा जाता है तो हर वर्ग, हर उम्र और हर धर्म के लोग श्रद्धा के साथ उसमें शामिल होते हैं, और इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ का रथ खींचना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ रथ खींचना नहीं है, बल्कि मन में प्रेम, सेवा और विनम्रता रखना है। आज के समय में जब लोग भाग दौड़ में, रिश्तों और अपनेपन के लिए समय नहीं निकाल पाते, तब ऐसे ही पर्व हमें जोड़ने का काम करते हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में विश्वास, सहयोग और एक दूसरे का सम्मान कितना ज़रूरी है। चल पड़ा है प्रेम का रथ, साथ चले हम सब आज। जगन्नाथ का यही संदेश, प्रेम ही है सबसे बड़ा राज।

दोस्तों गर्म और उमस वाले मौसम में पसीना ज्वर से ज़्यादा आता है। हालांकि पसीना हमारे शरीर का खुद को ठंडा रखने का एक प्रोसेस है, लेकिन बिना हाइड्रेशन के ज़्यादा पसीना आना शरीर

में पानी की कमी कर सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे सिर्फ शरीर में पानी की कमी नहीं होती बल्कि थकान के साथ साथ दिल पर भी बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि डिहाइड्रेशन से सिर्फ शरीर में पानी की कमी होती है तो ये जानकारी अधूरी है। जब पसीना निकलता है तो इससे शरीर से पानी के साथ खास पोषक तत्व जैसे सोडियम और पोटेशियम भी बाहर निकल जाते हैं और ये पोषक तत्व दिल की धड़कन नियमित रखने, मसल्स और नसों को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। ठीक से पानी न पीने की स्थिति में जो हमारा शरीर है उससे मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं, जिसका मतलब ये है दोस्तों कि दिल को पूरे शरीर में ब्लड पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी होती है। डिहाइड्रेशन का दूसरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन पर। जब शरीर में ब्लड पंप ठीक से नहीं होता तो शरीर के बाकी ज़रूरी हिस्सों तक भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती। नतीजतन हार्ट तेज़ी से ब्लड पंप करने लगता है जिससे दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं और ये स्थिति हीट स्ट्रोक और गर्मी से होने वाली थकावट को भी बढ़ा देती है। इसमें भी खासकर जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, दिल के मरीज़ हैं और लंबे समय

अफ्रीका के प्लेयर्स इसमें पहली बार एक आयोजन में खेलते हैं, हालांकि ये भी एक आधिकारिक कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं था। कनाडा के हैमिल्टन शहर में पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में आयोजित हुआ था। ओलंपिक के अलावा एक और आयोजन हर 4 साल में होना चाहिए, ये फैसला लिया गया। कनाडा में हुए पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में 11 देशों के 400 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। पहले संस्करण में डाइविंग, बॉक्सिंग, स्विमिंग, एथलेटिक्स, कुश्ती और लॉन बॉल खेला गया। कॉमनवेल्थ गेम का पहला गोल्ड मेडल रोवर बॉबी पियर्स ने जीता था, जो ऑस्ट्रेलिया के थे। 1934 में भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया, लेकिन उस समय भारत आज़ाद नहीं था। कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले संस्करण के 80 साल बाद भारत ने पहली बार इन खेलों की मेजबानी की, जो कि दक्षिण एशिया का पहला शहर बना। इसमें भारत ने 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा था। एक और महत्वपूर्ण बात, भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जिसने जीता था, वो आपको बता दें, उनका नाम है मिल्खा सिंह।

दोस्तों अब चर्चा कर ली जाए खेल की। कॉमनवेल्थ गेम्स के 23वें संस्करण की शुरुआत 23 जुलाई 2026 से स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो से शुरू हो चुकी है। चौथी बार स्कॉटलैंड इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। 23 जुलाई से शुरू होकर 2 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में 74 देशों के 3000 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारत के भी 126 खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे जो 8 खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास। 19वीं सदी में जब दुनिया के कई देशों पर ब्रिटिश सरकार का राज था, तब ब्रिटिश पादरी जॉन एशली कूपर ने एक ऐसे आयोजन के बारे में पहली बार सोचा था। उनका मानना था कि यदि साम्राज्य की ताकत बढ़ानी है तो ये भी जरूरी है, तो जिसे उन्होंने पैन ब्रिटेनिक फेस्टिवल नाम दिया। हालांकि ये शुरू नहीं हो पाया। फिर ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के मौके पर लंदन में फेस्टिवल ऑफ एम्पायर आयोजित किया गया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण

0: तो इसी के साथ श्रोताओं, मुझे दीजिए अब जाने की अनुमति, फिर मिलने के वादे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
3: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
4: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ समाज के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
5: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
6: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों, अमरीका

0: और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय 6:05 हुए हैं। आइए अब एक नज़र आज के शेष रहे और कल सुबह प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर।

अब से कुछ ही क्षणों में यानी कि 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। किसान भाई बहनों का अपना कार्यक्रम आप ग्राम भारती आप सुनेंगे 7:00। फिल्म संगीत 7:30 पर। 8:00 संसद समीक्षा आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से।

लोक संगीत 8:15 पर, 8:45 पर समाचार संध्या का समय रहेगा। 9 बजे अंग्रेजी में समाचार होंगे। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:15 पर। संसद में हुए पत्रकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और हमारी आज की सभा समाप्त होगी रात्रि के 11:05 पर। और अब सुबह प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर एक नज़र। सुबह 6 बजे हिंदी में समाचार होंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार आप सुनेंगे 6:05 पर। 6:30 पर झरोखा कार्यक्रम विवरण आप सुनेंगे। रामचरितमानस गान 6:35 पर। संगीत सरिता 6:45 पर। सुबह 7 बजे होगा कार्यक्रम नमस्कार अर्पण। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। 8 बजे समाचार प्रभात का समय रहेगा। सुगम संगीत का समय रहेगा सुबह के 8:15 पर।

सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे बातें फिल्मों की, जब सितारों ने सजाए सुर। आलेख अर्चना जैन का और प्रस्तुतकर्ता शिव कुमार शर्मा। सुबह 9:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। 9:10 पर पीपल्स पद ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत सविता पुनिया से बातचीत होगी। 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम प्रसारित होंगे। 12:00 विविध भारती के कार्यक्रम 12:05 पर।

दोपहर के 2 बजे। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। श्रोताओं, ये तो थी आज की शेष रहे और कल सुबह प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 MHz पर। इस समय 6:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अंधा कानून फिल्म का ये गीत है आवाज़ें आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

थोड़ी देर में यानी कि 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामले पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि, संसद में भी गतिरोध जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 केमिकल पार्क बनाने के लिए भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने नशा मुक्ति के लिए महीने भर का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए और राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में अगले 2 दिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कल सभी जिलों के लिए बरसात का अलर्ट जारी किया। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज दूसरे दौर की बातचीत नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद ये वार्ता हुई। सरकार की ओर से सीजेपी की 2 शर्तों को स्वीकार करने के बाद ये बातचीत आगे बढ़ी। सीजेपी की ओर से सौरभ और आशुतोष राका ने श्री नड्डा को अपनी मांगे बताई। इसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने और हाल ही में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग शामिल है। मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर आज एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में सुधारों को संस्थागत रूप से देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक सख्त विधेयक लाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि देश भी यही चाहता है और विधेयक के पारित होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष इस मुद्दे पर संसदीय कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे देश के युवाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा।
1: नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के चर्चा नहीं कर पाए, हम तो आज भी फिर से अपील किया है। हमने आज भी, राहुल गांधी जी खुद सदन में थे तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए। कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली अब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने वालों का जो सबसे प्रमुख चेहरा है सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी। संसद के दोनों सदनों में आज 5वें दिन भी हंगामा जारी रहा। नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा को लेकर तथा अन्य विषयों पर विपक्ष के शोर शराबे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद दोनों सदनों के कामकाज पर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

0: गया है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार सत्र के पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, किंतु विपक्ष बिना किसी ठोस शर्त के चर्चा में भाग नहीं ले रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वंदे मातरम बिल पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 1264 करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बैठक के अहम निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास रसायन भव्य रसायन योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना की घोषणा 2026-2027 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इसके तहत 3 प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जल संचय और जल भागीदारी पर जोर दिया है। श्री शर्मा आज जयपुर में आयोजित राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नवाचारों से राजस्थान जल प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय मॉडल बनेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक जल प्रबंधन और हर घर जल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना, ऐतिहासिक यमुना जल समझौते और नर्मदा अवार्ड समझौते ने प्रदेश में जल सुरक्षा के नए युग की शुरुआत की है।
1: दूसरा हमारा एमओयू हुआ और वो हुआ यमुना समझौते का। यमुना का पानी हमें कैसे मिले, तो हमने केंद्र में भी बात की, हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब और हम बैठे और उसमें हमने फरवरी के महीने में एमओयू हमें उसका किया। और आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अभी हमारा यमुनाओं का एमओए भी हो गया और उसमें हमको पाइपलाइन के द्वारा पानी मिलेगा, उसकी डीपीआर भी बन गई, अगले कुछ दिनों में उसका भी शिलान्यास होने वाला है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। नशा मुक्त राजस्थान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज जयपुर में नशा मुक्ति अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और भावी कार्य योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को इसके लिए जल्द परिपत्र जारी करने और नशा मुक्ति के लिए राज्य में महीने भर का विशेष अभियान चलाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के लिए सभी स्तरों पर जवाबदेही तय की जाए। श्री बागड़े ने कहा कि विश्वविद्यालयों में मादक पदार्थों के सेवन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सीमा क्षेत्र में ड्रोन से नशीले पदार्थों को भेजे जाने पर चिंता जताते हुए इस संबंध में जल्द प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज कोटपुतली पहुंचे। उन्होंने राजकीय बीडीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। चिकित्सा मंत्री ने विभिन्न वार्डों का भी परीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा केंद्र पर डॉक्टरों की कमी नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए संसाधनों की कमी भी नहीं होनी चाहिए।
2: मेरा दो चीजों का फोकस है। नंबर एक, चाहे सब सेंटर है, चाहे पीएचसी है, सीएचसी है, एसटीएच है, डीएचएच है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, इम्पोर्टेंट चीज ये कि डॉक्टर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी लेवल का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो अलॉटेड इक्विपमेंट है उसकी कमी होनी चाहिए। कुछ स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर्स चाहिए थे, हमने नोट कर लिया, हम जल्दी देंगे।
0: बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में आज से हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव सखी व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई है। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी परिवारों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व संबंधी सर्वे की आखिरी तारीख बढ़ाकर 26 जुलाई कर दी है। आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन ने इस बारे में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर सर्वे का काम पूरा करने को कहा है। गौरतलब है कि राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप के माध्यम से 10 जुलाई से शुरू हुआ सर्वे का काम 23 जुलाई तक करीब 70% ही पूरा हो पाया है। इसे देखते हुए सर्वे की अवधि को बढ़ाया गया है। इस बीच भीलवाड़ा में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन

0: मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के स्तर पर निकाय चुनावों से जुड़ा काम पूरा कर लिया गया है।
1: राज्य सरकार के स्तर पर नगर निकायों के चुनावों को लेकर जितना काम किया जाना था, चाहे वो निकायों की सीमा वृद्धि का मामला हो, चाहे उनके पुनर्सीमांकन का मामला हो और चाहे वार्डों के पुनर्गठन का मामला हो, वो सारे के सारे काम हम 2026 की शुरुआत में पूरे कर चुके हैं। हमारा एक प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर लंबित था, उसका फैसला भी राज्य सरकार के हक में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।
0: राज्य के पूर्वी और पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में गरज चमक के साथ बरसात का अलर्ट बताया है। साथ ही कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। बीते 24 घंटों में भी राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भागों में मध्यम से तेज पानी बरसा। बांसवाड़ा में आज सुबह से ही बरसात का दौर बना हुआ है। माही डैम में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। भीलवाड़ा में भी रिमझिम बारिश हो रही है। पाली जिले के सादड़ी, देसूरी और नानबेड़ा सहित कई जगह पिछले तीन दिनों से बारिश का सिलसिला रुक रुक कर बना हुआ है। जवाई बांध सहित विभिन्न स्रोतों में पानी की आवक लगातार जारी है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल सभी जिलों में येलो और जालौर तथा सिरोही में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: आज दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन भी दक्षिणी राजस्थान से होकर गुजर रही है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में खासकर राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी भागों में हल्की भारी बारिश भी दर्ज की गई है। अभी भी दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में अगले दो तीन दिन हल्की भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं राज्य के बीकानेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में भी आगामी 3 दिन में गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।
0: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 आयोजित की गई। बोर्ड की ओर से महिला और बाल विकास विभाग में 72 पदों के लिए ये परीक्षा ली गई। सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एक पारी में ये परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामले पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि, संसद में भी गतिरोध जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 केमिकल पार्क बनाने के लिए भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नशा मुक्ति के लिए महीने भर का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए और राज्य के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में अगले दो दिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने कल सभी जिलों के लिए बरसात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसकी लेखिका है नीलिमा दादिज। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे अजमेर जिले में पिछले महीने विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जनसेवा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियां रहीं। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त मिली, विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में नई सुविधाएं जुड़ी और विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए गए। आइए जानते हैं पिछले महीने की प्रमुख गतिविधियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की। इसके तहत अजमेर जिले के लगभग 1,65,000 किसानों के खातों में सहायता राशि पहुंची। इस अवसर पर तबीजी स्थित राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जिले के सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम हुए, जहां किसानों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों केकड़ी के दौरे पर रहे। कृषि उपज मंडी समिति परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने आम जन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली राज्यमार्ग के 4-लेन परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास किया। साथ ही केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1200 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अजमेर के हाथीखेड़ा क्षेत्र में बालिका सैनिक स्कूल के निर्माण कार्य

0: का पिछले दिनों शुभारंभ हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भूमि पूजन किया। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये विद्यालय समग्र शिक्षा अभियान के तहत विकसित किया जाएगा। परिसर में शैक्षणिक भवन, छात्रावास, प्रशासनिक भवन, खेल मैदान, परेड ग्राउंड और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पुष्कर क्षेत्र में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने काठोदा और पालड़ी गांवों में 2,28,00,000 रुपए से अधिक लागत की विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें दोनों गांवों के उप स्वास्थ्य केंद्र और काठोदा की संपर्क सड़क शामिल है। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं और आवागमन की सुविधा को मजबूती मिलेगी। राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारंभ किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसका उद्घाटन किया। इस सुविधा के शुरू होने से जिले के मरीजों को आधुनिक सर्जरी की सुविधा स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर हनुमान सिंह राठौड़ ने कार्यभार संभाला। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष पद रिक्त होने के बाद सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त केसरी सिंह राठौड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। आयोग में डॉक्टर आनंद और डॉक्टर दीपक कुमार ने नए सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदरसिंदरी ने शोध और नवाचार के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय को नेचर इंडेक्स 2026 रिसर्च लीडर रैंकिंग में देश के शीर्ष संस्थानों में 79वां स्थान मिला है। वहीं शैक्षणिक संस्थानों की श्रेणी में विश्वविद्यालय ने 67वीं रैंक हासिल की है। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार जिले में शहरी सेवा शिविरों का आयोजन जारी है। शिविरों में पट्टे, नामांतरण, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और अन्य विभागों से जुड़े मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस लाइन मैदान में हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने योगाभ्यास किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आयुर्विज्ञान की मानकीकृत सिंधी शब्दावली तैयार करने के लिए 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से चिकित्सा विशेषज्ञ, भाषा विशेषज्ञ और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। कार्यशाला में चिकित्सा विज्ञान से जुड़े लगभग 6,000 अंग्रेजी और हिंदी शब्दों के मानक सिंधी पर्याय तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामला में से कॉकरोच जनता पार्टी का नुमाइंदा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मिलिया। संसद में आई अड़चन जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल देश में 3 केमिकल पार्क बनावन सारू भव्य रसायन योजना ने मंजूरी दीनी। राज्यपाल हरिभाव बागड़े नशारी लत न जड़ू खत्म करण सारू महीना भर रो खास अभियान चलावन रा हुकम दीना। और प्रदेश उगनी और लंकाऊ हल्का माए आवता 2 दिन कछे कछे जबरदस्त बारिश रा आसार। मौसम विभाग काल प्रदेश रा सगला जिला माय बरसात सारू चेतायो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत भाजपा रा कई नेताओं और कॉकरोच जनता पार्टी CJP रा नुमाइंदा बीच आज नई दिल्ली माय दूजा दौर री मीटिंग भी। न्यारी न्यारी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियां के खिलाफ नौजवानों की अगुवाई में किया जा रहा विरोध प्रदर्शन बीच बातचीत करी थी। CJP रा नुमाइंदा सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दीपके और दीपक बलियान शांति सागे प्रदर्शन करने वाला के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करण और हाल ही में हुई परीक्षाओं में गड़बड़ियां रो नुकसान झेल रहे विद्यार्थियों रा परिवारों ने मुआवजो देवन री शर्त सरकार कानून मान्या पाछे बातचीत री सहमति जताई। खबर नवी संसागे बातचीत करता था का स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कहो के सरकार

काल प्रतिनिधि मंडल सागे एक और दौर री चर्चा करेला। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पेपर लीक मामला पाछे सुधार लागू करण रा काम जुड़ियो हलफनामो दाखिल करण रा हुकम दीना है। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधेरी पीठ ई मामला री सुनवाई करता थका कहो के हलफनामा में सुधारा ने संस्थागत रूप देवन सारू करी जे जतन री साफ जानकारी देवनी चाहिए। पीठ कहो के वा ई मामला में कड़ी निगरानी राखता थका लगातार इनरो जायजो लेवेला। ई मामला में आगली सुनवाई 27 जुलाई ने भेला। इविजे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षावां माय गैर वाजिब साधन काम लेवण रोकण सारू करडो बिल लावण माय कोई मोड़ो नी करण माथे जोर दीनो है। संसद परिसर माय खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका रिजिजू कहो कि देश री आई मर्जी है और ओ बिल पास वेवण माय कोई

0: संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा में माय गैर वाजिब साधन काम लेवण रोकण सारू करडो बिल लावण माय कोई मोड़ो निकरण माथे जोर दिनो है। संसद परिसर में खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका रिजिजू कहो कि देश री आई मर्जी है और ओ बिल पास वेवण माय कोई अड़चन नहीं आवनी चाहिए। वह कहो कि सरकार विद्यार्थियों रो भविष्य सुरक्षित रखण सारू कई खास जतन कर रही है। रिजिजू कहो कि गर विपक्ष ई मुद्दा माथे संसदीय कार्रवाई माय अड़चन पैदा करेला तो वन देश रा नौजवाना री रीस रो सामो करनु पड़ेला।
1: नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के चर्चा नहीं कर पाए, हम तो आज भी फिर से अपील किया है। हमने आज भी राहुल गांधी जी खुद सदन में थे तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए। कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने वालों का जो सबसे प्रमुख चेहरा है सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपने बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इबीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेपर लीक उंजुड़िया मामला नी सुनवाई सारू फास्ट ट्रैक कोर्ट बनावन रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा फैसला री सराहना कीनी है। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था कहा वह कहो कि अदालता माए मामला नी सुनवाई रोजीना फैला। संसद रा दोनों सदना माए आज लगातार पांचवां दिन हंगामो भयो। नीट पेपर लीक मामला और दूजा मुद्दा माथा चर्चा री मांग न लेर विपक्ष रा सदस्यां रा शोर शराबा बीच लोकसभा और राज्यसभा री कार्रवाई बार बार टालनी पड़ी। ई पाछे दोनों सदना री कार्रवाई सोमवार ताई टाल दी रीजी। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुए ताई संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहो कि सरकार सत्र रा पहला दिन हुई नीट पेपर लीक मामला माथे चर्चा शुरू तैयार ही, पण विपक्ष बिना ठोस शर्त चर्चा में शामिल नहीं भे रियो है। राज्यसभा में विपक्ष रा शोर शराबा बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वंदे मातरम बिल पेश कीनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत माए आज केंद्रीय मंत्रिमंडल री माली मामला नी समिति री मीटिंग हुई। इनमाए प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान रा तहत रेल नेटवर्क बधावण सारू 1264 करोड़ रुपया री मल्टी ट्रेकिंग परियोजना ने मंजूरी दी रीजी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव खबर नवीसा ने मीटिंग माए करीजिया खास खास फैसला नी जानकारी दीनी। वे बतायो कि मंत्रिमंडल देश माए 3 समर्पित रासायनिक पार्क बनावण सारू भारत औद्योगिक विकास रसायन भव्य रसायन योजना ने मंजूरी दीनी। ई योजना रो ऐलान चालू माली साल रा केंद्रीय बजट में करीचियो हो। इन तहत 3 प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क बनाया जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पानी भेड़ोकरण माथे जोर दीनो है। वे आज जयपुर में राखी जिया राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव में बोल रहा है। शर्मा कहो कि नुआ नुआ काम कह रहे राजस्थान पानी रा प्रबंधन रा हल्का माय राष्ट्रीय मॉडल बनेला। वह कहो कि पानी रा बेहतर प्रबंधन और हर घर ताई पानी पुगावण माथे सरकार रो खास ध्यान है। मुख्यमंत्री कहो कि राम जल सेतु लिंक परियोजना ऐतिहासिक यमुना जल समझौता और नर्मदा अवार्ड समझौताओं राज्य माय पानी री उपलब्धता तय करण रा नुआ दौर री शुरुआत हुई है।
2: दूसरा हमारा एमओयू हुआ और वो हुआ यमुना समझौते का। यमुना का पानी हमें कैसे मिले तो हमने केंद्र में भी बात की, हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब और हम बैठे और उसमें हमने फरवरी के महीने में एमओयू हमें उसका किया। और आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अभी हमारा यमुना का एमओयू भी हो गया और उसमें हमको पाइपलाइन के द्वारा पानी मिलेगा, उसकी डीपीआर भी बन गई, अगले कुछ दिनों में उसका भी शिलान्यास होने वाला है।
0: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रदेश माए नशारी लत न जड़ू खत्म करण सारू खास अभियान चलायो चावेला। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े नशा मुक्ति अभियान ने असरदार तरीकाओं लागू करण और ई सारू कार्य योजना रो जायजो लेवन बाबत आज जयपुर माए राखी जी मीटिंग माए महीना भर रो खास अभियान चलावन बाबत हुकम दीना। व कहो का नशा मुक्ति सारू हर लेवल माथे जवाबदेही तय करी जाऊं।

0: चाहिए चे। श्री बागड़े कहो कि विश्वविद्यालय में आई नशीली चीजा काम लेवन वाला रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जावनी चाहिए चे। व सरहदी हलका माए ड्रोन रे जरिए नशीली चीजा भेजण माथे चिंता जताता थका इनने रोकण सारू असरदार कार्रवाई करण बाबती कहो। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज कोटपुतली रा सरकारी बीडीएम अस्पताल रो दौरो कर वठे व्यवस्थावां रो जायजो लीनो। वे न्यारा न्यारा वार्डा रो दौरो कर सुविधा देखा और अहलकारा सागे मीटिंग कर हालात रो जायजो लीनो। चिकित्सा मंत्री कहो कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी नहीं होनी चाहिए। वे कहो कि बेहतर इलाज रा सुविधा सारू साधना की कमी नहीं होनी चाहिए।
1: मेरा दो चीजों का फोकस है, नंबर एक चाहे सब सेंटर है, चाहे पीएचसी है, सीएचसी है, एसटीएच है, डीएच है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, इम्पोर्टेंट चीज ये कि डॉक्टर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जो है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी लेवल का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जो अलॉटेड इक्विपमेंट है उसकी कमी होनी चाहिए। कुछ स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर्स चाहिए थे, हमने नोट कर लिया, हम जल्दी देंगे।
0: इबीचे बांसवाड़ा रा महात्मा गांधी जिला अस्पताल में आज घना जोखिम सागे आस वाली महिलाओं रा सुविधा सारू प्रसव सखी व्यवस्था शुरू करी ची। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग जुड़िया परिवारों रा राजनैतिक प्रतिनिधित्व संबंधी सर्वे री आखिरी तारीख बधार 26 जुलाई करती नी है। आयोग रा सचिव अशोक कुमार चैन इंबारा माए सगला जिला कलेक्टर ने निर्देश जारी कर सर्वे पूरा करण सारू कहो है। ध्यान जोग है कि राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप रे जरिए 10 जुलाई उ शुरू करी जो सर्वे रो काम 23 जुलाई ताई करीब 70% पूरो फे सक्यो है। चिन्ह ध्यान रखता थका सर्वे री मियाद बधाई ची है। इबीचे नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा भीलवाड़ा माए खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका कहो के राज्य सरकार रा लेवल माथे निकाय चुनाव करावन जुड़ो काम पूरो कर लियो चियो है।
2: राज्य सरकार के स्तर पर नगर निकायों के चुनावों को लेकर जितना काम किया जाना था, चाहे वो निकायों की सीमा वृद्धि का मामला हो, चाहे उनके पुनः सीमांकन का मामला हो और चाहे वार्डों के पुनर्गठन का मामला हो, वो सारे के सारे काम हम 2026 की शुरुआत में पूरे कर चुके हैं। हमारा एक प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वार्डों के पुनर्गठन और पुनः सीमांकन को लेकर लंबित था, उसका फैसला भी राज्य सरकार के हक में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता
0: है। अरब मौसम गजरा उगनी और लंका उगनी हल्का माए भारी घनी भारी बिरखा रा आसार है। मौसम विभाग आवता दो दिन माए कोटा भरतपुर और जयपुर संभाग माए बिरखा सारू चेतायो है। कोटा अजमेर उदयपुर जोधपुर और बीकानेर संभाग में आई बारिश चालती रहवन रो अनुमान है। लाडला 24 घंटा में राज्य रा उगनी और अतुणी हल्का में जोरदार पानी बरसियो। बांसवाड़ा में आज ही सवारे हुई बिरखा बह रही है और माही बंधा में लगातार पानी आ रियो है। भीलवाड़ा में छांटो छिटको बह रियो है। पाली जिला में सादड़ी देसूरी और नानवेड़ा समेत कई ठोड़ा लाडला 3 दिन रुक रुक कर में बरस रियो है। जिला रा जवाई बांध समेत न्यारा न्यारा बंधा और तलावा में लगातार पानी आ रियो है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के काल राज्य रा कई जिला में बारिश रो येलो और जालौर और सिरोही में ऑरेंज अलर्ट जारी करी चियो है। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामला माथे कॉकरोच जनता पार्टी रा नुमाइंदा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मिलिया। संसद में आई अड़चन जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल देश में 3 केमिकल पार्क बनावन सारू भव्य रसायन योजना ने मंजूरी दीनी। राज्यपाल हरिभाव बागड़े नशारी लत न जड़ों खत्म करण सारू महीना भर रो खास अभियान चलावन रा हुकम दीना। और प्रदेश रा उगनी और लंका हल्का माए आवता 2 दिन कठे कठे जबरदस्त बारिश रा आसार। मौसम विभाग काल राज्य रा सगला जिला माए बरसात सारू चेतायो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाई बहनों का अपना कार्यक्रम ग्राम भारती।

ग्राम भारती कार्यक्रम में सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को सुबदयाल भाई की तरफ से बहुत बहुत घनी राम राम। किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे एप्पल बेर की खेती। आपको संदेश सुनवाएंगे और आपका करवाएंगे मनोरंजन। एक भेंटवार्ता सुनवाएंगे खरीफ सब्जियों में कीट एवं रोग नियंत्रण, और आपको जानकारी देंगे बागवानी में पादप नियंत्रकों का उपयोग। तो आइए किसान भाइयों, आपसे सबसे पहले चर्चा करते हैं एप्पल बेर की खेती। किसानों को अधिक लाभ मिले इसलिए आज के समय आधुनिक तकनीकों से जो एप्पल बेर की जो खेती है, बागवानी है, उसका प्रबंधन करना हमारे किसान भाई को चाहिए। बेर और एप्पल बेर लगभग समान ही होते हैं। थाई एप्पल बेर हाइब्रिड फलों का पौधा है और हाई लैब टेक्निक जेनेटिक बायो प्लांट सिस्टम द्वारा तैयार किया जाता है। उच्च व्यावसायिक बाजार मूल्य वाला ये पौधा है और गर्मियों के दिनों में इसे लगाया जाता है, और इसको लगाने के बाद में यह इतनी तेजी से विकास करता है कि पहली ही बरसात में 7 से 10 फुट तक ये बढ़ जाता है। दिसंबर महीने में इस पर फल भी आने प्रारंभ हो जाते हैं और यह अब तक का सबसे तेज विकास करने वाला पौधा है। पहले ही वर्ष में इस पर यानी 20 से 25 किलो फल लग जाते हैं। इस प्रकार यह बेहद कमाई वाला सौदा है। तो हमारे किसान भाई इसकी खेती करें, तो अब इससे पहले थोड़ा सा ये जान लें भाई, इसकी यानी जो खासियत क्या है, इसकी जो हमारे किसान भाई को लाभ देने वाली बातें हैं वो क्या हैं। अन्य बेरों की तुलना में अधिक मीठा होता है और स्वादिष्ट और गुणवत्ता से पूर्ण होता है। यह बेर चमकदार और सेब के आकार का होता है। जितने गुण सेब के फल में होते हैं उतने ही औषधीय गुण इस एप्पल बेर में पाए जाते हैं। सामान्य बेर की तुलना में 2 से 3 गुना भाव हमारे किसान भाइयों को इससे मिलता है। और ग्राफ्टिंग विधि से तैयार यह पेड़ संकर प्रजाति के हैं, जिसकी जड़ तो देशी और तना इसका यानी संकृत होता है। देसी बेरों की तुलना में एप्पल बेर का उत्पादन 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है और सरकार किसानों को संकर बेरों के पौधों पर 50% अनुदान भी प्रदान करती है, जो कि 3 सालों में किस्तों में हमारे किसान भाई को आते हैं। कम पानी की आवश्यकता होती है इसके लिए और जो 1 महीने में एक बार इसके लिए पर्याप्त होती है। एप्पल बेर की जो खेती है वो कैसे करें, इसकी बात करें तो एप्पल बेर खेती हर प्रकार की जो भूमि होती है उसमें हम हमारे किसान भाई कर सकते हैं। ये खेती इसकी खूब फूलती फलती है और इसकी खेती देश के वैसे तो किसी राज्य में भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं, परंतु वहाँ जल भराव नहीं होना चाहिए। एप्पल बेर की जो व्यवस्था है वो किसानों को नज़दीकी विश्वसनीय नर्सरी से इसका पौधा लेना चाहिए, और एप्पल बेर के पौधे के लिए कोई बीज नहीं होता, इसको ग्राफ्टिंग विधि से लगाया जाता है। नर्सरी में एप्पल बेर के पौधों की कीमत लगभग यानी 30 से 40 रुपए के बीच में होती है। इसकी रुपाई कैसे करें इसके बारे में हम जान लें थोड़ा सा। पौधों को लगाने के लिए अन्य बागवानी जैसे पौधे होते हैं उनकी तरह ही 1 फीट गहरा 1 फीट चौड़ा गड्ढा खोद लें हमारे किसान भाई, और एप्पल बेर की खेती में पौधों की रुपाई के समय जैविक खाद जरूर डालना चाहिए। 1 बीघे में लगभग 180 से 240 पौधे की जरूरत होती है। 9x9 आकार के यानी जो गड्ढे हैं वो बना ले हमारे किसान भाई। और एप्पल बेर की खेती में वैसे तो देखो 180 जो पौधे हैं वो लगते हैं, वो पर्याप्त होते हैं। सिंचाई कैसे करें, एप्पल बेर का पेड़ मुख्यतः एक जंगली यानी पहाड़ी पेड़ है जो कम सिंचाई के साथ में अधिक उत्पादन हमारे किसान भाई को देता है। किसान को ड्रिप विधि से सिंचाई करने पर 2 सप्ताह में इसकी सिंचाई करनी चाहिए, और सिंचाई घेरे बनाकर करें तो 1 महीने के अंतराल में हमारे किसान भाई को करनी चाहिए। बेर की कुछ उन्नत किस्में हैं, जैसे भाई हम बात करें तो थाई एप्पल बेर, सेब बेर और कैथली कश्मीरी एप्पल बेर, और जैसे सैन्यूरन 5, मुंडिया एवं गोमा कीर्ति, ये इसकी कुछ मुख्य जो उन्नत किस्में हैं। देश में मुख्यतः एप्पल बेर का मंडी भाव और जो स्थानीय जो भाव है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानें तो इसकी क्या है खूब हमारे किसान भाइयों को जो कीमत है

0: वो मिलती है। संकर किस्म बुवाई के बाद पौधा शीघ्र क्या है इसका वृद्धि करता है और 6 महीने में फल इस पर लगने प्रारंभ हो जाते हैं। 1 साल के बाद एक पेड़ से 50 से 100 किलो बेर हमारे किसान भाई ले सकते हैं। एक फल 50 से 125 ग्राम का होता है। ये बेर खाने में सेब जैसे लगते हैं तथा देखने में भी वैसे ही होते हैं। इसमें कांटे नहीं लगते और फल बड़े लगते हैं, इसलिए तुड़ाई में भी हमारे किसान भाई जो होते हैं उनको आसानी होती है। यह पौधा लगभग 50 साल तक आमदनी देता है, अर्थात ये एक तरह से लंबी उम्र वाला पौधा है और इसकी फलों की कीमत परंपरागत बेर से ज़्यादा मिलती है। मार्च व अक्टूबर का महीना जो आता है तो इसमें 2 बार यानी फलन होता है और इस तरह से हमारे किसान भाई इससे फल यानी इस समय तोड़ सकते हैं। आमदनी हमारे किसान भाई को काफ़ी होती है। पौधरोपण तथा इसकी देखरेख की बात करें तो इसकी जलवायु 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक उच्च जो तापमान है उसको ये पौधा सहन कर सकता है। खारे पानी में भी इसकी हम भाई बागवानी कर सकते हैं। यहाँ तक कि समुद्र का जो जितना खारा पानी होता है उसमें भी ये पौधा हो सकता है। और जैसे सिंचाई है तो वो भी इसके लिए कम आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमारे किसान भाई एप्पल जो बेर है इसकी खेती करेंगे तो बहुत लाभ हमारे किसान भाई ले सकते हैं। आइए हमारे किसान भाई को अब सुनवाते हैं संदेश। सुनो किसान भाई संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: हाँ तो किशन भाई अब आपको सुनवाते हैं एक भेंटवार्ता। खरीफ सब्जियों में कीट एवं रोग नियंत्रण, श्री बबलेश कुमार जी, उप निदेशक कृषि रसायन कार्यालय, संयुक्त निदेशक राज्य के कीटनाशी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर। आइए किसान भाइयों सुनते हैं भेंटवार्ता।
3: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज हमारे साथ हैं श्री बबलेश कुमार, जो कि कृषि अनुसंधान अधिकारी रसायन में कार्यालय, संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद अलवर में कार्यरत हैं। तो आज हमारे बातचीत का विषय रहेगा खरीफ में सब्जियों में समन्वित कीट एवं रोग नियंत्रण। बबलेश कुमार जी आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
4: धन्यवाद सर।
3: सबसे पहले बबलेश कुमार जी हम बात करना चाहें कि हमारे जो किसान भाई हैं खरीफ में जो बोई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं उनके बारे में किसान भाइयों को जानकारी दें।
4: जैसा कि अभी खरीफ का सीजन चल रहा है उसमें ज़्यादातर किसानों ने लौकी है, मिर्च, बैंगन, टमाटर आदि फसलें लगा रखी है। ये मुख्य फसलें खरीफ में ही होती हैं। और भी करेला और भी फसलें हैं जो बेली, कद्दू वर्गीय जो सब्जी हैं, टिंडा है, जो कुष्मांड कुल की सब्जी हैं, वो भी किसान भाइयों ने अभी वर्तमान में लगाई हुई हैं।
3: बिल्कुल, किसान भाइयों ने काफ़ी जो सब्जियां हैं वो इस समय लगाई हुई हैं। अब हम बात करें कि आगे जो हमारे किसान भाई हैं बोई जाने वाले जो सब्जियों की फसलें हैं उनकी नर्सरी तैयार वो कैसे करें उनके बारे में भी थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें।
4: सबसे पहले किसान भाइयों अपन को ध्यान ये रखनी है कि अब हम जो बरसात खरीफ में जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है कि जो गलन की आती है, क्योंकि यदि आपने प्लेन बेड बनाई या नीचे बेड बना दी तो पानी भर जाएगा क्यारी में और पौध बहुत सेंसिटिव होती है पानी के लिए, तो वो गल के नष्ट हो जाती है। इसलिए अपन को ऊपर उठी हुई क्यारियों में ही पौध तैयार करनी होती है, जिसके लिए अपन को 1 मीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबी क्यारी का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके साथ साथ भी जो भी अपन नर्सरी तैयार कर रहे हैं, जिस भी फसल को अपन लेना चाह रहे हैं उसको बेबिस्टीन या कोई सी भी फंगीसाइड से अपन उसको सीड को ट्रीट करके ही बोना चाहिए। और इंसेक्टिसाइड का है तो उसमें पेप्रोलिन वगैरह का यूज कर सकते हैं। और नर्सरी में हमेशा देसी

0: खाद जरूर डालें, क्योंकि उसको इनिशियल लेवल पे वो पोषक तत्व चाहिए, तो वो अपने जो देसी खाद है उससे ही आसानी से मिल पाता है। और जो उठी हुई क्यारी है उनमें हमेशा पानी निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि बारिश ज़्यादा हो गई, खेत में पानी भर गया, रात में बारिश हो गई, किसान भाई खेत पर है नहीं, तो उस समय में अपन उस पौध को नष्ट होने से बचा सकते हैं। दूसरा, इस समय बहुत सारी चारों तरफ फसलें खड़ी रहती हैं, तो उस समय अपन को जो छोटे कीट हैं, जो छोटी पौध पे कीटों का प्रकोप हो सकता है, उससे बचाने के लिए 40 मेस की अपन जो जाली होती है प्लास्टिक की, उसको लगा दें, जिससे कि छोटे मोटे जो कीड़े हैं वो अपनी जो सीडलिंग तैयार कर रहे हैं उस पर अटैक नहीं कर पाएं और उनका संक्रमण को रोका जा सके।
1: और इस तरह से हमारे किसान भाई हैं अपने नर्सरी तैयार कर सकें। और मुख्य बात जो बहुत बढ़िया बताई कि भाई कोई भी अपन नर्सरी तैयार करवा से पहले किसान भाई बीज को उपचारित आवश्यक रूप से कर लें, जिससे कि कुछ रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है अपने पौध में बढ़ जाएगी और हमारी जो पैदावार है वो भी अच्छी होगी। अब हम बात करें कि जैसे हमारे टमाटर की बात करें, तो किसान भाइयों को बताएं कि टमाटर में सबसे पहले खेत की तैयारी वो कैसे करें, कौन कौन सी जो उन्नत किस्में हैं उनको वो काम में लें, उनके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: किसान भाइयों, अपन यदि टमाटर की फसल बोना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपन खेत की अच्छी 4-5 जुताई कर लें, हैरो वगैरह पाटर लगा के उसको प्लेंट कर लें। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो ध्यान रखने वाली, खेत के चारों तरफ जो मेड़ है उसको साफ रखें, या फिर कोई भी जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है उसका स्प्रे जो अपन ट्रांसप्लांटिंग करेंगे पौध उससे पहले कर लें, जिससे कि जो उसके आसपास जो भी इंसेक्ट हैं वो ख़त्म हो जाएं, उन पर जो परजीवी रहते हैं बाद में फिर अपन खेत में वो वहाँ से उड़ के आ जाते हैं, तो उनको भी ख़त्म करना जरूर होता है। और जुताई के बाद सबसे पहले अपनी आती है उर्वरक का मैनेजमेंट, उसमें खाद और उर्वरक कितना डालें। तो अपन जब टमाटर की फसल लगाते हैं, संकर वेराइटी यदि लेते हैं तो 300 से 350 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल के खेत में मिला दें, और इसी के साथ साथ NPK जो होता है 180 नाइट्रोजन, 120 किलो फास्फोरस और 80 kg पोटास देने की ज़रूरत होती है। और कई कई जो लगातार यदि सब्जी उगा रहे हैं तो वहाँ आप अपन मिट्टी की जांच करा के उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करें।
1: बिल्कुल, तो यानी कि हमें जो खाद हैं और उर्वरक हैं, अपने जो किसान भाई हैं जिन्होंने अपने मिट्टी की जांच करवा रखी है, तो विभाग ने जो सिफारिश की है वाके अनुसार काम में ले सकें। बाकी हमारे विशेषज्ञ बबलेश जी ने बताया कि जो गोबर की खाद है और जो उर्वरक हैं वो अपन को अपने प्रति हेक्टर के हिसाब से जितनी मात्रा में बताएं उस हिसाब से डालना चाहिए। अब बात करें कि कीट और रोग हैं वो भी इन फसलों को नुकसान पहुंचाएं, तो उनका कौन कौन से कीट और रोग लगते हैं और उनका नियंत्रण हमारे किसान भाई कैसे करें, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं।
0: क्योंकि टमाटर की फसल ऐसी है जिसमें कीट और व्याधियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। एक अर्धगलन जिसको डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधा जमीन की सतह से ऊपर काला पड़ जाता है, वो गल जाता है और वहाँ से टूट के नष्ट हो जाता है। और इसका उपचार ओनली होता है कि थायरम या कैप्टोन जो भी अपनी फंगीसाइड है उसको सीड ट्रीटमेंट में काम लें, तो उस सीड ट्रीटमेंट से ही उसमें वो उसकी प्रति फंगस के प्रति रेजिस्टेंस आ सकती है। ऐसे ही ब्लाइट आती है, ब्लाइट में दो आती है, एक अगेती और एक पछती ब्लाइट। तो इसमें भूरे रंग के और वो अनियमित प्यालेनुमा धारियां आकार के वो धब्बे बन जाते हैं, तो इसकी कंट्रोल के लिए या तो मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या रिडोमिल MZ 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। और फिर यदि आपको लग रहा है कि वापस है तो 10 से 15 दिन के बाद उसे स्प्रे को रिपीट करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान टमाटर में यही करता है। दूसरा, हरा तेला और वो रस चूसने वाले जो कीट हैं उनके लिए इमीडा क्लोरोफिड को काम में ले सकते हैं, 2 ml दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें, जो भी रस चूसक कीड़े हैं वो उससे ख़त्म हो जाएंगे।
1: तो बिल्कुल, इस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं वो टमाटर की जो खेती है वो कर सकें। और अब हम बात करें कि लौकी, तो लौकी में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें कि कौन कौन से कीट और व्याधि लग रहे हैं वर्तमान में जिन भाइयों ने बो रखी है, तो उनका वो नियंत्रण किस तरह से करें, उनके बारे में हमारे भाइयों को बता।
0: सबसे पहले जो ज़्यादातर किसानों को मैंने देखा है, अभी लौकी को फ्लैट पे नहीं बोके, अपन जमीन पे नहीं बोके, ऊपर एक जाल बना देते हैं वो लकड़ी का, वो लगा के उनमें नेट या जो भी, उससे क्या वो उसकी बेल ऊपर चली जाती है और जो फल लग

0: नीचे आता है, तो वो फल उसकी ग्रेविटी फोर्स से उसकी लंबाई बहुत जल्दी बढ़ती है। दूसरा जो इंसेक्ट पेस्ट है उनका भी कंट्रोल हो जाता है, और दवा का स्प्रे करना है आदि, वो सारी समस्याएं बहुत इजीली हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा एक सुनहरी मक्खी जो गोल्डन फ्लाई के नाम से जानी जाती है, वो ज़्यादातर फलों को छेद के डंक मार देती है और उन फलों को ख़राब करती है। तो उसके लिए साइपरमेथ्रिन 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपन काम में ले सकते हैं। ऐसे ही जो पाउडरी मिल्डू, डाउन मिल्डू जो फंगस के द्वारा फैलती है, ये भी व्याधि ज़्यादातर इसमें लौकी के अंदर आती है। तो इसमें एक दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है, मेथलेक्सल और मैंकोजेब। तो इन दोनों दवाओं की 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें, जिससे कि पाउडर मिल्डू से बचाया जा सकता है, या डाउन मिल्डू, दोनों में जो भी मिल्डू आ रही है उससे अपन इस फसल को बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अब बबलेश जी, बात करें हम बैंगन के बारे में, तो बैंगन भी हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने लगा रखी हैं, तो बैंगन में भी इस समय कौन कौन से कीट व्याधि लग रहे हैं और उनका वो नियंत्रण किस तरह से करें, उनके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें।
0: बैंगन में एक तो हरा तेला, मोइला, बाइट फ्लाई आदि ये कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, और इनका नियंत्रण करने के लिए इमिडा क्लोरोपिड जो 17.8 SL की आती है, और या फिर डाइमेथोड 30 EC या मेलाथियन या डिमेटोन 25 EC, किसी भी एक दवा को काम में आप ले सकते हैं। 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करके हरा तेला या मोइला, सफ़ेद मक्खी, इनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो बैंगन में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है वो है फल एवं तना छेदक, फ्रूट एवं शूट बोरर होता है। ये शाखा पे छेद करके ये फ्रूट तक पहुंच जाता है, बट फिर शाखाएं मुड़ जाने लग जाती हैं। तो इसके नियंत्रण हेतु फल बनने से पहले कार्बोफ्यूरोल 50 WP 4 ग्राम या फॉर्मेथियोन 50 EC 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं।
1: तो बिल्कुल हमारे जो किसान भाई हैं जिन्होंने बैंगन लगा रखे हैं, इस तरह से अपने उनको कीट और व्याधि से उनको बचा सकें, अपनी फसल में अच्छा उत्पादन वो ले सकें। अब बबलेश जी बात करें कि आगामी जो समय है, अब कुछ समय बाद ही हमारे जो किसान भाई हैं जो गाजर की बुआई करना चाहें, तो उनके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं कि वो कब तो बुआई करें और भूमि की जो तैयारी है उसके बारे में भी जानकारी दें कि वो किस तरह से भूमि की तैयारी कर सकें, वो भी बताएं।
0: किसान भाई जो अगेती गाजर की फसल लेते हैं वो अगस्त के बाद बुवाई स्टार्ट कर देते हैं, 25 अगस्त के बाद या 20 अगस्त के बाद। वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि मौसम थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो गया या टेम्परेचर इतना बना हुआ, यदि टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो उसके बाद बुवाई करें। खेत की तैयारी की बात है तो 2-3 जुताई तो कल्टीवेटर से करके हैरो चलाएं, और ये रोटावेटर है तो रोटावेटर चलाएं, जिससे कि वो ज़मीन को ऊपर नीचे दोनों तरफ से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें देसी खाद बोई 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें और अच्छी तरह मिला लें। उसके साथ साथ ही गाजर क्या है कि रूट वाली क्रॉप है, ज़मीन में होती है, तो MOP और DAP इन दोनों फर्टिलाइजर को बुवाई से पहले ज़मीन में मिला के उपयोग करें। और आजकल किसान भाई मेड बना के इसकी बुवाई करते हैं, जो कि जो अपनी गाजर की लंबाई है या गाजर का फूलना है वो आराम से आसानी से हो जाता है, और उसमें निराई गुड़ाई जो भी कृषि क्रियाएं वो भी आसानी से कर सकता है। तो इसी प्रकार से मेड में ही गाजर की बुवाई करें। और फंगीसाइड जो गलन रोग रहता है उसके लिए अपन बेबस्टीन से सीड को 2 ग्राम प्रति KG सीड के हिसाब से ट्रीट करें। यदि इंसेक्टिसाइड के लिए अपन पेप्रोनिल आती है और उसका भी सीड ट्रीटमेंट में काम मिलने, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट एक तरीका से टीका है। यदि सीड ट्रीटमेंट अपन किसी भी फसल के लिए कर लिया तो आगे रोग आने की संभावना बहुत कम रहती है।
1: बिल्कुल, यानी कि बीज को उपचारित करने से हमारे जो फसल है उसमें कुछ रोग ऐसे हैं जो कि उपचारित करने से ही हमारी जो फसल है उनमें नहीं आ पाएंगे। अब बात करें कि प्याज की बुआई, तो किसान भाई कब कर सकें और बुआई करते समय हमारे किसान भाई किस तरह खेत की तैयारी करें और कौन कौन से खाद और उर्वरक डालें जिससे कि वो अपने प्याज की फसल की अच्छी पैदावार वो ले सकें, उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं।
0: किसान भाई अभी जैसे ही टेम्परेचर 30 से 35 के बीच में आ जाता है, जो 20 से 25 अगस्त के बाद आसपास अपन बुवाई करते हैं, सबसे पहले तो अपन इसमें वही रूट वाली फसल है इसमें सल्फर, म्यूरेट ऑफ पोटास, इनका देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ की जो जमीन में कमी है इसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रेंट भी आवश्यकता अनुसार डालें, मिट्टी की जांच करा लें, जांच के आधार पर ही जो माइक्रोन्यूट्रेंट है दूसरे

0: उनको डालें। दूसरा, इसमें फंगस से एंथ्रेनोज डिजीज वो बाद में आती है, उसके लिए अपन जो गंठी है उसको बेविस्टीन के घोल बनाकर उससे ट्रीट करके ही रुपाई करें। इंसेक्टिसाइड के लिए पेप्रोनिल या इमीडा जो भी आप यूज कर रहे हो, कोई भी एक इंसेक्टिसाइड से उसको जो गंठी है उसको ट्रीट करके बोएं। और सबसे मेन बात है, यदि अभी आपका खेत खाली पड़ा होगा तो उसमें जुताई करके, और दूसरा आपके आसपास जो मेड़ों में घास है या जो कचरा उगा हुआ है उसको भी साफ कर दें। यदि आप लेबर से साफ नहीं करा पाते तो उसके लिए जो भी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है जैसे ग्लाइफोसेट है, पैराक्वाइट है, तो आदि किसी को भी उस पर स्प्रे करें जिससे कि वो जो भीड़ है वो उस पर ख़त्म हो जाए। दूसरा, बुवाई से पूर्व आप जो बीडीसाइड है, टोटल सेलेक्टिव हर्बिसाइड जो बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव, उसको भी स्प्रे बुवाई से पूर्व करके उससे बीड़ों को उससे ख़त्म करके बुवाई करें। बुवाई हमेशा प्याज की मेंड बनाकर ही करें जिससे कोई पानी देने में आसानी रहे और जो उसकी प्याज है अच्छी क्वालिटी का बने।
1: तो इस तरह से हमारे किसान भाई खरीफ की जो सब्जियां हैं उनमें फसलों की बुआई का समय, कुछ फसलें किसान भाइयों ने बो रखी हैं और कुछ आगामी समय में बुआई का समय आ रहा है बो सकें, तो उनमें किस तरह से खेत की तैयारी करें, किस तरह से कीट और रोगों का नियंत्रण कर सकें। तो बबले जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: हाँ, तो अब हमारे किसान भाई को करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं लोकगीत। आवेश की कलाकार हैं अनुराधा पौडवाल, आइए किसान भाई सुनते हैं लोकगीत।

हाँ तो किशन भाई, ये तो सुना लो गीत। और अब हमारे किशन भाई को जानकारी देते हैं बागवानी में पादप नियंत्रकों का उपयोग। बागवानी में हार्मोन्स का बहुत महत्व होता है। फल वृक्षों में कई बार विकास की वृद्धि दर रुकने और फल एवं फूल झड़ने एवं वृद्धि कम होने की समस्या आ जाती है। ऐसी स्थिति में कृत्रिम हार्मोन्स का उपयोग लाभकारी होता है। तो उपयोग की बात करें तो किस तरह से और कौन कौन से पौधों में किया जाता है। नींबू वर्गीय वृक्षों में फल गिरने की समस्या रहती है, तो इसे रोकने के लिए 2,4-D 10 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। नागपुरी संतरे में परिपक्व फलों को गिरने से बचाने के लिए प्रति लीटर पानी में 200 मिलीग्राम नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NAA का छिड़काव हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और अमरूद की बात करें तो अमरूद के वृक्ष पर लगे फूलों पर नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NAA के 600 PPM सांद्रता वाले घोल का छिड़काव प्रभावी होता है। अंगूर के फलों का आकार बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड से प्रारंभ में ही गुच्छे का उपचार जरूरी होता है। पूसा सीडलेस किस्म की मंजरियों के 80% फूलों के खिलने पर और जिब्रेलिक एसिड 45 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने से उपज में वृद्धि होती है। फलदार पौधों को पकाने के लिए इथेफोन 500 PPM घोल का छिड़काव हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और पौधों की कटिंग में जड़ों के विकास के लिए 500 मिलीग्राम IBA हार्मोन्स का उपयोग करना चाहिए। कुष्मांड कुल की सब्जियों में मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड 10 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव हमारे किसान भाई को करना चाहिए। मैलिक हाइड्राजाइड का उपयोग 2,000 PPM एवं भंडारण में प्याज के अंकुरण को रोकने के लिए किया जाता है। इस दवा का उपयोग प्याज की खुदाई के 1 माह पूर्व हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। और आलू के कंदों के गुच्छे अंकुरण के लिए आलू के कंदों को 5 PPM जिब्रेलिक के घोल में 5 मिनट के लिए रखना, यानी हमारे किसान भाई रख सकते हैं, ये लाभकारी होता है। तो इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता श्री नीरज भगत, आइए किसान भाइयों आपसे लेते हैं आज्ञा। जय जवान जय किसान।

अभी किसान भाई बहन सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम भारती। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 MHz पर। इस समय 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

खामोशी फिल्म का ये गीत था, आवाज किशोर कुमार की, गीत गुलजार का और संगीत हेमंत कुमार का।

0: प्यार ही प्यार, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज मोहम्मद रफी की थी। गीत राजेंद्र कृष्ण का और संगीत शंकर जयकिशन का।
1: तेरे प्यार में कविता मैं कहीं।
0: श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। यहां लेते एक छोटा सा अंतराल।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और

0: अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आइए अंतराल के बाद आइए सुनते हैं प्यार का देवता फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: प्यार झुकता नहीं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। गीत SH बिहारी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
4: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
3: एक कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
4: तो भुगतो।

मत फिल्म का ये गीत था आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, संगीत नरेश शर्मा का। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 मेगा हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से संसद।

का अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए।

प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं,
जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न

खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन अधिनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। क्योंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है उन्हें KGMU लखनऊ SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे

0: विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूर वीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है, जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है, संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है, किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 MHz पर। इस समय 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत।

0: सी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: सीमा मिश्रा व ममता सिंह के स्वर में आपने ये लोकगीत सुना।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई।

0: गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: क्या हो के सगी जी?
3: हाजी सगा जी, ते लुगाया में कटे घुसे आ रहे हो।
2: अरे सगी जी, मैं तो थाने ही ढूंढता फिरा हां।
3: सगा जी, ते बूढ़ा सारा हो गया, थाने लाज कोनी आवे।
2: लाज? अरे थाने देखे लाज तो भागी, बरात लेके आया। हां सगी जी, बात तो करो।

0: आपने सुना दिलराज कौर और महेंद्र कपूर की स्वर में ये लोकगीत।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

श्रोताओं, इसी लोकगीत के साथ ही आज का लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार संध्या, उस तत्पश्चात 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण

0: लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के 4 महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से

0: प्रसारित की जा रही हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
1: आंध्र और कर्नाटक को

0: और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिए बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉक्टर कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
2: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
3: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी

0: जल भराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee
3: on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh and new chemical park scheme to boost industrial growth. Proceedings of both houses of parliament remain disrupted amid ruckus by opposition. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, affecting normal life. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyam wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमें।

0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। इनका साथ दे रही थी उषा खन्ना, बोल इंदिवर के थे और धुन कल्याण जी आनंद जी की थी।

राहुल देव बर्मन की संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था अनामिका।

आपके लिए कार्यक्रम की आखिरी पेशकश खय्याम साहब का संगीत, जानिसार अख्तर के बोल, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम रजिया सुल्तान।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म रजिया सुल्तान के इस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।
1: हाँ,

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बाती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और लेखक मनोज कुमार की।

मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। ये जगह अब पाकिस्तान में है। उनका वास्तविक नाम है हरि कृष्ण गोस्वामी। जब वो 10 बरस के थे तो देश का बंटवारा हो गया और पूरा परिवार दिल्ली में आ गया और रिफ्यूजीज यानी शरणार्थियों के एक कैंप में पुराने राजेंद्र नगर दिल्ली में रहने लगा। मनोज कुमार ने अपनी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही पूरी की। बचपन से ही दिलीप कुमार उनके पसंदीदा अभिनेता थे। वो दिलीप कुमार की कॉपी किया करते थे अपने कॉलेज के दिनों में। शुरुआती दिनों में मनोज कुमार ने कुछ

छोटे मोटे काम किए, यहां तक कि उन्होंने सिलाई मशीन के सेल्समैन के तौर पर भी कुछ दिन काम किया। बाद में अभिनेता बनने का सपना लेकर मनोज कुमार मुंबई आ गए और यहां उन्होंने कुछ छोटी फिल्मों से की अपनी शुरुआत, जैसे सन 1957 में आई थी फिल्म फैशन।

तकरीबन 5 बरस बाद विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता के जरिए मनोज कुमार को मिली अपनी पहली बड़ी कामयाबी। इस फिल्म में उनकी नायिका थी माला सिन्हा।

सन 1965 में ही विचार आया शहीद भगत सिंह पर फिल्म बनाने का। फिल्म शहीद का निर्माण बहुत सारे संघर्षों से घिर गया था, लेकिन मनोज कुमार ने ठान लिया था कि ये फिल्म तो बनकर रहेगी और शहीद भगत सिंह के जीवन पर सबसे प्रामाणिक फिल्म यही है जिसमें मनोज कुमार शामिल थे। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा

मनोज कुमार के करियर के दो अलग अलग पहलू हैं। एक वो पहलू है जहां वो रूमानी नायक के तौर पर कई फिल्मों में नजर आए, और दूसरा पहलू है भारत कुमार वाला पहलू जहां उन्होंने देशभक्ति और सरोकार वाला सिनेमा बनाया। तो चलिए पहले बतौर चॉकलेटी हीरो मनोज कुमार की फिल्मों की कुछ झलक यानी कुछ गाने सुन लिए जाएं। फिल्म पत्थर के सनम।

जब फिल्म शहीद को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिखाया गया, तब ये फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने मनोज कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, क्या मेरी नारी जय जवान जय किसान पर फिल्म नहीं बन सकती? मनोज कुमार ने दिल्ली से लौटते हुए कुछ रजिस्टर खरीदे और कुछ नए पेन। दिल्ली से मुंबई तक के सफर में फिल्म उपकार की कहानी तैयार हो चुकी थी और इस तरह सन 1967 में आई रुपहले पर्दे की एक नायाब बेमिसाल फिल्म उपकार।

0: उपकार के इस गाने की एक दिलचस्प कहानी है। गुलशन बावरा रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे। रेल गोदाम में पंजाब से आती थी गेहूं की बोरियां। जब गेहूं की इतनी सारी बोरियां उतरा करती तो गुलशन बावरा के कवि मन में एक पंक्ति कौन थी, मेरे देश की धरती सोना उगले। बरसों बरस ये पंक्ति उनकी डायरी में बनी रही। बाद में मनोज कुमार ने इसे फिल्म उपकार में शामिल किया। सन 1970 मनोज कुमार अपनी दूसरी फिल्म लेकर आए, पूरब और पश्चिम। ये फिल्म परंपरा और पश्चिमी संस्कृति के टकराव की कहानी थी। इस फिल्म की चारों तरफ बड़ी तारीफ हुई और ये गाना जैसे भारत के गौरव का गान बन गया।
1: पीते हो किसी ने देश तो क्या हमने।

0: सुनाता हूँ।
1: सन 1972 में मनोज कुमार नजर आए फिल्म बेईमान में। इसी साल मनोज कुमार ने अपने प्रोडक्शन से अगली फिल्म प्रस्तुत की जिसका नाम था शोर।

फिल्म शूर के गाने बेहद मकबूल हुए। सन 1974 मनोज कुमार ने एक ऐसी फिल्म बनाई आजादी के बाद बनते हुए भारत के सपनों से थोड़े से मोहभंग की कहानी थी। एक ऐसी फिल्म जिसने बताया कि हम सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देश में हैं कुछ समस्याएं जिन्हें निपटाना जरूरी है। यह फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के साथ नजर आईं जीना तमान।

इसके बाद मनोज कुमार नजर आए फिल्म 10 नंबरी में। मनोज कुमार दिलीप कुमार के हमेशा से जबरदस्त फैन रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका उन्हें मिला सन 1981 में अपनी फिल्म क्रांति के जरिए।

0: करेंगे।
1: क्रांति के बाद मनोज कुमार की फिल्में ज्यादा नहीं चली। धीरे धीरे मनोज कुमार नेपथ्य में चले जाते रहे, लेकिन मनोज कुमार के चाहने वाले कायम रहे। आज भी उनके मैनरिज्म को, उनकी अदाओं को, रुपहले पर्दे पर उनकी मौजूदगी को लोग बहुत याद करते हैं। आइए सन 1970 में आई फिल्म पहचान का ये गाना सुने, जिसे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार नीरज ने लिखा।
2: बस यही

0: सन 1989 में मनोज कुमार ने बनाई फिल्म क्लर्क और सन 1995 में मैदाने जंग। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव।

की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। हर इंसान का किसी न किसी वस्तु से भी गाढ़ा प्रेम होता है। उस वस्तु के लिए वो किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार रहता है, यहाँ तक कि कई बार अपनों से भी ज्यादा उस वस्तु विशेष का ख्याल रखा जाता है। पर अगर वो खो जाए तो

वो सामान जो हमें सबसे प्यारा हो हमसे दूर हो जाए, खो जाए, तो मानो हर रिश्ते नाते सुख सुविधा के बाद भी हमें चैन कहाँ। उसकी खोज में खुद तो लगते ही हैं, अपनों को भी लगा देते हैं।

0: उन्हें तो आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि संभाल कर रखी चीजें ही सबसे ज्यादा गुम क्यों होती हैं, और ये गुम हुई चीजें आखिर जाती कहाँ हैं? क्या वो कहीं छुपकर हमें देखती रहती हैं, हमारी परीक्षा लेती हैं कि हम उनकी परवाह करते भी हैं या नहीं?
1: तो बेत

कई बार हमारे सामने दुनिया जहान की चीजें रखी होती हैं, पर मन मन तो वहीं अटका है उस गुम हुई चीज के साथ। सोते जागते उठते बैठते बस एक ही ख्याल कि आखिर वो गई तो गई कहाँ।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। क्या गुम हुई चीजें भी मेले में गुम बच्चे की तरह घर लौटने को बेताब रहती होगी? क्या वो भी मिलने वाले को अपने मालिक का अता पता बताती होगी? फिर कुछ इस तरह होती होगी घोषणा।

0: कोई चीजें जैसे ही किसी को मिलती है उनकी खुशी भी देखते ही बनती है। शायद उन्हें भी याद आ जाती हैं अपनी गुम हुई चीजें। तभी तो वो झूम कर बताने लगते हैं मिली हुई चीज का हाल, खोजने लगते हैं उनका पता जिसकी है ये चीज।
1: मिला।

एक बार जो गुम हुई चीज मिल जाए तो यूं लगता है जैसे सारी उम्मीदें हो सकती हैं पूरी। इस जहान में कुछ भी नहीं है नामुमकिन, बस शिद्दत से खोजा जाए तो मिल सकता है कुछ भी। दिल का चैन, खुशियां, सुख, मन की शांति, और दिल कह उठता है।

हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिससे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के ठीक 11:05 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।